मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा के कार्यक्रमों के साथ मैं हूं आपका मित्र विशाल। शुभ प्रभात।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22

0: 78,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशगान से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के स्वर में ये भजन।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार के विचार कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत।
1: भारतीय दर्शनों की विवेचना करते समय मानव मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला योग दर्शन आज के मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। सृष्टि के आदि से मनुष्य अपने जीवन को अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे अधिकाधिक पूर्ण और अर्थवान बनाने के लिए जीवन के किसी ऐसे महान स्रोत की तलाश में रहता है जहाँ से इसे अधिक रस प्राप्त हो और जीवन में पूर्णता, आनंद तथा सामंजस्य आ जाए। जीवन की इस पूर्णता और समस्वरता की प्राप्ति के लिए अनेक यत्न हुए हैं और इसके लिए दो मार्ग अपनाए जाते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार की जीवन शैली हैं। दोनों प्रकार की जीवन शैलियों से जीवन व्यतीत करने वाले हरेक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार का अधिकार है। मनुष्य किसी भी बाह्य स्थिति, वातावरण, भौगोलिक परिस्थिति, भिन्न राष्ट्रीयता, भिन्न धर्म, भिन्न संप्रदाय आदि का क्यों न हो, परंतु मनुष्य को शांति, आनंद, पूर्णता की अभिलाषा बनी रहती है। इसके लिए ऋषियों ने समय समय पर अनेक उपाय किए और उन उपायों की खोज में अपने संपूर्ण जीवन को साधनामय बना दिया। इन्हीं में से एक साधक महर्षि पतंजलि का योग मार्ग ऐसा मार्ग है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर अपने जीवन के चरम लक्ष्य आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा और परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग के अनुसार योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करते हुए परमानंद को प्राप्त कर सकता है। योग बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसका संबंध जीवन के प्रत्येक अंग से है, शरीर से भी है, मन से भी है और आत्मा से भी है। इस प्रकार यह योग जीवन शैली होकर जीवन के सभी स्तरों को प्रभावित करता है। योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है। योगाभ्यास से हम अपने श्वासों को नियंत्रित करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। शरीर के समस्त अंगों को विश्राम की अनुभूति होती है। योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य तो प्राप्त होता ही है, मानसिक बल भी प्राप्त किया जाता है। इससे मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों मन एकाग्र होता जाता है त्यों त्यों मानसिक शक्ति बढ़ती जाती है। मन के शांत होते ही स्नायु तंत्र को भी आराम मिलता है, जिससे मनुष्य अधिक प्रसन्न, स्वस्थ तथा शारीरिक कांति का अनुभव करता है। स्वामी विवेकानंद ने मन की एकाग्रता बढ़ाकर समय को घटाने की बात कही है, जिसका अर्थ है कि एकाग्रचित्त होकर हम सभी प्रकार के कार्यों को अपेक्षाकृत कम समय में तथा अधिक कुशलता से कर सकते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान मन के जिन स्तरों तक पहुंचा है, योग दर्शन का यह विज्ञान उन स्तरों से आगे निकलकर मन के परे के दृष्टा तत्व का भी साक्षात्कार करवा देता है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान मनोविज्ञान के समस्त सिद्धांतों के बीज योग दर्शन में विद्यमान है। महर्षि पतंजलि मन के प्रकाशमय शक्तिशाली स्तरों को अपने शुद्ध, सात्विक और ऋषि दृष्टि से जानते थे, इसलिए उन्होंने मन के सुधार और विकास के तत्वों को भली प्रकार प्रतिपादित किया है। वर्तमान काल मानव समाज तथा मनुष्य मात्र के लिए अशांति, असंतोष और विक्षोभ का समय है। संपूर्ण जगत में यह अशांति और विक्षोभ मनुष्य को बेचैन किए हुए है। मनोदशा की इस बेचैनी के सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न करना होगा। मन को ठीक करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो उपाय सुझाए हैं वे सार्वकालिक और सार्वभौम हैं। योग दर्शन दर्शन शास्त्र होते हुए भी एक क्रिया प्रधान शास्त्र है, क्योंकि केवल विचार मनुष्य के मन में थोड़ा परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर क्रिया में आया हुआ विचार अधिक सफल परिणाम देने वाला होता है। योगाभ्यास से साधक चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। मन की इन्हीं शक्तियों के द्वारा मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, बाह्य और आंतरिक शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्यायशीलता और ईश्वर चिंतन आदि को सिद्ध करके शारीरिक और मानसिक बल तथा सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त कर सकता है। योग के इस सार्वकालिक और सार्वभौम लाभ को विश्व ने स्वीकार किया है, इसीलिए विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारत की प्राचीन योग जीवन शैली को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय किया। यह भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा की विश्व विजय है, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति का विश्व शांति का संदेश संपूर्ण संसार को शांति के मार्ग पर अग्रसर करेगा।
0: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार के विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सामयिक चर्चा, विषय है मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी क्यों। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बीडी शर्मा।
1: आज विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि शासन द्वारा अब प्रत्येक क्षेत्र के बारे में मिट्टी की उर्वरता की जानकारी जुटाने के लिए प्रदेश व्यापी मृदा स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की है। इसका शुभारंभ प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर समारोह पूर्वक आयोजन करके किया जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूँ कि आप वहाँ आकर के और मिट्टी के उपजाऊपन बनाए रखने के लिए, जिससे लगातार आपको अधिक पैदावार प्राप्त हो सके, इसकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र एवं उपसंचालक कृषि कार्यालय पर ये आयोजन किए जा रहे हैं। अभी तक जो है मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं 2 या 3 जिलों के बीच में एक स्थान पर होती थी। अब शासन ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के 2.5 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के पीछे संयुक्त नमूना लेकर के उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें प्रमुख पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी परीक्षण करके उसके आधार पर जो क्षेत्र में फसलें पैदा की जा रही हैं उसके अनुसार कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी, किस प्रकार उसका पोषक प्रबंधन करना है, इसकी विस्तार में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों के प्रशिक्षण आयोजित करके इसकी प्रत्येक क्षेत्र में जानकारी दी जाएगी और ये सभी क्षेत्रों में मिट्टी परीक्षण करने के लिए 3 वर्ष का प्रोग्राम तैयार किया गया है, जो कल 6 दिसंबर से क्षेत्र में प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि 500 या इससे अधिक किसानों के नमूने पिछले 4 माह में लिए गए हैं और पोषक प्रबंधन के बारे में समन्वित प्रयास की सलाह दी जाएगी कि मिट्टी में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं और फसल को कितनी आवश्यकता है, इस अंतर की उर्वरकों की पूर्ति खाद के द्वारा, हरी खाद है, कल्चर है, केचुआ खाद है, कंपोस्ट खाद है, जैविक खादों के द्वारा, कुछ रसायनों के द्वारा, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा समन्वित रूप से इसकी पूर्ति कम से कम लागत में कैसे की जाए, इसके लिए पोषक प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके प्रदर्शन भी गांव-गांव में आयोजित किए जाएंगे। जैविक खादें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं और उपजाऊ क्षमता को बरकरार बनाए रखती हैं और कम लागत में ये दी जा सकती हैं। पानी को अधिक समय तक संरक्षित रखती हैं। यदि ज़्यादा समय तक सूखा पड़ता है तो जिन खेतों में जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है वहाँ की फसल सूखने से बच जाती है, मिट्टी को ढीला बनाती हैं, भुरभुरा बनाती हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं। सभी किसान भाई अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें। जैविक खादें मिट्टी के विषैलेपन को भी समाप्त करती हैं।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, विषय था मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी क्यों। जानकारी दे रहे थे बीडी शर्मा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जिले में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्वालियर किले पे राजा मान सिंह महल के समीप सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट हैं। इसके अलावा शहर के कई संस्थानों द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट परीक्षा आज शहर के 25 परीक्षा केंद्रों में होगी। परीक्षार्थियों, इन्विजिलेटर एवं अन्य स्टाफ को मोबाइल फोन, बैग एवं किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल पारदर्शी पानी की बोतल साथ ले जा सकेंगे। साथ ही एडमिट कार्ड एवं एडमिट कार्ड में उल्लेखित आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज के दो एवं पोस्टकार्ड साइज के एक फ़ोटो को ले जाने की अनुमति रहेगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। दोपहर 1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रवेश देने से पहले बारीकी से जांच की जाएगी। महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग जांच फ्रिस्किंग की व्यवस्था रहेगी। जांच के बाद सभी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। ग्वालियर में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2, केंद्रीय विद्यालय 3, केंद्रीय विद्यालय 4, केंद्रीय विद्यालय 5, SLP कॉलेज, VRG कॉलेज, MLV कॉलेज, साइंस कॉलेज, KRG कॉलेज, सैनिक स्कूल मुरार, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BEd कॉलेज, गोरखी स्कूल, MLV स्कूल मुरार, बालक स्कूल कालपी ब्रिज, उत्कृष्ट विद्यालय 1 मुरार, उत्कृष्ट विद्यालय 2 मुरार, पगन VC विद्यालय, कन्या विद्यालय शिंदे की छावनी एवं बालक शिक्षा स्कूल तानसेन नगर।
2: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
3: छे छप छे छपा के छे, पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
4: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
5: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
4: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
5: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
4: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
5: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
4: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
5: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
4: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
5: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
4: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
5: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
4: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
5: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
6: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
5: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
4: समय है पानी बचाने का,
5: पानी का मोल समझने और समझाने का।
4: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का आज का अंक। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। हिंदी में समाचार प्रातः 7 बजे और संस्कृत में समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
7: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। अद्य 12 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्य वर्षस्य विषयः स्वस्थ वृद्धावस्थायै योगः इति विषयेण विश्वस्मिन् आचर्यते अयं दिवसः। मुख्य कार्यक्रमः पश्चिमबङ्गालस्य कोलकाता नगरे ऐतिहासिके रेड रोड स्थले आयोजते। तत्र प्रधानमन्त्री कॉमन योग प्रोटोकॉल इति सामान्य योगाभ्यासे अस्य अपि राष्ट्रस्य नेतृत्वं विदधाति। मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे अद्य राज्यस्तरीय अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमे राष्ट्रपतिः मुख्य अतिथित्वेन सहभागित्वं करिष्यति। सदरस्थिते गैरिसन ग्राउंड नाम्ना प्रांगणे कार्यक्रमः प्रातः 7:30 आरभ्यते। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् आलक्ष्य अनेकेषु देशेषु योगाभ्यासस्य विशेषः उत्साहः दृष्टः। कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे ओंटारियो विधानसभायाः ऐतिहासिक प्रांगणे विशालं योगसत्रम् आयोजितम्। ब्राजील देशे प्रसिद्धे फोर्स डू इगुआकू जलप्रपाते अपि योगसत्रम् आयोजितम्। डेन्मार्क देशस्य आर्हुस नगरे योगदिवसः समारोहः सोत्साहं सम्पन्नः। अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयेन विशेषः योगदिवस समारोहः आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 15,000 वरिष्ठाः नागरिकाः सहभागित्वं कुर्वन्ति। राष्ट्रव्यापि समारोहाणां भागत्वेन आयोजितः अयम् उत्सवः स्वस्थवृद्धावस्थायै योगः इति राष्ट्रियविषयस्य अनुरूपम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य कोलकातायां INS दुनागिरी इत्यस्य INS संशोधकस्य तथा INS अग्रय इत्यस्य नौसैनिकपोतानाम् अनावरणं करिष्यति। एतेषु पोतेषु 75% स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः कृतः। ओडिशा राज्यस्य मयूरभंज जनपदे रायरंगपुर क्षेत्रे आयोजितायां जनसभायां प्रधानमंत्री अवदत् यत् जनजातीय समुदायाः भारतस्य विकास यात्रायाः सक्रियः सहभागिनः भवन्ति। तेन राज्यस्य प्रगतिः अपि प्रशंसिता तथा प्रायः 47,000 crore rupees विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासश्च कृतः। नीट यूजी पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते। परीक्षा केन्द्रेषु कठोर सुरक्षा व्यवस्था कृता। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्य परीक्षा पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते। एषा परीक्षा देशस्य 50 नगरेषु विदेशस्य 14 नगरेषु च भवति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थान राज्यस्य यात्रायाम् अस्ति। सः अनेकाः रेल परियोजनाः उद्घाटयिष्यति तथा समर्पयिष्यति। केन्द्रीय जलमार्ग मंत्री सर्वानन्द सोनोवालः अद्य अवदत् यत् भारत ध्वजांकिताः त्रयः तैलवाहकाः होर्मुस् जलसन्धिं सफलतया अतिक्रम्य भारतम् आगच्छन्ति। तेषु 94 भारतीय नाविकाः अपि सन्ति। फीफा विश्व चषके नीदरलैंड्स दलेन स्वीडन दलं 5-1 इति अंकेन पराजितम्। ब्राजील दलेन हैती दलं 3-0 इति अंकेन च पराजितम्। क्रिकेट श्रृंखलायाः अंतिम स्पर्धायां भारत ए तथा श्रीलंका ए दलयोः अद्य दम्बुल्ला नगरे सम्मुखी करिष्यतः। स्पर्धा प्रातः 10 आरभ्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि एतत् श्रोतुं प्रभवन्ति। अयं कार्यक्रमः अद्यैव प्रसार्यते इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सुखिनः सर्वे संतो निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय, चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आज प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये प्रसारण आप कार्यक्रम की समाप्ति तक सुन सकेंगे। इसके साथ ही दिन में 11:40 पर आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रातः 7:20 पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 8:30 प्रसारित होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे देवकी नंदन केवट, आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत। सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का प्रसारण होगा प्रातः 9:00। प्रातः 9:30 सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसके ठीक बाद आप सुनेंगे भोपाल से ही अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे प्रातः 10:05 पर।

दिन में 11 बजे से इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे, जिनके अंतर्गत दिन में 11 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगा। दिन में 1:30 लोक संगीत का कार्यक्रम और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दिन में 2:30 पर बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम मुस्कान। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 5:00। इस सभा में 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगा। 5:33 पर आप आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाते हैं, आज प्रातः 7:30 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम आप प्रातः 7:30 बजे हमारे केंद्र से सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं।
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इन पोतों का डिजाइन नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, वहीं INS संशोधक जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए और INS अग्रह पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना ने बताया कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी दे रही है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
2: सेना के विशेष विमान से शनिवार की शाम संस्कारधानी पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रमों के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भोपाल, पांडुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, धार, पन्ना, बैतूल, बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13

0: 1774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए हैं और प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया 11:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
1: आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्जाम दें। नीट के एग्जाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम निर्बाध रूप से सानंद संपन्न होगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो रेलवे रखरखाव कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई सुविधा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान की। इस अवसर पर 38,000 से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4-लेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है, यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है।
3: यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण शिविर भी लगाया है और कोशिश ये है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए जनता को भटकना ना पड़े, इन जन कल्याण शिविरों में हो जाए। विकास की अनेकों सौगात बाड़ी को भी मिली है, विशेषकर तहसील भवन का है लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी की स्वीकृति मांगी थी, वो मूंग खरीदी की स्वीकृति हमने दे दी है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र की राशि के साथ प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि जोड़कर किसानों को हर साल 12,000 रुपए की सहायता दे रही है। इसके साथ ही भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के बरखेड़ी कला स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि गौपालक किसानों को सरकार हर महीने 1100 रुपये प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास जनता की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है और उनका लक्ष्य सुर्खी के हर गाँव को सुविधा युक्त बनाना है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये योजना ई मंडी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है, जिसके तहत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 10:00 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सागर, उज्जैन और रतलाम समेत कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पवन चौक में गृह प्रवेश कार्यक्रम में 167 हितग्राहियों को नए घरों की सांकेतिक चाबियां, चेक और प्रमाण पत्र बांटे गए। शिवपुरी के मानस भवन, पांडुना के ग्राम रामाकुना और डिंडोरी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के ग्राम बिल्डोज में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कटनी में नीट परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष हेल्प सुविधा केंद्र शुरू किया गया। बड़वानी जिले में नीट परीक्षा के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,845 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट UG की पुनः परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज फादर्स डे है। हर साल पितृत्व का स्मरण करने और समाज में सभी पिताओं के सहयोग और योगदान की सराहना करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। पिता बरगद का वो पेड़ है जिसकी छांव में परिवार फलता फूलता है। पिता वह दीपक है जो स्वयं जलकर हमारे जीवन को रोशन करता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म एक फूल दो माली से। स्वर मन्ना डे का है, गीत प्रेम धवन का और संगीत रवि का।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म दो अनजाने से इस गीत को। स्वर किशोर कुमार का है, गीत अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 7:30 बजने को है प्रायोजित कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।

दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

परंपराओं को संजोकर रखे हुए हैं। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक और गरिमा में समारोह में मैं चमन सालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी और कार्यक्रम अधिकारी श्री बिपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुँच रहा है उसमें शामिल है वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री गुरुराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अनुशासी श्री नीला बाजपेयी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश की प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब पधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मरकज है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ के लोगों की शालीनता संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कारधानी के नाम से घोषित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका परिणाम है कि रेवा के हर शंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस्मदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे इस पावन गीत के लिए।

0: राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं, वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है। और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमद मंगभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग, इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश

0: के कोने कोने में ये आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदिगुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की ये नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःभाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यहीं योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्वभर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं, इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं, इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई

पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना ववत्तु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।

0: योग एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज़ आंधी तूफान में जो मजबूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं, और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए।

धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक 0 का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए।
पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे।
शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35-45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए।
कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए।

लीजिए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ।

दबाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आँखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपाल भाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपाल भाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे ज़रूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

0: दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर रखिए। हथेली के अंदर आँखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य हम

0: ना हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान, तन हो निरोग मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहें, यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं। और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
1: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की पहचान परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर

0: कर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहि राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग के इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है, हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: बारहवीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जब अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं, वो योगा के बारे में पूछते हैं क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ, आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजन, जीवन शैली से जुड़े बीमारियाँ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज़ वापस लिए चलता हूँ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:37 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं देवकी नंदन केवट। आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत। आपके साथ संगत कलाकार ढोलक पर हैं संतोष मिश्रा और सारंगी पर साथ दे रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं ये भजन।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं देवकी नंदन केवट। आप सुन रहे हैं इनके गाए लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये दहेज विरोधी गीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे देवकी नंदन केवट, आप सुन रहे थे इनके गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है। केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृतियां प्रदान की। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। और श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा।

0: मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: फिल्म संगीत पर आधारित
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। श्रोताओं, वैसे तो हर दिन खास होता है, लेकिन यदि आज की बात करें तो आज का दिन बेहद ही खास है। वो यूं कि आज हम मना रहे हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि भारत की ही देन है और जिसे समूचे विश्व में जन आंदोलन के रूप में आज मनाया जा रहा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तनाव मुक्ति के लिए हम योग को अपना रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति ने विश्व को कई सारी अमूल्य धरोहरें प्रदान की हैं। इनमें यदि किसी एक परंपरा ने संपूर्ण मानवता को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया है तो वो है योग। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक विज्ञान है। आज जब पूरा विश्व तनाव, अवसाद, अनियमित जीवन शैली और अनेक असाध्य रोगों से जूझ रहा है, तब हजारों वर्षों पुरानी भारतीय योग परंपरा मानवता के लिए आशा की किरण बनकर उभर रही है। श्रोताओं, योग का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही प्राचीन है। भारतीय वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों में योग का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त जो मोहरे हैं, उनमें ध्यान मुद्रा में बैठे हुए व्यक्तियों के चित्र इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में हजारों वर्षों से योग का अभ्यास होता आ रहा है। बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना कर योग को व्यवस्थित वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने अष्टांग योग का सिद्धांत भी दिया। भारत की ऋषि परंपरा में योग सदैव दैनिक जीवन का हिस्सा रहा है। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता था। हमारे साधु संत, तपस्वी और योगी कठिन परिस्थितियों में भी योग के माध्यम से अद्भुत मानसिक एवं शारीरिक क्षमता प्राप्त करते थे। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि योग किसी एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि भारत की अनादि और सनातन जीवन शैली का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो केवल उस प्राचीन भारतीय परंपरा के वैश्विक सम्मान का अवसर है जो सदियों से हमारी संस्कृति में समाहित रही है। आधुनिक युग में योग को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वर्ष 2014 में मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने प्रथम संबोधन के दौरान विश्व समुदाय के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। इसके बाद 21 जून सन 2015 को विश्वभर में पहली बार यह दिवस मनाया गया। 21 जून को योग दिवस के लिए चुनने के पीछे भी एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार है। श्रोताओं, ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। भारतीय परंपरा में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच एक वैश्विक संदेश है। आधुनिक समय में जहां एक और लोग जिम की सीमित दिनचर्या, भारी भरकम मशीनों और समय की बाध्यता से उबने लगे हैं, वहीं योग सहज, सुलभ और सर्वसमावेशी जीवन शैली के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग अब केवल आकर्षक शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और समग्र स्वास्थ्य को भी महत्व दे रहा है। सोशल मीडिया पर योग से जुड़े वीडियो, चैलेंज और जागरूकता अभियान लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिल्मी हस्तियाँ, खिलाड़ी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स द्वारा योग को अपनाने से इसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी है। योग का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी अनेक समस्याओं से बचाव होता है। श्रोताओं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि योग अनेक जीवन शैली संबंधी रोगों की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी है।
योग, संतुलित भोजन और वैज्ञानिक पहनावा, ये तीनों मिलकर भारतीय जीवन दर्शन की समग्रता को दर्शाते हैं। योग हमें मानसिक संतुलन देता है, पारंपरिक भोजन शरीर को पोषण देता है और स्थानीय जलवायु के अनुरूप पहनावा हमें प्राकृतिक चुनौतियों से सुरक्षित रखता है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान और अनुभव का अद्भुत समन्वय किया है। आज के डिजिटल युग में बदलती जीवन शैली के कारण शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं, बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर तक सीमित हो रहे हैं, ऐसे में युवाओं में तनाव भी बढ़ रहा है और अनियमित खानपान अनेक बीमारियों का कारण बन रहे हैं। ऐसे समय में योग आवश्यकता बन चुका है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम और ध्यान को दे, साथ ही स्थानीय और पौष्टिक भोजन अपनाए, तो अनेक रोगों से बचा जा सकता है। यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी देता है कि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और अंततः स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारी आयुर्वेद पद्धति केवल रोगों के उपचार का विज्ञान नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की संपूर्ण जीवन शैली है। आज जब बिगड़ती दिनचर्या के कारण आम लोगों के जीवन में रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, तब योग और आयुर्वेद का समन्वय स्वस्थ दीर्घायु और संतुलित जीवन का सबसे प्रभावी मार्ग बनकर सामने आया है। योग हमें आत्मानुशासन, संयम, करुणा और सकारात्मक सोच की शिक्षा देता है। यह हमें बताता है कि वास्तविक समृद्धि केवल आर्थिक प्रगति में नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन में निहित है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग भारतीय योग परंपरा को अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से योग को वैश्विक मंच पर जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम संकल्प लें कि योग, संतुलित पारंपरिक खानपान और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि आज का दिन बेहद ही खास है, और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं कि जब आपके अपने आपके साथ होते हैं तो हर दिन खास होता है। और वैसे भी आज रविवार है, आपके परिवार के सभी सदस्य आपके साथ होंगे, तो आज का दिन तो बेहद ही खास है। और यदि कोई दिन आपके किसी खास के लिए हो तो वो तो और भी खास है। जी, हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, आज फादर्स डे है। श्रोताओं, जब भी पेरेंटिंग शब्द हमारे कानों में पड़ता है, दिमाग में सबसे पहली तस्वीर माँ और बच्चे की उभरती है। रिसर्च भी बताती है कि बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की कमान जितनी माँ के हाथों में होती है, उतनी ही जिम्मेदारी पिता के कंधों पर भी होती है। श्रोताओं, पापा सिर्फ घर चलाने वाले या बैकअप सपोर्ट नहीं हैं, बल्कि वो बच्चों के पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने वाले मूर्तिकार हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH के जो शोध हैं वो बताते हैं कि पिता का साथ बच्चे के व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य की मजबूत नींव रखता है। जिन बच्चों को बचपन से पिता का साथ और भरपूर प्यार मिलता है, वे बड़े होकर एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन से कोसों दूर रहते हैं। पिता का जुड़ाव बच्चे के बायोलॉजिकल स्ट्रेस सिस्टम पर जादुई असर डालता है। बचपन में पापा से मिला भरपूर वक्त बड़े होने पर शरीर में तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को बिगड़ने नहीं देता,

से बच्चे व्यस्क होने पर भी हर मुश्किल और तनाव को मुस्कुराकर झेल जाते हैं। बच्चों की भाषा सुधारने में भी पापा का रोल है। जहाँ माताएं अक्सर बच्चों से बात करते समय उनकी पसंद के आसान शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वहीं पिता बातचीत में नए और थोड़े चुनौतीपूर्ण शब्द शामिल करते हैं। पिता की डांट, उनकी बातें हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। श्रोताओं, पिता यूं तो हर घर में रक्षक, संरक्षक, अर्जक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों को सही मार्गदर्शन और मुश्किल परिस्थितियों में सहयोग भी पिता ही देते हैं। कभी कभी एक अच्छे दोस्त बनकर वो हमारी सारी उलझनों को आसानी से सुलझा देते हैं, और जब वो थके हारे आते हैं तो उनका बैग बच्चों के लिए सरप्राइज होता है, और बच्चे उनके बैग में देखते हैं कि क्या आज हमारे लिए है, और इसीलिए बच्चे उनका बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं।

तो श्रोताओं, आज आप सभी ने अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज ज़रूर प्लान किया होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि आज का दिन खास है आपके उस व्यक्ति के लिए जो आपके लिए एक प्रेरणा है, आपका संरक्षक है और आपको हमेशा मार्गदर्शन देता है। तो आज के इस दिन को मनाइए, अपने परिवार के साथ खूब मौज मनाइए। फिलहाल हम बात करते हैं कि आज का दिन एक और बात में खास है। आज है 21 जून और आज है साल का सबसे बड़ा दिन। जी हाँ, आमतौर पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात, लेकिन 21 जून को सूरज इससे भी ज़्यादा समय के लिए निकलता है, यानी आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है और 21 जून के दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ अपने अधिकतम झुकाव पर होता है। इसलिए सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा पर सीधे 90 डिग्री के एंगल से पड़ती हैं। इसलिए सूरज ज़्यादा समय तक निकलता है। ऐसा सिर्फ 21 जून के दिन ही होता है। श्रोता, हमारी पृथ्वी गोलाकार है। अगर इसे हम दो भागों में बांट दें तो इसके प्रत्येक हिस्से में गोलार्ध कहेंगे। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में आने वाले क्षेत्रों में आज का दिन सबसे बड़ा होगा और इसमें भारत, चीन, अमेरिका जैसे देश बसे हुए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में आज का दिन सबसे छोटा होगा। 21 जून के दिन एक और खास बात है कि आज दोपहर में कुछ वक्त के लिए परछाई नहीं बनेगी क्योंकि सूरज बिल्कुल आपके सिर पर रहता है। यानी आज के दिन की ये भी एक खासियत है कि आज दोपहर में एक समय ऐसा भी होगा जब परछाई बिल्कुल भी नहीं बनेगी। श्रोताओं, 21 जून की इस घटना को समर सोल्स्टिस या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सोल्स्टिस शब्द लैटिन शब्द सोल यानी सूरज और सिस्टेरे स्थिर यानी स्थिर होना से आया है, जिसका अर्थ होता है सूरज का स्थिर होना। इसी तरह से 21 या 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून के साथ एक और खास बात जुड़ी है कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस बार यानी आज 21 जून को फादर्स डे भी है। तो आप अपने फादर यानी अपने पापा को भी आज विश करेंगे। और साथ ही साथ आज का दिन एक और बात में खास है दोस्तों, आज है विश्व संगीत दिवस। श्रोताओं, संगीत वो भाषा है जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है। ये दिलों को जोड़ता है, भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है और जीवन को मधुरता से भर देता है। संगीत आत्मा की आवाज है जो शब्दों से परे जाकर सीधे दिल तक पहुंचती है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य संगीत की शक्ति, उसकी विविधता और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने की भावना का उत्सव बनाना है। जब सुरों की सरिता बहती है तो मन आनंद से भर उठता है। फिर कहा है कि सुरों की कोई सीमा नहीं होती, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे उसे सुंदर कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। जी हाँ, संगीत की भाषा ऐसी ही होती है।

इसे हर कोई समझ लेता है। तभी तो छोटे बच्चे जब उनकी माँ उन्हें लोरी सुनाती है तो वो जल्दी से सो जाते हैं। और यदि हम अपनी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में तो संगीत चारों ओर बिखरा हुआ है। तो आइए कार्यक्रम में आज सुनते हैं ये प्रकृति के संगीत से जुड़ा गीत।

श्रोताओं, आज का दिन बेहद ही खास। अपने पिताजी को विश कीजिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग कीजिए और सुरमई संगीत से खुद को तरोताजा कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी श्रोता साथी सुन रहे थे सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को है। सिंधी कार्यक्रम अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।
1: सिंधियत जी सुरहाड़।

0: जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावना ने तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, अॼु असां हिकु अहिड़े विषय ते ॻाल्हाइण लाइ गॾु थिया आहियूं जंहिंजो तालुक़ु इंसान जी सिहत, सुकून ऐं खु़शहालीअ सां आहे। योग। योग भारत जी प्राचीन विरासत आहे जंहिंखे अॼु सॼी दुनिया अपनाए रही आहे। योग जो मतिलबु आहे शरीर, मन ऐं आत्मा जो मिलणु। ही सिर्फ़ हिकु कसरत कोन्हे पर हिकु मुकमल ज़िंदगीअ जी राह आहे। रोज़ाना योग करण सां शरीर मजबूत थींदो आहे, मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं माण्हूअ जो आत्मविश्वास बि वधंदो आहे। अॼु जी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगीअ में तनाव, फ़िक्र ऐं घणियूं बीमारियूं वधियूं रहियूं आहिनि। अहिड़े वक़्त में योग असांखे संतुलित ऐं स्वस्थ ज़िंदगीअ जी राह ॾेखारींदो आहे। योग सां न सिर्फ़ु शरीर फिट रहंदो आहे पर मन में सकारात्मक सोच पैदा थींदी आहे। 21 जून ते सॼी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हीअ असां भारतवासियुनि लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त योग जे महत्व खे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते मान्यता मिली आहे। हीअ भारत लाइ घणे गर्व जी ॻाल्हि आहे छो जो असांजी पुराणी परंपरा अॼु विश्व जे हर कोने में सम्मान हासिल करे रही आहे। दोस्तों, योग सिर्फ़ु शरीर खे स्वस्थ रखण जी विधि कोन्हे पर हिकु अहिड़ी जीवन शैली आहे जेकी इंसान खे मानसिक, शारीरिक ऐं आध्यात्मिक रूप सां मजबूत बणाईंदी आहे। योग शब्द जो मतिलबु आहे जोड़ण, यानी शरीर, मन ऐं आत्मा खे हिकु सूत्र में ॿधणु। असांखे इहो संकल्प करणु घुर्जे त असां रोज़ाना कुझु समय कढी योग ज़रूरु कंदासीं। जॾहिं हर माण्हू स्वस्थ रहंदो त परिवार स्वस्थ रहंदो ऐं परिवार स्वस्थ त समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ रहंदो त देश मज़बूत ऐं प्रगतिशील थींदो। योग सिर्फ़ु हिकु व्यायाम कोन्हे पर स्वस्थ ऐं सुखी जीवन जी कुंजी आहे। अचो त योग अपनायूं, निरोगी जीवन पायूं। दोस्तों, योग जे बारे में वधीक जानकारी ॾियण लाइ असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी, जेके योग जे बारे में छा फ़ाइदा आहिनि ऐं कीअं योग करणु घुर्जे उन जे बारे में असांखे वधीक जानकारी ॾींदा। त डॉक्टर साहिबु, मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि त योग आहे छा आख़िर?
1: योग आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि आहे। इन जे लाइ युजते अनेन इति योग आहे। जेॾी महिल आत्मा जो परमात्मा सां गॾु मिलन थींदो आहे, उहो यूनाइट जेको कंदो आहे, जेको कनेक्ट कंदो आहे, उहो योग आहे। तीअं ई असां योगा कर्मासु कौशलम, भगवत गीता में कर्म योग जे अंदरि योग जी परिभाषा जेकी आहे उहा ॾिनल आहे, योगा कर्मासु कौशलम। असां कहिड़ो बि कमु था कयूं उहो स्किलफुल हुजे, उन में परफेक्शन हुजे ऐं पंहिंजो इनर पीस जे लाइ बि असां योग कंदा आहियूं। त योगा फिज़िकल लेवल ते, मेंटल लेवल ते, इमोशनल लेवल ते, हर लेवल ते असांखे बेनिफिट ॾेई रही आहे। ऐं सभिनीनि खां वधीक त मन शांत रहंदो आहे, असां तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं, हमेशह फिट रहंदा आहियूं। इन जे लाइ योग जेको आहे तमामु ज़रूरी आहे।
0: असां अॼुकल्ह ॾिसूं पिया था त कीअं भागदौड़ वारी ज़िंदगी लॻी पई आहे। ॿार त अॼुकल्ह उन्हनि खे टाइम ई कान्हे, फुर्सत ही कान मिलंदी आहे। अॼु जे आधुनिक जीवन में हिन योग जो छा महत्व आहे?
1: जीअं तव्हां चयो, भागदौड़ जी ज़िंदगी, असां ॾिसूं पिया था असांजो फिज़िकल एक्टिविटी ख़तमु पियो थो थींदो वञे, केवल स्ट्रेसफुल लाइफ, तनाव सां असां रहंदा पिया था वञूं। ॿार ॾिसूं त मोबाइल में सॼो ॾींहुं आहिनि ऐं वधीक टाइम असां स्क्रीन ते था बितायूं,
0: सभिनी खां वॾी परेशानी,
1: ॾाढी वॾी। ऐं उन जे करे थिए छा थो की असांजो फिज़िकल मूवमेंट थी कान थो सघे, मानसिक विकास जेको थियणो आहे उहो थी कान थो सघे, केवल असां हिकु लिमिटेड सोच में रहिजी विया आहियूं, जंहिंजे करे असांखे शारीरिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं, मानसिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं। त सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जेॾीमहिल असां कोई एक्टिविटी नथा कयूं, असांजी अस्वस्थ दिनचर्या आहे, उन जे करे जेके परेशानियूं थींदियूं आहिनि उहे बीमारियुनि में उत्पन्न थींदियूं आहिनि। ऐं पोइ मानसिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि, शारीरिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि। ऐं उन्हनि में सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे की योगा जेको आहे उहो हिकु फिज़िकल एक्टिविटी त आहे ई, पर हिकु मेंटल बूस्टर जी तरह कमु कंदो आहे, माइंड खे रिलैक्स करे एनर्जाइज कंदो आहे। असां जेॾीमहिल प्राणायाम, ध्यान, आसन जी प्रक्रिया कंदा आहियूं त ओवरऑल बॉडी में रीवाइटलाइजेशन थींदो आहे, असांजो वाइटल फोर्स वधंदो आहे। त असां जेको आलसी जीवन पिया बितायूं, हाणे असां उहो आलसी जीवन छॾे करे व्यायाम करे ऐं पाण खे तंदुरुस्त बणाइण जे रस्ते ते असां हली रहंदासीं।

0: असांजा रोग बि पूरी तरीक़े सां ठीकु थींदा त हिन मॉडन लाइफ स्टाइल में सभिनीनि खां वधीक ज़रूरी आहे हिकु कलाकु पंहिंजे लाइ कढणु चोवीहनि कलाकनि में जंहिं वटि पंहिंजे लाइ हिकु कलाकु कान्हे पोइ जीअणु बेकार आहे जीअणो आहे तंदुरुस्तु जीअणो आहे बिना दवा तंदुरुस्ती हासिलु करणी आहे त योग जे माध्यम सां केवल हिकु कलाकु पंहिंजे शरीर खे ॾेई करे शारीरिक व्यायाम करे तंदुरुस्तु रही सघूं था
1: सही आहे इहा ॻाल्हि त अगरि असांजो शरीर स्वस्थ आहे त असांजो जीवन बि स्वस्थ आहे
0: पूर्ण रूप सां स्वस्थ रहंदासीं असां
1: योग ज़रूरी छो आहे
0: योग जे प्रकार सां असांखे खाधो ज़रूरी आहे जंहिं प्रकार सां असांखे सुम्हणु ज़रूरी आहे जंहिं प्रकार सां कमु करणु ज़रूरी आहे जंहिं प्रकार सां आमदनी असांखे हुजणु जुड़े उहो ज़रूरी आहे तंहिं प्रकार सां मन जी शांती ऐं शरीर जी तंदुरुस्तीअ जे लाइ योग ज़रूरी आहे जीअं ध्यानु जेको आहे उहो आत्मा जो भोजन आहे शरीर जो भोजन त असां रोटी था खाऊं पर आत्मा खे अगरि असांखे स्वस्थ बणाइणो आहे त शरीर स्वस्थ थींदो शरीर स्वस्थ थींदो त उन जे लाइ ध्यान जी प्रक्रिया जेकी आहे मन खे शांति कंदी आहे छो की असां या 90% प्रॉब्लम्स जेके आहिनि माइंड खां दिमाग़ खां चालू थींदा आहिनि ऐं शरीर जे मथां रिफ्लेक्ट कंदा आहिनि कारण वीचारनि में आहे इन जे लाइ जेॾी महिल चवंदा आहियूं की पंहिंजा वीचार नकारात्मक थींदा आहिनि त शरीर में कीअं पंहिंजे मथां शरीर जे मथां बीमारियूं रिज़ल्ट कंदियूं आहिनि त इहो साइकोसोमेटिक डिज़ीज़िस खे ओरिजन कंदो आहे त इन सां छा थींदो आहे न कि कारण त दिमाग़ में हूंदो आहे उन जा रिफ्लेक्शन शरीर ते ॾिसंदा आहिनि कमज़ोरी थियण त ॾिसंदा आहियूं पाण गुस्से में केतिरो एंज़ाइटी थी वेंदी आहे त कीअं हथ पेर कापंदा आहिनि असांजा त इहो आहे कि तनाव जो शरीर जे मथां प्रभाव ऐं पोइ शरीर जा अंग जेॾी महिल पंहिंजो कमु करणु छॾंदा आहिनि पोइ शरीर खे बीमारी थींदी रहंदी आहे त असांखे मन खे जेॾी महिल ध्यान जी प्रक्रिया सां शांति कंदा आहियूं ऐं असांजो प्रफुल्लता जेॾीमहिल ख़ुशी वधंदी आहे आनंदित रहंदा आहियूं असां त तेॾीमहिल शरीर जे अंदरि कोई सूरु कोन महसूसु थींदो आहे कोई तकलीफ़ कोन महसूसु थींदी आहे असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्तु महसूसु कंदा आहियूं वधीक कमु करे सघंदा आहियूं एनर्जी अची वेंदी
1: आहे योग सां कहिड़ियूं बीमारियुनि जो इलाजु थी थो सघे
0: योग सां अॼु जे तारीख़ में अगरि ॾिठो वञे एट प्रेज़ेंट जेके माण्हू आधुनिक जीवन में योग अपनाइनि था ॾाढा माण्हू आहिनि जंहिं पंहिंजे जीवन शैलीअ जे संबंधित बीमारियुनि खे पूर्णता ठीकु करे वेंदो आहे डायबिटीज़ आहे हाइपरटेंशन आहे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑडर आहे गोॾनि जी तकलीफ़ आहे एड़ियुनि जी तकलीफ़ आहे शोल्डर जी तकलीफ़ आहे साहु खणण में तकलीफ़ आहे या इवन मेंटल प्रॉब्लम्स आहिनि जीअं डिप्रेशन आहे एंज़ाइटी आहे
1: या डिप्रेशन जेको तव्हां चयो एंज़ाइटी अॼुकल्ह ॿारनि में हिकु इहो वर्ड डिप्रेशन स्ट्रेस एंग्ज़ाइटी मतिलबु इहे मां टे वर्ड सम्झां थी की अॼुकल्ह हर हिकु शायदि नंढो ॿार बि इहा ॻाल्हि ज़रूरु दोहराईंदो आहे मां डिप्रेशन में आहियां इन डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटीअ मां बि मतिलबु योग करे असां इन खे ख़तमु करे था
0: पूरे तरीक़े सां था करे सघूं योग में एतिरी शक्ति आहे छोकी असां हींअर छा आहे पंहिंजो स्वाद इंद्रियूं आहिनि असां स्वाद इंद्रिय जे वश में आहियूं जबकि थियणी घुरिजे असांखे स्वाद इंद्रिय खे पंहिंजे वश में करणु घुरिजे त पंज इंद्रियूं जेके आहिनि उन्हनि खे असां पंहिंजे कंट्रोल में कंदासीं त असां डिप्रेशन खां एंग्ज़ाइटी खां ऐं शारीरिक प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इन्हनि सभिनी सां ठीकु करे था सघूं छोकी पंच कोश जे आधार ते असांजो शरीर निर्माण थियो आहे योग में चवंदा आहिनि अन्नमय कोश मनोमय कोश प्राणमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश त मनोमय कोश में कारण आहे त असांजो प्राणमय कोश बि अफेक्ट थींदो ऐं उनजो रिफ्लेक्शन अन्नमय कोश शरीर ते ईंदो असां अगरि माइंड खे ठीकु था कयूं मन खे अगरि ठीकु था कयूं वीचारनि में सही था कयूं त नेगेटिव थॉट्स जेके ॿारनि में अचनि था जंहिंजे करे डिप्रेशन थिए थो अगरि उन्हनि थॉट्स खे असां मेडिटेशन करे ऐं योगा करे असां अगरि उहो पॉज़िटिव करे था विझूं ऐं पॉज़िटिव सकारात्मक सोच रखनि था त ॿारनि जो डिप्रेशन पूरी तरीक़े सां ख़तमु ऐं मनोमय कोश ठीकु थींदो त प्राणमय कोश असां आनंदमय कोश अल्टीमेट सेल्फ रियलाइज़ेशन छा आहे कि शरीर जे अंदरि कोई बि पीड़ा न हुजे कोई तकलीफ़ न हुजे मन हमेशह तंदुरुस्तु हुजे पीस हुजे शरीर में त असां स्वस्थ आहियूं न त बीमार आहियूं त योग अहिड़ी कला आहे जेको न केवल बीमार माण्हू थो करे सघे पर स्वस्थ माण्हू बि कंदो त बीमारी कान थींदी
1: जी इहा त सही ॻाल्हि आहे मतिलबु पहिरियों खां ई पंहिंजी तयारी करे छॾिजे की अॻियां हली करे असांखे कोई बि बीमारियूं न वेड़े वञनि
0: जी
1: हिकु ॻाल्हि बि मां पुछणु चाहींदमि की अॼुकल्ह ॿार जेके आहिनि ॿाहिरियों खाधो ॾाढो खाईंदा आहिनि. असां ॾिसंदा आहियूं की पिज़्ज़ा, बर्गर, इहे फास्ट फूड त ॾाढो था खाइनि. अगरि उहे खाई करे ऐं योग कनि त उहे छा उन्हनि जे मथां इफ़ेक्ट ओतिरो ई रखंदा की उनजो घटि थी वेंदो?
0: भगवत गीता में भॻवानु श्री कृष्ण ॾाढो सुठो जेको आहे न भोजन जे मथां वाक्य ॾिनो अथई. इन में टे प्रकार जा, असांजी प्रकृतिअ जे आधार ते टे प्रकार जा भोजन थींदा आहिनि, सत्वगुण, रजस गुण ऐं तमस गुण. इहे टे गुणनि जे आधार ते असांजी प्रकृति जो निर्माण थींदो आहे, शरीर जो निर्माण थींदो आहे. असां जंहिंसां खाएं अन वैसा हो गमन. हाणे मन ओड़ो थींदो जहिड़ो रोटी खाईंदासीं. जैसा हो मन वैसा होगा तन. त जहिड़ो मन हूंदो तहिड़ो तन थींदो, ऐं जैसा हो तन वैसा हो आपका जीवन. त असांजो जीवन कहिड़ो थियणो आहे उहो असांजे भोजन ते थो तय करे. असांजो मन कीअं थियणो आहे असांजे भोजन ते थो तय करे. त सात्विक भोजन खाईंदासीं त ऑटो असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त था रखूं. राजसिक ऐं तामसिक खाईंदासीं त चिड़चिड़ो सुभाउ, अहिड़ा व्यवहार पंहिंजो रहंदो जेको शरीर खे बि नुक़सानु कंदो रहंदो. त ॿारनि खे जेतिरो थी सघे असां जंक फूड खां परे रखूं ऐं प्राकृतिक औषधीय आहार ॾियूं, जीअं सात्विक आहार आहे, ऐं उन्हनि जा वीचार सात्विक थींदा. पोइ न हू कॾहिं चिड़चिड़ कंदा न गुस्सो कंदा. अॼुकल्ह ॿारनि में केतिरो गुस्सो ऐं चिड़चिड़ो थी पियो आहे. त उन्हनि जे लाइ त सभिनीनि खां बेस्ट आहे की उन्हनि खे अगरि असां सात्विक आहार ॾियूं था ऐं उन सां अगरि हू पंहिंजी प्रकृति सात्विक ठाहिनि था त तव्हां उन्हनि जे ॻाल्हाइण में बि नम्र व्यवहार महसूसु कंदव. त उहो उन सां फ़र्क़ु पवंदो. पर सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे पतंजलि योग जेको आहे अष्ट अंगनि ते आधारित आहे, जंहिंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि. अल्टीमेट रियलाइजेशन छा आहे? असांखे समाधिअ ताईं पहुचणो आहे. पर असां ॾाढा माण्हू अट्रैक्ट थी करे केवल आसन ते रुकजी विया आहियूं. केवल योगा मतिलबु आसन, शारीरिक व्यायाम न. इन जा रूल्स ऐं रेगुलेशन जेके आहिनि की असांखे सच ॻाल्हाइणो आहे, ब्रह्मचर्या जो पालन करणो आहे, भॻवान खे सरेंडर करणो आहे, शरीर ई साफ़ सुथरो रखणो आहे, आंतरिक शुद्धिकरण करणो आहे. इहे रूल्स ऐं रेगुलेशन आहिनि की असां कंहिंखे चोट कान पहुचाईंदासीं. पहिरीं इहे नियम में असां परिपक्व थी वेंदासीं, असां परफेक्शन अची वेंदो. पोइ असां आसन, प्राणायाम ऐं प्रत्याहार करे था सघूं, तॾहिं त विड्रॉवल थींदो सेंसस जो. पर असां शॉर्टकट अपनाए करे थर्ड सिधो अंग ते पहुचंदा आहियूं, आसन कयूं, प्राणायाम कयूं ऐं थी वियो योग. न, बेसिक फर्स्ट स्टेप आहे यम ऐं नियम. उनखां पोइ आसन, पोइ प्राणायाम, पोइ प्रत्याहार ऐं धारणा, ध्यानु, समाधि. त उहो तेॾीमहिल ई थी सघंदो असांजो आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि, जेॾीमहिल रूल्स ऐं रेगुलेशन इन स्टेप सां हलंदासीं. त अॼु जे मॉडर्न जीवन में हिन बिज़ी दौड़ भाग में सभिनीनि खे सभु चवंदा आहिनि असां वटि टाइम कान्हे.
1: सभिनी खां वॾी परेशानी
0: टाइम कान्हे. ऐं टाइम कान्हे त जंहिं वटि पंहिंजे शरीर जे लाइ टाइम कान्हे. अॼु अगरि तकलीफ़ हूंदी, शरीर बीमार हूंदो, हॉस्पिटल में भर्ती थियासीं, पोइ बि त शरीर जे लाइ टाइम कढणो
1: आहे. त
0: अॼु अगरि असां टाइम कढियोसीं ऐं अॼु योग करे असां पंहिंजे पाण खे तंदुरुस्त करे वेंदोसीं त असां हॉस्पिटल जो ख़र्च बि बचाईंदासीं ऐं हॉस्पिटल जो टाइम बि बचाईंदासीं जेको वञणो आहे. त जीअं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थींदी आहे, अॼुकल्ह एड्स ईंदियूं आहिनि ॾाढियूं, हा न, 28 रुपया ॾियो करोड़ जो तव्हांजो लाइफ इंश्योरेंस थी वेंदो. मां चवंदो आहियां तव्हां कलाकु पंहिंजे शरीर खे रोज़ु ॾियो, तव्हांजो 365 ॾींहंनि जो इंश्योरेंस
1: आहे.
0: तव्हांखे न इंश्योरेंस जी प्रीमियम ॾियणी पवंदव ऐं न बीमार थींदव.
1: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे.
0: त असां पंहिंजो ऐं जंहिं वटि वधीक टाइम आहे, जेको रिटायर्ड आहे, उहो 2 कलाक ॾिए, 3 कलाक ॾिए. त शारीरिक व्यायाम छो ज़रूरी आहे? छो की शरीर जे अंदरि जेकी गंदगी आहे न, उहा शरीर खां ॿाहिरि निकिरंदी पसीने जे माध्यम सां, पेशाब जे माध्यम सां, श्वास जे माध्यम सां, मल जे माध्यम सां. त असां खाइण में पंहिंजे शरीर जे अंदरि गंदगी विझूं था, पर कढण जे टाइम ते असां व्यायाम कान था कयूं. ऐं व्यायाम पौष्टिक तत्व जेके आहिनि शरीरनि खे लॻनि, कचरो शरीर खां ॿाहिरि निकिरे, इन बैलेंस जे लाइ योग, प्राणायाम, वॉक, जॉगिंग करणु, इहे असांखे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करणियूं हूंदियूं आहिनि. त जेको माण्हू शारीरिक व्यायाम करे थो न, उहो कॾहिं बेड ते कान ईंदो मरते दम ताईं, उहो हमेशह स्वस्थ रहंदो. तव्हां ॾिसो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 200 कंट्रीज में हींअर सेलिब्रेट थिए थो. 21 जून ते असां इंटरनेशनल योगा डे मल्हाईंदासीं, डे ऑफ योगा. माननीय प्रधानमंत्री जो इनिशिएटिव हो 10 सालन का असा जगह जगह ते सेलिब्रेट कंदा ता छु हिनर योगा संगम और योगा समावेश हरित योग यो कार्यक्रम हिन टाइम ते प्रधानमंत्री जन आयुष मिनिस्ट्री जे माध्यम सा लॉन्च कयो है 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ते संगम मतलब सबनी के कनेक्ट करन जोड़न
1: जो योग जो मतलब ही होंदो आ की जोड़न
0: हां ते सबनी के जोड़न आओ वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर वन फैमिली
1: केडी सुठी गाला
0: ते यो उद्देश्य सा जेडी मला असा हलू दा ते ता खुद सोचो असा फैमिली भी हिका असा अर्थ भी हिका असा फ्यूचर भी हिका और असा हेल्थ भी हिका त सबनी जे स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य जे लाए अगर योग कंदा रहना सी त हमेशा तंदुरुस्त रहना सी कदे बीमारी कान थी न रोग मुक्त भारत जो निर्माण योग सा ही थी सके तो और योग सा 90% बीमारियों ठीक थी वेंदियूं छो कि मन में जेकी बीमारी थी आ वो तन ते लथी आ तन जी बीमारी ठीक करनी आ त पहिरीं मन के ठीक करणो
1: पवंदो
0: और मन ठीक आ त सब ठीक
1: आ सब ठीक
0: आ मन ठीक कान्हे
1: पाण असां ॾिसंदा पायूं की खाधे जो बि फ़र्क़ु पवंदो
0: आहे
1: जीअं असांजा बुज़ुर्ग ॾिसूं त उहे अॼु जी जेकी नई टही आहे उन खां वधीक सुठे सां हली सघंदा आहिनि ऐं वधीक कम बि करे सघंदा आहिनि मतिलबु आलसपन जेको असां ॾिसूं पिया था की अॼुकल्ह जी जनरेशन में अॼुकल्ह जे ॿारनि में उहो त वधीक ई आहे त योग करण सां छा आहे की इहो आलसपन बि वेंदो आहे है न जीअं मानसिक तव्हां चयव त मानसिक और फिज़िकल ॿई स्ट्रेंथ थियूं अचनि
0: रोटी जो जेको है तांजे खादे जो चयो ढाडो फर्क पेंदो है एक गाल ध्यान पे अचे पेरी असा बुजुर्ग जेके न वचेंदा घट खा गम खा डॉक्टर वट करी न वन
1: अरे वाह
0: हाणे जेको है ना हाणे चेंदा है वधिक खाओ गम न स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाओ वधिक खाओ और रोज रोज डॉक्टर जा चक्कर लगायो
1: और गम न खाओ
0: गम न खाओ
1: सही है हाणे हलंदे हलंदे असा इहो मां चवंदमि की नई टई ऐं असांजे श्रोताउनि खे तव्हां योग जे बारे में छा मैसेज ॾियणु चाहींदव
0: मां त श्रोताउनि खे हिकु ई मैसेज ॾींदमि की अगरि असां जीवन में बदिलाउ चाहियूं था परिवर्तन ऐं पंहिंजे पाण खे हमेशह तंदुरुस्त रखणु चाहियूं था त पंहिंजे लाइ टाइम कढूं जेको कंहिं वटि आहे कोन पर तव्हां 30 मिंट 30 मिंट बि अगरि तव्हां पंहिंजे लाइ कढंदा कलाक बि पंहिंजे लाइ कढंदा ऐं योग केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जे लाइ न कयूं योग खे पंहिंजे जीवन में शामिलु कयूं पोइ तव्हां ॾिसंदा न डिप्रेशन रहंदो न शरीर जी प्रॉब्लम रहंदी कुझु प्रॉब्लम कान रहंदी इन जे लाइ तव्हां ऑफिस में आयो तॾहिं बि योग करे था सघो प्राणायाम त उते वेठे वेठे बि था करे सघो ईअं त आहे कान था करे सघो त इन जे लाइ करण जो मन ठाहिणु इहो मुंहिंजो संदेश आहे की असां करण जो मन ठाहियूं ऐं करणु प्रारंभ कयूं अगरि चालू कंदासीं तॾहिं ई सफलता हासिलु थींदी न त सफलता हासिलु कान थींदी
1: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे जीअं माण्हू पंहिंजे लाइ टाइम कढनि था जीअं सिनेमा ॾिसण लाइ त टाइम कढनि या कुझु बि कहिड़ी बि एक्टिविटी करण लाइ टाइम कढनि था त उन लाइ बि टाइम कढणु ॾाढो ज़रूरी आहे ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायव योग जे बारे में तव्हांजो घणो घणो महिरबानी आहे की तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं योग जे बारे में असांखे हेॾी सुठी जानकारी ॾिनव
0: धन्यवाद
1: दोस्तो हाणे वधूं था हिकु ॼाण जी तरफ़ वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस ही ॾींहुं असांखे अहिड़ी महान वीर नारीअ जी यादि ॾियारींदो आहे जंहिंजे साहस त्याग ऐं देशभक्ति इतिहास जे सुनहरे अखरनि में लिखियलु आहे रानी दुर्गावती भारत जी अहिड़ी महान वीरांगनाउनि में शामिलु आहे जंहिं पंहिंजे राज्य प्रजा ऐं सम्मान जी रक्षा करण लाइ पंहिंजी जान क़ुर्बान करे छॾी नंढपण खां ई हुन में वीरता आत्मविश्वास ऐं नेतृत्व जी भावना हुई उहा युद्ध कला घुड़सवारी ऐं शस्त्र हलाइण में माहिर हुई राणीअ जो विवाह गोडवाना जे राजा दलपत शाह सां थियो राजा दलपत खां पोइ पंहिंजे पुट वीर नारायण जे संरक्षक जे रूप में राज्य जो शासन संभालियो हुन न केवल कुशलता सां राज्य हलायो गॾोगॾु प्रजा जे कल्याण ऐं विकास लाइ घणेई कम बि कया जॾहिं गोडवाना ते मुग़ल सेना हमिलो कयो तॾहिं राणी दुर्गावती हिमत हारण जे बजाए दुश्मननि जो डटे करे मुक़ाबिलो कयो हुन पंहिंजे सैनिकनि सां गॾु युद्ध जे मैदान में लही वीरता जो शानदार उदाहरण पेश कयो युद्ध जे हलंदे घायल थी वञण खां पोइ बि हुन हार न मञी 24 जून 1564 जे ॾींहुं राणी दुर्गावती पंहिंजे स्वाभिमान ऐं स्वतंत्रता जी रक्षा कंदे वीरगति पाती। हुन आत्मसमर्पण खां बहितर बलिदान ॾियण खे सही समुझो। हुननि जो त्याग ऐं बलिदान अॼु बि असांखे प्रेरणा थो ॾिए। रानी दुर्गावतीअ जो जीवन असांखे इहो सेखारींदो आहे त मुश्किल हालात में बि हिमत, आत्मविश्वास ऐं सचाई कॾहिं न छॾणु घुरिजे। हुन जो बलिदान ख़ासि करे जाइफ़ाउनि लाइ प्रेरणा आहे त नारी शक्ति हर चुनौतीअ जो डटे करे सामनो करे सघे थी। अचो त गॾिजी मिली असां सभु महान वीरांगना खे श्रद्धापूर्वक नमन करियूं ऐं इन सां गॾु गॾु ॿुधूं था घनश्याम वासवानी ऐं दादा दुखायल जो गायल ही सुहिणो देशभक्ति गीत।

दोस्तों, नशो इंसान जी जिंदगी जो कि अड़ो दुश्मन है, जेको धीरे धीरे उन जी सेहत, परिवार, सम्मान ए भविष्य के बर्बाद कर छींद है। शराब, तंबाकू, गुटका, सिगरेट ए बू भी नशेलू शयू शरीर के तो नुकसान पहुंचाएन ही थियं, पर मानू की सोच, व्यवहार, सोचने ए निर्णय की क्षमता के भी खराब असर पहुंचाएन थियं। अज घना नौजवान गलत संगत, तनाव या फैशन के हलंदे नशा था कन, पर उन यो समझण घुर्जे तो कड़ो भी नशो कें भी समस्या जो हल ना है। नशो तो पान ही समस्या वधाई है, इंसान के पैं लक्ष्य ए सफलता का परे तो करे। नशे के कारण घने परिवार तबाह थी वेंदा हैं, घणियों बीमारियों वधंदी वेंदियों हैं, पैसे के नुकसान से गड समाज में अपराध के भी वधाई है। नशो करण वारो इंसान पैंजी जिंदगी से गड पैंजे परिवार की जिंदगी के भी खराब कर छींद है। एक स्वस्थ ए प्रगतिशील समाज तद ही बणजो जडे असांजी नई टई नशे का पासो करे, शिक्षा में, खेलकूद में, योग ए सकारात्मक सोच में अग्या वधे। ये संस्कार उन्हें घर में ही मिलंदा। मुझी तो सभी माओ पी ए वडन सा निमाणी वेनती है तो तवां भी पैंजे बारन या कंखे भी नशो कंदे डिसो तो उनन के रोकन तवां जो फर्ज है। पैंजे समाज में नशे जे नुकसान खां सभी के जागरूक करण असां जो फर्ज है। दोस्तों, इन्हीं सा गड बुधू था एक सुहणो गीत।

दोस्तों इन्हीअ खां पोइ हिकु मां ॿी ॼाण ॾियणु चाहींदमि। असांजे मोदी सरकार खे 12 साल पूरा थिया आहिनि। सरकार जी जॾहिं 12 साल पूरा थिया तंहिं दौरान मुल्क जी तरक़ी, खु़शहाली ऐं आवाम जी भलाईअ लाइ घणेई कम कया विया। गुज़िरियल 12 सालनि में मुल्क में घणेई अहम तब्दीलियूं आयूं। तरक़ीअ जा कम थिया, ग़रीब किसाननि, जाइफ़ाउनि ऐं नौजवान या समाज जे कमज़ोर वर्गनि जी भलाईअ लाइ घणेई योजनाऊं बि शुरू कयूं वयूं। साफ़ सफ़ाई, इलाज, पाणी, बैंकिंग ऐं डिजिटल सहूलियतुनि खे आम माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी पूरी कोशिश कई वई। कुझु अहिड़ियूं योजनाऊं जिनि जो मां ज़िक्र कयां थी, 81 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे हर महीने मुफ़्त राशन ॾियणु, 10 करोड़ खां वधीक उज्ज्वला गैस कनेक्शन लॻाइणु, 70+ वारे बुज़ुर्गनि खे 5 लख जो मुफ़्त उपचार ॾियणु, 60 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे आयुष्मान भारत जी सुरक्षा, 26 शहरनि में मेट्रो जी सुविधा, 164 वंदे भारत ट्रेन जी सुविधा, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, पवन समुद्री जहिड़ा वॾा वॾा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो निर्माण, देश भर में 2 लख स्टार्टअप, MBBS सीटुनि जी संख्या लॻभॻ 1.3 करोड़ थी वई, आतंकवाद ते कड़ो प्रहार थियो, करीब 38,400 करोड़ जा रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट, ग़ुलामीअ जी मानसिकता खां मुक्ति, 4 करोड़ खां वधीक किसाननि खे 2 लख करोड़ जो फसल बीमा योजना ॾियणु, किसाननि लाइ लॻभॻ 4 लख करोड़ खां वधीक PM सम्मान विधि ॾियणु, 32 करोड़ खां वधीक जाइफ़ाउनि जो जन धन खातो खोलणु, सेना में जाइफ़ाउनि खे स्थायी कमीशन मिलणु ऐं ॿिए बि अहिड़ा घणेई कम जंहिंजो शायदि मां ज़िक्र न कयो आहे। लोकतंत्र में हर सरकार जी क़ाबिलियत उहा आहे त हू आवाम जी उमेदुनि ते खरो लहे। तरक़ीअ सां गॾु चुनौतियूं बि ईंदियूं आहिनि, पर असांखे मिली करे इन्हनि चुनौतियुनि जो मुक़ाबिलो करे मुल्क खे अञा मज़बूत ठाहिणो आहे। त दोस्तो असां बि इहो प्रण कयूं कि असां बि पंहिंजे देश खे, पंहिंजे मुल्क खे अॻियां वधाइण में को कसर न छॾींदासीं। दोस्तो हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई उमेद सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे शहडोल जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योग किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। जिले के स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में भी एक साथ योगाभ्यास कराया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। भारत सरकार ब्लॉक, तहसील और जिला पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में IIPA दिल्ली की 2 सदस्यीय टीम शहडोल पहुंची है। टीम नागरिकों और अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी शहडोल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोकपिट का निर्माण कराया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरीगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जांच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुँचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र विशाल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म खानदान से। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत नक्श लायलपुरी का और संगीत खय्याम का। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे आप सभी श्रोता मित्र। ग्राम मेजवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील बाल्मिक धाड़े, नेनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, कलेर बिहार से आसिफ खान, निखत परवीन, वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुवीना आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा, सौदागर संतर मुरार से गिरीश मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, निशा मिश्रा, ग्वालियर से ठेकेदार इकबाल सलामत खान, संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, दीपक और उर्मिला देवी यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खानदान से इस गीत को, आइए सुनते हैं।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सागर से। स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का, संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ शेख। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। ऑर्किड सिटी बालाजी से विवेक, तृप्ति, विदेहराज, उषा जी, किरण, पर्वराज और इनके मित्रजन। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गौड़कर, सुमित कुमारी ध्वनि। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गौड़कर, सिद्धांत, अर्जुन गौड़कर और टुकटुक। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौड़कर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस, एकांश। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सागर से इस गीत को।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म याराना से। स्वर किशोर कुमार का है, गीत अनजान का और संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता मित्र। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा और इनके मित्रजन। विदिशा से रागिनी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म याराना से इस गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अवतार से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। ग्राम कुमरहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। बटेरा रोड मणि डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया और इनके मित्रजन। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर इस गीत को।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सभी की पसंद पर, मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा आदिति और वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे प्रिया सरोदे, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा भगत चेतन भगत सुलोचना भगत, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान और पूजा परिहार, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार संचित कुमार प्रथमेश देशमुख कुमार सर्वत देशमुख कुमारी प्रणिला प्रणाली कुमारी सानवी कुमारी कल्पना समस्त राजे जाधव देशमुख वयाल परिवार, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म क्रांति से इस गीत को। स्वर है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का, गीत संतोष आनंद का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अर्पण से। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी श्रोता मित्रों की है। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाड़ी, विशाल खेड़ा, शालिनी तेवानाशी खेड़ा, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, महराज जहां, बागरी से मनभावन शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई। बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से आप सभी ने हमें ये फरमाइश भेजी है। लाल माता सुदामा नगर रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से ही। हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म अर्पण से इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं और अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन सकते हैं। तो हमें इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार फिर 9425702768। श्रोताओं, व्हाट्सएप फरमाइश ये कार्यक्रम प्रसारित होता है सोमवार से रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से 10:58 तक। तो आपके व्हाट्सएप संदेशों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की। पदमपुर जिला गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा, आसाम से हितेंद्र दास, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, सरधना मेरठ से आदि अंश, भव्य जैन, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा और इनके मित्रजन, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और सभी मित्रजन, गंज जुंडवारा से शमशुल, कमल राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान और कलीम अंसारी, गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम और बेविका, वमिका और वाणी थांदी, ग्राम कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म ब्लैकमेल से इस गीत को। आवाज़ किशोर कुमार की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। अब से लेकर सभा की समाप्ति तक इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे। पहले सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: जबलपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन करें गीत सुने कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 075। इस दौरान फोन करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉल लगाने से पहले अपने पास कम से कम 2 गीत और उनकी फिल्मों के नाम अवश्य तैयार रखिए। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
3: फोन करेंगी सुने।
2: जी फोन करेंगी सुने, कौन बोल रहे हैं बताइए।

0: जी मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ, सरग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह।
1: तो लक्ष्मण सिंह जी क्या करते हैं आप?
0: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी करते हैं, अभी खेत में क्या बोया है?
0: तो तैयारी चल रही सर, सोयाबीन बोने की।
1: जी अभी आप खेत तैयार कर रहे हैं ताकि बोया जा सके।
0: गर्मियों में मूंग बोई थी सर, अभी कटाई वटाई हो गए, बखानी वगैरह हो गई है सर।
1: तो अब क्या बोने का इरादा है आपका?
0: अब सर सोयाबीन और उड़द बोएंगे, मक्का भी, तीनों चीजों को बोएंगे।
1: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
0: आज फिल्म हरियाली और रास्ता को सुनना है सर, मुकेश की आवाज में गीत है सर
1: जी,
0: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ।
1: ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
0: सर बहुत पसंद है उसके बोल अच्छे।
1: जी जी बोल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेट सॉन्ग है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करेगी, सुने।
1: सर नमस्कार, मैं गावली हेदिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, दिनेश चौहान जी। क्या करते हैं आप?
1: सर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वायरिंग का।
0: मोटर वायरिंग का काम करते हैं।
1: हाँ, जो कूलर पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, वो जल जाते हैं ना।
0: बहुत बढ़िया। तो अभी तो आपका बिल्कुल सीजन का टाइम चल रहा होगा, अभी तो बहुत बिजी होंगे आप।
1: हाँ बहुत बिजी है सर, क्योंकि सीजन का टाइम है, वो ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से पंखा मंखा वायरिंग करते हैं।
0: ठीक है,
1: उसके साथ आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ज्यादा, तो हमको फोन इन
0: बिल्कुल
1: प्रोग्राम अच्छा
0: बिल्कुल
1: लगता है।
0: बिल्कुल। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे हैं, या रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप काम करते करते ये रेडियो सुन भी सकते हैं, काम भी हर्ज नहीं होता, और इसके अलावा काम में आपका और अधिक मन लगता है रेडियो के
1: हाँ
0: सुनते
1: सही बात
0: सुनते,
1: बोले सर आपने, तो
0: है ना।
1: गाने वाने सुनते रहते हैं अच्छा लगता है, और थोड़ी मतलब ये जो श्रोताओं की बात सुनने के लिए मिलती है, तो इसमें जानकारी भी मिलती रहती है, तो और अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई इंफॉर्मेटिव जानकारियां अपने को मिलती रहती है, कई श्रोता ऐसे होते हैं, कई जानकारियां देते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानकारियां आपको मिलती है ना। तो आज क्या सुनना चाहेंगे दिनेश जी?
1: सर फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना।
0: तो दिनेश चौहान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो, नमस्कार।
1: हेलो हेलो,
0: नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ।
1: और सर मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
0: मौसम भी ठीक है, बीच का है, ना गर्म है ना नरम है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और सर, और सब बढ़िया?
0: बढ़िया। आप बताएं, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आप क्या कर रहे हैं?
1: हम सर जी, हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे भागचंद जी?
1: आज फिल्म का, आज सुनवा देना, लव स्टोरी फिल्म का गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: देखिए, गाना कोई और बता रहे हैं और पिक्चर का नाम कुछ और बता रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो 1942 है, लव स्टोरी का है।
1: हाँ, ये वाला ना हो तो दूसरा बता दें सर।
0: नहीं नहीं, ये पिक्चर का नाम लव स्टोरी नहीं है, 1942 ए लव स्टोरी है। चलिए, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: हाँ नमस्कार साहब।
0: नमस्कार,
1: दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल, दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ साहब, राजेश अग्रवाल।
0: राजेश अग्रवाल, तो राजेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: वो पिक्चर का गीत है या धर्मेंद्र की पिक्चर है 1980 की
0: जी, गीत के बोल।
1: मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा गीत है। वो हाँ रफी साहब और आशा जी की आवाज
0: बड़े मतलब अलग से टाइप की पसंद है आपकी, यही गीत सुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं वो तो सर अच्छा लगता, आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों की तो जोड़ी ही अपने आप में एक गीत की श्रेष्ठता की पहचान हुआ करती। तो चलिए गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, बहुत प्रयास के बाद लगाया सर, करीबन 175 बार लगा चुकी हूँ कॉल।
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं नौकरी से मीना दसौंधी बोल रही हूँ।
0: मीना दसौंधी, खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: जी सर।
0: जी मीना दसौंधी जी, मेरे से शायद आपकी पहली बार बात हो रही है।
1: जी सर, पहली बार हो रही है सर। आपका शुभ नाम?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप क्या करती हैं मीना जी?
1: सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: किचन का काम छोड़ के कॉल कर रही थी 10:30 बजे से।
0: जी जी जी जी।
1: घर जाके अब लगा।
0: जी जी, क्या सुनना चाहेंगी मीना जी आज आप?
1: सर मुझे कल फादर्स डे है, तो मुझे बॉस पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। मेरे पिताजी को डेडिकेट करूंगी सर, वो इस दुनिया में तो नहीं है, मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उन्हीं के लिए बॉस पिक्चर का सुनवा दीजिए। ईश्वर अल्लाह दोनों रब है, नूर खुदाया तुझमें सब है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जबकि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है ना। और हमारा
1: जी देन है।
0: जी जी जी, आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो केवल उनके संस्कार हैं, और है ना,
1: पहले वो फिर अपन।
0: वही जी जी जी। और जो लोग इस बात को मानते हैं वो निश्चित ही मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया होते हैं, है ना।
1: वैसे
0: और
1: तो सर हर रोज फादर्स डे मदर्स डे होता है, हर दिन उन्हीं का है, लेकिन ये स्पेशल डे रहे तो स्पेशल रूप से मनाना पड़ता है।
0: जी जी जी। देखिए हमारे जन्मदाताओं को मान दिए बगैर हम कुछ है ही नहीं, है ना।
1: जी सर, उनको
0: और उनको मान देंगे तो हमारे रास्ते अपने आप सारे खुलते चले जाएंगे, और रास्ते कितनी भी परेशानियां आए वो मिनटों में आपकी शायद गायब हो जाएगी, है ना।
1: माता पिता, गुरु, शिक्षक और एक भगवान, ये 4-5 तो बिल्कुल आदरणीय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही यही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: कार्यक्रम
0: फोन करे गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी किससे बात हो रही है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हम ग्राम कानासड़ा तहसील कालपी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: राजेश जी क्या करते हैं आप?
1: हम ब्लेंड हैं तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं, दुकान चलाते हैं और संगीत से प्रेम है।
0: बहुत बढ़िया,
1: नाल बजाते हैं।

0: गायकी भी करते हैं।
1: क्या बजाते हैं?
0: नाल। नाल
1: नाल हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है।
0: मतलब ढोलक।
1: ढोलक बजाते हैं। अच्छा अच्छा
0: जी जी
1: ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ये गीत हो संगीत हो है ना, ये तो बड़े हमारा जो समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन हो जाता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं और उसके बाद में किराने की दुकान भी चलाते हैं। ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपनी आजीविका खुद अर्जित करते हैं, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो
0: और रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है। कम से कम मुझे 30 साल हो गया रेडियो सुनते हैं, रेडियो का सबसे बहुत बड़ा मुझे रेडियो ना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
1: रेडियो है ही ऐसी चीज भाई, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब भी रेडियो सुनते सुनते पढ़ा करते थे। और जी, जी, किसी ने हमको बताया रेडियो सुनते सुनते जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो तरफ दिमाग रहता है तो दिमाग बढ़ता है। पता नहीं वो बात तो कितनी सही थी कितनी गलत, लेकिन उसमें ही बड़ा मजा आता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी।
0: बिल्कुल सही बात है, इसलिए रेडियो से बड़ा अच्छा। जबकि मेरे यहाँ डैग रखा हुआ है दुकान सबको लेकर, मैं बजाता नहीं, रेडियो बजता है मेरा बस।
1: जी जी जी जी। तो
0: बहुत दिन में आपके यहाँ मेरा फोन लग पाया, कम से कम 6 महीने से मेरी आज बात हो रही है।
1: तो ये बताइए कि आज क्या सुनना चाहेंगे राजेश जी? देखिए राजेश जी, हम पहले ही बोलते हैं कि दो गीत आप तैयार रखिए और दो फिल्मों के नाम।
0: सही कहा आपने।
1: बताइए
0: उसका सुना दीजिए। खिलौना फिल्म है, खिलौना
1: जी।
0: अगर वो गाना है लता जी ने गाया हुआ है, कलम से बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए वो एक खिलौना, लता जी की आवाज में है, बहुत सुंदर गीत है और मुझे पुराने गीत ही सुनने का शौक है।
1: बहुत अच्छा, पुराने गीतों में एक रस आनंद तो होता ही है, कुछ यादें भी हम लोगों की जुड़ी होती है पुराने गीतों से, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है और गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद।

0: अभी आपने सुना खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब संपन्न होता है। अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देना है
1: साइलेंट में रखो पहले नीरज।
2: ये दरवाजा लटकवा देना भैया, दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा।
3: नमस्कार श्रोताओं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह, ऊर्जा, शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं, हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, जो भी है बात साफ साफ ज़रूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुँचे मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। यह पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कारधानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति

के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दो बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे, उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहां ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तीसरी बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाई कोर्ट की नई बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं, जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती माँ नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं। इसी संस्कार धानी में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग, श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं,
कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि, पक्षियों का

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: ऑनलाइन डिस्कनेक्ट है।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गोंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। अपन को भी एक माइक मिलना चाहिए।

आप हैं विविध भारती भोपाल के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घ पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
3: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायकगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि ए प्लस से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति

0: निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय मध्य राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है व 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इनक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया है, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरंभ किए गए। BTech कंप्यूटर, BSc BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियाँ, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 PhD धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 DSc और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया है, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है, जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को
1: गौरव की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि, शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021 दीपांशु मिश्रा, एमए हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तालियां बजती रहें। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू बीए हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी एमए इतिहास 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

श्री शिवेंद्र सिंह एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। देवेंद्र मिश्रा बीए दर्शन शास्त्र परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: स्वामित्व जैन एमबीए महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हमको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसके कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मनमोहन पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए ये भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष खाती रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्य प्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया, इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज़्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा, ये आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आज़ादी के लिए हमारी इस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता बुद्धि योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सहित सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए, और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती, एक तीर आता तो उनकी आंतें निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है।

बिंदु का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ। कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया उसको आज्ञा का पालन करो, और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि दहेज बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है। जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्यप्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉपआउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया।

साक्षात श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बैनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संघ मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस पावन अवसर पर गोंडवाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी की दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व, क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी

आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों। बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं, जब भी हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटा भी हमने देखा। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वो जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको पांच पांच गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए बेगा, भारिया और सहारिया करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूँ कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूँ, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 76 हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से

जनजातियों समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रमों चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातियों पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज़ है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातियों समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना

अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक, ये हम का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है, 65% युवा है जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग है। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसी सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान कर। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहे हैं। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा, दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है। देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। परंतु

0: इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज जिस गर्मी, जिस तरह के वृष्टि बहुल, अनावृष्टि के हम झेल रहे हैं, उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्थान, क्षेत्रों और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन कुमार यादव का। अब मैं रविंद्र दुबे आपको ले चलता हूँ अपने स्टूडियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आ अब लौट चलें फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और जसविंदर नरूला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जब वी मेट फिल्म से है। उस्ताद राशिद खान ने इस गीत को गाया है, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

केसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसे गाया था अरिजीत सिंह और असीस कौर ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है कलंक।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं विनोद कुमार सेन और साथियों का गाया विकास गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी शिवपुरी से ही लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण दाते के गाए भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुर्जर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनः परीक्षा में देश भर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश

0: खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए,
1: और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
5: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के

0: स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट UG की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों आज है जून माह का तीसरा रविवार और आज हम सभी फादर्स डे यानी पितृ दिवस मना रहे हैं। ये पिताओं के सम्मान में मनाया जाने वाला एक पर्व है। बाल मित्रों पितृ दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा पर्वजिस का सम्मान करने के लिए हुई। सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में 5 जुलाई वर्ष 1908 में इसे मनाया गया था। ग्रेस गोल्डन क्लिंटन द्वारा प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमोंट में मौजूद है। बल तो पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है और एक नन्हा सा बच्चा पिता की उंगली थामे सुकून पाता है। बाल साथियों पिता घर का वो हिस्सा होते हैं जो खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं और जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। बाल साथियों माँ यदि जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा। पिता ही वो इंसान होते हैं जो कभी माँ का प्यार देते हैं तो कभी शिक्षक बनकर गलतियाँ बताते हैं तो कभी दोस्त बनकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक तरक्की करे उनसे भी अधिक नाम कमाए। बल्कि तो जीवन को दिशा देने वाले पिता के लिए एक खास दिन मनाना हमारे जीवन में दिए गए उनके योगदान के समतुल्य तो नहीं हो सकता पर फादर्स डे के रूप में हमें वो मौका जरूर दिया है जब हम उनके प्यार मदद और अपनेपन को महसूस कर उनसे ये कह सकें कि मैं आज जो भी हूँ या आगे जो भी बनूंगा वो आपके बिना संभव नहीं था। तो चलिए बाल साथियों देर किस बात की, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। और बाल साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है तो आप यही कह उठेंगे

बाल साथियों, अभी आपने सुना मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा की। समीर के गीत को संगीत से सवारा था हिमेश रेशमिया ने। और बाल मित्रों, आज हम सभी योग दिवस भी मना रहे हैं। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब अपने आप से ही अलग से

0: हो गए हैं और योग हमें पुनः अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। बस अतियों योग मन शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है और ये दिवस इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए ही मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ये सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन है। बल में तो 21 जून वर्ष 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे सभी ने उत्साह के साथ मनाया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया। हम आपको बता दें बाल मित्रों कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। बाल मित्रों, हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक वीरांगना ऐसी भी है जिन्हें उनके पराक्रम के लिए याद किया जाता है और वे हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बाल साथियों हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति प्राप्त की थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी किए। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी। बल में तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर वर्ष 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही आपका नाम दुर्गावती रखा गया। मन तो रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था। वर्ष 1542 में आपका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठा कर खुद राज्य की शासिका बन गई। 50 से भी अधिक युद्ध उन्होंने लड़े। इतना ही नहीं बाल मित्रों, रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अकबर रानी के राज्य को हड़पना चाहता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने की ठानी और वर्ष 1564 में दोबारा रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हो लड़ाई के लिए आई। लड़ते लड़ते रानी घायल हो गई और 24 जून को लड़ाई के दौरान ही अपने आप को सुरक्षित न देख उन्होंने अपनी ही तलवार अपने पेट में घुसा ली और वीर गति प्राप्त की। और इस तरह इस वीरांगना ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों, ऐसी थी महान वीरांगना रानी दुर्गावती। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों अब आपको लिए चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर। बाल मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बालिका आई हुई है जिसके हाथ में हम देख रहे हैं एक गिटार है। चलिए जानते हैं कि ये गिटार बजाती हैं तो क्या साथ में गाती भी हैं। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम आर्या खरे है।
0: आर्या खरे। आर्या, हम आपके हाथ में गिटार देख रहे हैं, तो आप गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपको गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ?
1: जी, मैं एक मूवी देख रही थी कि उसमें मैंने देखा, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। देन मेरे घर में एक गिटार रखा हुआ था जो कि 2 साल से पैक था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे निकाल के यूज करूं। फिर मैंने यूट्यूब से निकाला, उसके डिटेल्स निकाले, देन बेसिक मैंने यूट्यूब से सीखा, उसके बाद आज मैं यहाँ तक आई हूँ।
0: मतलब आपने, आपको इंस्पिरेशन मिली, यूट्यूब से आपने निकाला और वहीं से आपका ये सफर शुरू हुआ।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल। तो आज आप हमारे बाल साथियों को क्या सुनाएंगी?
1: जी, मैं एक भजन सुनाऊंगी गिटार पे, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
0: चलिए सुनाइए।

0: बहुत ही प्यारा भजन आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा आर्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: जी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: आप 8th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, आपको और किस किस चीज का शौक है, गाने के अलावा या गिटार बजाने के अलावा और कौन कौन से शौक आप रखती हैं?
1: जी मुझे डांस का भी शौक है और मैं पेंटिंग भी करती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आर्या, ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी?
1: जी मैं बड़े होकर पहले UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। अच्छा आर्या, आप हमारे बाल साथियों को कुछ और सुनाना चाहेंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: क्या सुनाएंगी?
1: जी मैं एक भजन और सुनाना चाहूंगी।
0: चलिए सुनाइए।
1: अक्षुता।

0: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही प्यारा भजन आपने आर्या सुनाया। अच्छा आर्या, ये बताइए आपके परिवार में क्या और कोई भी गिटार बजाता है?
1: जी नहीं।

0: सिर्फ फोन से एक इंस्पिरेशन मुझे मिला था उसके बाद.
1: अच्छा, मतलब आप स्वयं से ही आपने शुरुआत की और आप स्वयं ही गिटार बजाती हैं.
0: हाँ जी.
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है ये. चलिए आर्या, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपने हमको इतने प्यारे भजन सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं.
0: जी शुक्रिया.
2: बल तो हम सभी आगामी 26 जून को मुहर्रम पर्व मनाएंगे. मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है. इसे इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है जिसमें युद्ध और हिंसा पूरी तरह से वर्जित है. ये पर्व शांति, संयम और न्याय की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है. ये दिन बल मित्रों सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर की कुर्बानी को भी याद किया जाता है जो मात्र 6 महीने के थे. बल्कि तो करवला में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान इसी दिन कुर्बान की थी. करबला में शहादत पाने वाले 6 महीने के अली असगर की कहानी भी कुछ ऐसी जो आंखों में आंसू ला दे. इस्लाम में वाले साथियों मुहर्रम को उत्सव की तरह ना मनाकर शोक और मातम के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दान करते हैं और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं. लोग इमाम हुसैन की याद में काले कपड़े पहनते हैं और ताजिए निकालते हैं. भारत जैसे सांप्रदायिक देश में बाल मित्रों मुहर्रम को शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है.
1: और बाल साथियों अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर. मन में तो कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा बचपन होता है. न कोई जिम्मेदारी का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ खुद से मतलब. ऐसा मस्त समय जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आता और इन सब मस्ती के पल का साक्षी होता है हमारा विद्यालय. हमारे व्यक्तित्व को बनाने और निखारने में स्कूल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. और बाल साथियों विद्यालय की परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है. हमारे यहाँ तो आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है. राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते थे. यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे, ये हम सब भी जानते हैं. बल में तो नए शिक्षण सत्र का मतलब है सब कुछ नया नया. अब आप भी अपना नया बैग, नई यूनिफॉर्म मंगा कर तैयार करवा लें, अपनी किताबें और कॉपियां भी मंगाकर उन्हें अच्छे से कवर करके अपना नाम भी लिखकर तैयार कर लें. अपने जूते, टाई, बेल्ट और लंच बॉक्स भी निकाल कर रख लें, क्योंकि वो भी तो गर्मी की छुट्टियों में काफी समय से अलमारी में बंद होंगे. उन्हें भी धोकर पोंछकर तैयार कर लें. गर्मी की छुट्टियां होने के कारण आपके जागने और सोने का रूटीन भी बदल गया होगा, तो अब से रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें.
2: इसी चर्चा के साथ बाल साथियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधुर दीदी को.

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय।

भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 21 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थियों के लिए 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:00। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। लोक संगीत में सुनवा रहे हैं विनोद कुमार सेन और साथियों के गए लोकगीत। पहले सुनते हैं विकास गीत।

0: जीअं असांजा बुज़ुर्ग ॾिसूं त उहे अॼु जी जेकी नई टही आहे उन खां वधीक सुठे सां हली सघंदा आहिनि ऐं वधीक कम बि करे सघंदा आहिनि. मतिलबु आलसपन जेको असां ॾिसूं पिया था की अॼुकल्ह जी जनरेशन में अॼुकल्ह जे ॿारनि में उहो त वधीक ई आहे. त योग करण सां छा आहे की इहो आलसपन बि वेंदो आहे, है न. जीअं मानसिक तव्हां चयव त मानसिक और फिज़िकल ॿई स्ट्रेंथ थियूं अचनि.
1: रोटीअ जो जेको आहे तव्हांजे खाधे जो चयो ॾाढो फ़र्क़ु पवंदो आहे. हिकु ॻाल्हि ध्यानु पई अचे, पहिरीं असांजा बुज़ुर्ग जेके आहिनि उहे चवंदा घटि खा गम खा डॉक्टर वटि कॾहिं न वञ.
0: अरे वाह.
1: हाणे जेको आहे न हाणे चवंदा आहिनि वधीक खाओ, स्वादिष्ट खाओ, वधीक खाओ ऐं रोज रोज डॉक्टर जा चक्कर लॻायो
0: ऐं गम बि न
1: गम बि न
0: सही आहे. हाणे हलंदे हलंदे असां इहो मां चवंदमि की नई टई ऐं असांजे श्रोताउनि खे तव्हां योग जे बारे में छा मैसेज ॾियणु चाहींदव?
1: मां त श्रोताउनि खे हिकु ई मैसेज ॾींदमि की अगरि असां जीवन में बदिलाउ चाहियूं था, परिवर्तन ऐं पंहिंजे पाण खे हमेशह तंदुरुस्त रखणु चाहियूं था, त पंहिंजे लाइ टाइम कढूं जेको कंहिं वटि आहे कोन. पर तव्हां 30 मिंट 30 मिंट बि अगरि तव्हां पंहिंजे लाइ कढंदा, कलाक बि पंहिंजे लाइ कढंदा, ऐं योग केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जे लाइ न कयूं, योग खे पंहिंजे जीवन में शामिलु कयूं, पोइ तव्हां ॾिसंदा न डिप्रेशन रहंदो, न शरीर जी प्रॉब्लम रहंदी, कुझु प्रॉब्लम कोन रहंदी. इन जे लाइ तव्हां ऑफिस में आहियो तॾहिं बि योग करे था सघो, प्राणायाम त उते वेठे वेठे बि था करे सघो, ईअं त आहे कोन था करे सघो. त इन जे लाइ करण जो मन ठाहिणु, इहो मुंहिंजो संदेश आहे की असां करण जो मन ठाहियूं ऐं करणु प्रारंभ कयूं. अगरि चालू कंदासीं तॾहिं ई सफलता हासिलु थींदी, न त सफलता हासिलु कोन थींदी.
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे. जीअं माण्हू पंहिंजे लाइ टाइम कढनि था, जीअं सिनेमा ॾिसण लाइ त टाइम कढनि या कुझु बि कहिड़ी बि एक्टिविटी करण लाइ टाइम कढनि था, त उन लाइ बि टाइम कढणु ॾाढो ज़रूरी आहे. ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायो योग जे बारे में. तव्हांजो घणो घणो महिरबानी आहे की तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं योग जे बारे में असांखे हेॾी सुठी जानकारी ॾिनव.
1: धन्यवाद.
0: दोस्तो हाणे वधूं था हिकु ॼाण जी तरफ़. वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस ही ॾींहुं असांखे अहिड़े महान वीर नारीअ जी यादि ॾियारींदो आहे जंहिंजे साहस, त्याग ऐं देशभक्ति इतिहास जे सुनहरे अखरनि में लिखियलु आहे. रानी दुर्गावती भारत जी अहिड़ी महान वीरांगनाउनि में शामिल आहे जंहिं पंहिंजे राज्य, प्रजा ऐं सम्मान जी रक्षा करण लाइ पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾी. नंढपण खां ही हुन में वीरता, आत्मविश्वास ऐं नेतृत्व जी भावना हुई. उहा युद्ध कला, घुड़सवारी ऐं शस्त्र हलाइण में माहिर हुई. राणीअ जो विवाह गोडवाना जे राजा दलपत शाह सां थियो. राजा दलपत खां पोइ पंहिंजे पुट वीर नारायण जे संरक्षक जे रूप में राज्य जो शासन संभालियो. हुन न केवल कुशलता सां राज्य हलायो, गॾोगॾु प्रजा जे कल्याण ऐं विकास लाइ घणेई कम बि कया. जॾहिं गोडवाना ते मुग़ल सेना हमिलो कयो, तॾहिं राणी दुर्गावती हिमत हारण जे बजाए दुश्मननि जो डटे करे मुक़ाबिलो कयो. हुन पंहिंजे सैनिकनि सां गॾु युद्ध जे मैदान में लही वीरता जो शानदार उदाहरण पेश कयो. युद्ध जे हलंदे घायल थी वञण खां पोइ बि हुन हार न मञी. 24 जून 1564 जे ॾींहुं राणी दुर्गावती पंहिंजे स्वाभिमान ऐं स्वतंत्रता जी रक्षा कंदे वीरगति पाती. हुन आत्मसमर्पण खां बहितर बलिदान ॾियण खे सही समुझो. हुननि जो त्याग ऐं बलिदान अॼु बि असांखे प्रेरणा थो ॾिए. रानी दुर्गावतीअ जो जीवन असांखे इहो सेखारींदो आहे त मुश्किल हालात में बि हिमत, आत्मविश्वास ऐं सच्चाई कॾहिं न छॾणु घुरिजे. हुन जो बलिदान ख़ासि करे जाइफ़ाउनि लाइ प्रेरणा आहे त नारी शक्ति हर चुनौतीअ जो डटे करे सामनो करे सघे थी. अचो त गॾिजी मिली असां सभु महान वीरांगना खे श्रद्धापूर्वक नमन करियूं ऐं इन सां गॾु गॾु ॿुधूं था घनश्याम वासवानी ऐं दादा दुखायल जो गायल ही सुहिणो देशभक्ति गीत.

जो कि अड़ो दुश्मन आए जेको धीरे धीरे उन जी सेहत परिवार सम्मान ए भविष्य के बर्बाद कर छो है। शराब तंबाकू गुटका सिगरेट ए बू भी नशेलू शूं शरीर के तो नुकसान पहुंचाएन ही थियं पर मानू की सोच व्यवहार सोचने ए निर्णय की क्षमता के भी खराब असर पहुंचाएन थियं। अज घना नौजवान गलत संगत तनाव या फैशन के हलंदे नशा था कन पर उनके यो समझन घुर्जे तो कड़ो भी नशो कें भी समस्या जो हल ना आए। नशो तो पान ही समस्या वधाइंदो आहे, इंसान के पेंजे लक्ष्य ए सफलता खां परे थो करे। नशे के कारण घणे ही परिवार तबाह थी वेंदा आहिन, घणियूं बीमारियूं वधंदियूं वेंदियूं आहिन, पैसे के नुकसान सां गड समाज में अपराध के भी वधाइंदो आहे। नशो करण वारो इंसान पेंजी जिंदगी सां गड पेंजे परिवार की जिंदगी के भी खराब कर छॾींदो आहे। एक स्वस्थ ए प्रगतिशील समाज तदें ही बणजंदो जडे असांजी नई टई नशे खां पासो करे, शिक्षा में खेल कूद में योग ए सकारात्मक सोच में अग्या वधे। ये संस्कार उन्हें के घर में ही मिलंदा। मुझी तो सभी माओ पी ए वडन सा निमाणी वेनती है तो तवा भी पेंजे बारन या कें के भी नशो कंदे डिसो तो उन्हें रोकण तवाजो फर्ज है। पेंजे समाज में नशे के नुकसान खां सभी के जागरूक करण असो फर्ज है। दोस्तों इन्हीं सा गड बुधू था एक सुहणो गीत।

दोस्तों इन्हीं खां पोए एक मां बी ॼाण ॾियण चाहिंदम असांजे मोदी सरकार के 12 साल पूरा थिया आहिनि सरकार जी जॾहिं 12 साल पूरा थिया तंहिं दौरान मुल्क जी तरक्की खुशहाली ऐं आवाम जी भलाई लाइ घणेई कम कया विया गुज़िरियल 12 सालनि में मुल्क में घणेई अहम तब्दीलियूं आयूं तरक्कीअ जा कम थिया ग़रीब किसाननि जाइफ़ाउनि ऐं नौजवान या समाज जे कमज़ोर वर्गनि जी भलाईअ लाइ घणेई योजनाऊं बि शुरू कयूं वयूं साफ़ सफ़ाई इलाज पाणी बैंकिंग ऐं डिजिटल सहूलियतुनि खे आम माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी पूरी कोशिश कई वई कुझु अहिड़ियूं योजनाऊं जिन जो मां ज़िक्र कयां थी 81 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे हर महीने मुफ़्त राशन ॾियण 10 करोड़ खां वधीक उज्ज्वला गैस कनेक्शन लॻाइण 70+ वारे बुज़ुर्गनि खे 5 लख जो मुफ़्त उपचार ॾियण 60 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे आयुष्मान भारत जी सुरक्षा 26 शहरनि में मेट्रो जी सुविधा 164 वंदे भारत ट्रेन जी सुविधा अटल सेतु सुदर्शन सेतु चिनाब रेल ब्रिज बोगीबिल ब्रिज पवन समुद्री जहिड़ा वॾा वॾा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो निर्माण देश भर में 2 लख स्टार्टअप MBBS सीटुनि जी संख्या लॻभॻि 1 करोड़ 30 लख थी वई आतंकवाद ते कड़ो प्रहार थियो करीब

38,400 करोड़ जा रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट, गुलामी जी मानसिकता खां मुक्ति। 4 करोड़ खां वधीक किसानन के 2 लख करोड़ जो फसल बीमा योजना ॾियण। किसानन लाइ लगभग 4 लख करोड़ खां वधीक पीएम सम्मान विधि ॾियण। 2 करोड़ खां वधीक जायफाउन जो जन धन खातो खोलण। सेना में जायफाउन के स्थायी कमीशन मिलण ऐं ॿिए बि अहिड़ा घणेई कम जंहिंजो शायदि मां जिक्र न कयो आहे। लोकतंत्र में हर सरकार जी क़ाबिलियत उहा आहे त हू आवाम जी उमेदुनि ते खरो लहे। तरक़ीअ सां गॾु चुनौतियूं बि ईंदियूं आहिनि, पर असांखे मिली करे इन्हनि चुनौतियुनि जो मुक़ाबिलो करे मुल्क खे अञा मज़बूत ठाहिणो आहे। त दोस्तो, असां बि इहो प्रण कयूं कि असां बि पंहिंजे देश खे, पंहिंजे मुल्क खे अॻियां वधाइण में को कसर न छॾींदासीं। दोस्तों, हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेदु आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा।

0: पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्नसेन ने राजकुमार विजयश्रवा और नर्तकी भुवन मोहिनी के बीच प्यार की बातें जानकर भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भुवन मोहिनी के वियोग में पड़ गया। एक दिन राजमाता से उसकी मुलाकात हो गई। राजमाता ने विजयश्रवा पर भुवन मोहिनी को लेकर ताने कसे। फिर क्या था, विजयश्रवा महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो राजकुमार उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट के एक आश्रम में ठहर गया। इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन के यहाँ ही भुवन मोहिनी ने आश्रय लिया था। राजा को अपनी राजकुमारी के ब्याह की चिंता थी। जब उन्होंने जाना कि कोई अपरिचित व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठी कहता है आश्रम में ठहरा है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार तो नहीं। इसका पता लगाने के लिए वो भुवन मोहिनी से कहते हैं। अब सुनिए आगे धारावाहिक भुवन मोहिनी की तीसरी कड़ी।
1: आइए महाराज, बहुत दिनों बाद याद आई महारानी की।
2: हाँ महारानी, राजकार में व्यस्तता हमारे बद्ध अवरोध बना है।
1: मेरे अहो भाग्य, चिर प्रतीक्षा के बाद देव के दर्शन तो हुए।
2: महारानी, आज मैं एक विशेष सूचना देने आया हूँ।
1: कैसी सूचना महाराज?
2: तुम्हें ज्ञात होगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व मैंने राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चर्चा भारत सम्राट द्युम्नसेन से चलाई थी।
1: हाँ हाँ, राजकुमार विजयश्रवा के लिए ना?
2: हाँ, और राजकुमारी के चित्र भी भेजे थे ना?
1: हाँ हाँ, याद है।
2: प्रत्युत्तर में सम्राट ने कहलवाया था कि यद्यपि राजकुमार विजयश्रवा की राजलक्ष्मी बनने के लिए भारत की अनेक राजकुमारियां प्रयत्नशील हैं, किंतु राजकुमारी चंद्रहासिनी की रूप राशि पर स्वयं सम्राट द्युम्नसेन और साम्राज्ञी दोनों ही प्रसन्न हैं।
1: संतोष हुआ सुनकर।
2: और दोनों ने गुप्त रूप से चंद्रहासिनी को अपनी पुत्रवधु बना लेना स्वीकार भी कर लिया था, किंतु
1: किंतु क्या महाराज?
2: उसके पश्चात जो दूसरा पत्र सम्राट ने भेजा है अपने विशेष दूत के द्वारा, उसमें राजकुमार विजयश्रवा के एकाएक कहीं चले जाने की चर्चा है।
1: अरे,
2: रूट कर किसी अज्ञात स्थान को।
1: इस संबंध को लेकर अप्रसन्नता के कारण तो नहीं?
2: जो भी हो, परंतु अब आगे सुनो। यमुना किनारे हमारे राजोद्यान में एक महान दुतिवान युवक आकर निवास कर रहा है।
1: कब से?
2: अभी कुछ ही दिनों से। वो अपने आप को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र बताता है, परंतु मेरा अनुमान है कि ये वही राजकुमार विजयश्रवा ही हैं।
1: अच्छा,
2: इसीलिए मैंने उसे राजोद्यान में रहने की अनुमति भी दे दी है। महारानी, मैंने स्वयं उस युवक को विशेष रथ पर घूमते हुए देखा, तो लगा निश्चित ही उसका रूप, उसके लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं।
1: तब तो निश्चय ही वही होंगे।
2: मेरा भी यही विचार है। महामाते ओंकार देव ने उस युवक को राजोद्यान में ठहराए जाने पर आपत्ति की थी।
1: अच्छा, क्यों भला?
2: एक बार उनके पुत्र को राजोद्यान में जाने से वंचित कर दिया था ना, संभवतः इसी की टीस होगी। अभी भी वो मेरे

0: निर्णय को दबे छुपे स्वरों में अनुचित ही कह रहे हैं।
1: महाराज, ओंकार देव के लक्षण अच्छे नहीं हैं। वे निरंतर प्रयास करते आए हैं कि राजकुमारी चंद्रहासिनी के रूप गुण के अनुकूल कोई राजकुमार न मिले तो उन्हें उसको अपने पुत्र वधु बनाने का अवसर मिल जाए। ठीक है कि उनका इकलौता पुत्र मृत्युंजय रूप गुण चरित्र और योग्यता में राजवंशियों से कम नहीं है। छोटे मोटे राजवंश वाले उसके साथ संबंध भी कर सकते हैं, किंतु हमारी चंद्रहासिनी, जिसे सम्राट ने अपनी पुत्र वधु के लिए पसंद किया हो, उसका विवाह मैं अमात के पुत्र से कर दूं? कभी नहीं।
0: मैंने तो ये भी पता लगा लिया है कि राजकुमारी किसी भी मूल्य पर अपने भृत्य के बेटे के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने में असमर्थ है, भले ही उसे आजीवन कुंवारी रहना पड़े।
1: और क्या, कल तक राजकुमारी को देखकर अभिवादन करने के लिए खड़ा रहने वाला कोई उसका पति बनेगा तो भला चंद्रहासिनी कैसे संतुष्ट होगी? महाराज, कहां सम्राट का पुत्र विजयश्रवा और कहां महामात्र का पुत्र मृत्युंजय? भगवान करे वो परदेशी युवक धारा नगरी के सम्राट का पुत्र सिद्ध हो और चंद्रहासिनी भारत की राज राजेश्वरी बने। कौन है वहां? ओ चंद्रहासिनी, छुपकर हमारी बातें सुन रही थी, भाग गई।
2: तो श्रीमान, आप हमारी ही नगरी में हैं और हमें पता ही नहीं। कितनी बड़ी भूल की मैंने, जो दोबारा राजोद्यान नहीं गई। राजकुमार विजयश्रवा, आपकी तस्वीर से यूं कब तक बातें करती रहूंगी? अब तो मुझ पर कृपा करिए। जानते हैं सबसे पहले हमें आपके बारे में किसने बताया था? भुवन मोहिनी ने। हाँ, पिता महाराज के दरबार में जब भुवन मोहिनी आई तो उन्होंने उसे मुझे संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया। तब से जब भी वो आपका वर्णन करती, आपसे मिलने के लिए मन बेचैन हो उठता। एक दिन मैंने उससे कह दिया, किस बेपीर पुरुष की तुम बातें करती हो सखी? भला तुम्हारा देव दुर्लभ स्वरूप जब उस पत्थर हृदय को नहीं पिघला सका, तब मैं कैसे समझूं कि वो मुझे अपने गले का हार बनाएगा?
3: तो क्या मैं एक क्षुद्र नर्तकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से अधिक सुंदर हूं?
2: अवश्य ही। विधिना ने अपने हाथों तुम्हारे अंग अंग को कुशल कलाकार की भांति गढ़कर बनाया है, किंतु सच कहो सखी, क्या वो तुम जैसी सुंदरी को भी प्यार नहीं करते थे?
3: राजकुमारी, कहीं भारत का भावी सम्राट एक नर्तकी की रूप वारुणी पर विस्मय विमुग्ध हो सकता है?
2: तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारे अंग सौष्ठव में जो मादकता भरा आकर्षण है, उसने अवश्य ही राजकुमार विजयश्रवा को चूर चूर कर डाला होगा। वास्तव में तुम मुझसे अपने प्रेम रहस्य को छिपा रही हो।
3: छिपा नहीं रही हूँ राजकुमारी, उन्हें भला राजकुमारियों की सौंदर्य शिखा पर अपना सर्वस्व भस्म करने के आगे मेरे रूप को देखने का अवकाश था? छी, मेरा अपवित्र दूषित और धन की लिप्सा पर बिकने वाला रूप भला राजराजेश्वर के बेटे को कैसे आकर्षित कर सकता था?
2: भुवन मोहिनी चाहे जितना कहती राजकुमार, परंतु मेरा मन स्वीकार ना करता कि वो आपके हृदय में किंचित मात्र भी स्थान न बना पाई होगी। फिर भी अब आप हमारे पास आ गए हैं तो हम तो यही मानेंगे कि आप हमारे लिए आए हैं, भुवन मोहिनी चाहे जो सोचे।
3: हे प्रभु, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। मैं तो राजकुमार विजय श्रवा के मार्ग से हट गई थी, बला थी सही, तो फिर क्यों उन्हें यहां मेरे पास आपने ला दिया। परंतु राजकुमार यहां छिपकर आए हैं, हो सकता है वो अपनी भावी पत्नी राजकुमारी चंद्रहासिनी को देखने आए हों। हे प्रभु, क्या इतना ही दुख मेरे लिए पर्याप्त नहीं था कि ये और दे दिया। मैं कैसे देख पाऊंगी अपने राजकुमार को किसी दूसरे के प्रति आसक्त।
2: सखी भुवन मोहिनी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
3: क्यों?
2: देखो, राजोद्यान के मार्ग में प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है, जिसकी तुम भी भागीदार हो। मैं तुम्हारी हृदय से आभारी हूँ सखी, तुमने मुझे संगीत कला में निपुण कर दिया। बस आज माँ सरस्वती की कृपा से दीपक रागनी सिद्ध हो जाए।
3: अवश्य होगा राजकुमारी, आपने कई दिवसों से एक उपासिका की भांति कठिन अभ्यास जो किया है, गंभीर साधना, आपका श्रम व्यर्थ कदापि नहीं जाएगा।
2: मैं रोमांचित हो सके इसलिए भी क्योंकि इसी राजोद्यान में संभवतः मेरे राजकुमार भी हैं। आज उन्हें साक्षात देख पाने की प्रतीक्षित अभिलाषा भी पूर्ण होगी।
3: मेरी सखी राजकुमारी, दो दो सुखों का वर्णन करने वाली है, दीपक रागिनी सिद्ध करने का और अपने भावी पति के दर्शन पाने का, और मैं न जाने कितनी शंकाओं कुशंकाओं से आच्छादित मन डूबा जा रहा है। क्या वो राजकुमार ही होंगे? यदि वो राजकुमार ही होंगे तो वो यहां क्यों आए हैं, मेरे लिए या मेरी सखी राजकुमारी के लिए? दोनों ही परिस्थितियों में तो मुझे घुटना ही होगा। रे मन, नियति के थपेड़ों को सहने के लिए तैयार रहे।

0: जब जब भी उद्यान में हलचल होती है मन धड़क उठता है कि कहीं वो नर्तकी न प्रकट हो जाए।
1: अरण्यक।
0: हाँ राजकुमार।
2: राज्योद्यान में आज इतनी हलचल क्यों है?
0: अब क्या बताऊं मित्र, शांति रूपी हमारी क्षीर में निब्बू निचोड़ने का काम पता चला है कि राजकुमारी कर रही है।
2: राजकुमारी?
0: हाँ मित्र, चंद्रहासिनी देवी यहां दीपक रागनी सिद्ध करने आ रही हैं।
2: दीपक रागनी सिद्ध करने आ रही हैं?
0: अब सुना तो यही है।
2: इसका तात्पर्य ये कि भुवन मोहिनी भी इसमें हो सकती है?
0: कदापि नहीं मित्र, कदापि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला यहां कैसे हो सकती हैं? अरे वो देखिए, राजकुमारी का रथ उद्यान में प्रवेश कर रहा है।
3: ओ मेरे हृदय, संयमित रह। राजकुमार विजय श्रवा पर राजकुमारी का अधिकार है, तेरा नहीं। देखना राजकुमारी कितनी व्याकुलता से पूरे परिसर में अपने राजकुमार को ढूंढ रही है।
4: ओ सखी, सखी।
5: हाँ राजकुमारी।
4: वो देखो, वो कौन है?
5: कहाँ?
4: ओ सखी, वो देखो, वो उधर लता मंडप के पास किसी के साथ खड़े हुए, वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो?
5: वो मैं कैसे बताऊं सखी से कि वो मेरे स्वामी ही हैं। कितने दिनों बाद दर्शन हुए हैं तुम्हारे प्रियवर।
4: निश्चित ही ये वही है। आह, तस्वीर से कितने गुणा अधिक मोहक है आप मेरे राजकुमार। मैं कृतार्थ हुई आपके दर्शन पाकर। आज तक मैं जिसके चित्र की पूजा करते हुए अघाती नहीं थी, जन्म जन्मांतर से मेरी प्रेम पूजा को ग्रहण करने वाले वही वरदायक देवता, मानो मेरी दृष्टि के सामने खड़े होकर पुष्प चयन कर रहे हो।
5: अरे वो रहा स्वामी का रथ जिस पर बिठाकर उन्होंने मुझे विदा करते हुए कहा था,
6: जाओ प्रेत में, प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारा राजकुमार यही रथ लेकर तुम्हें बुलाने अवश्य आएगा।
5: तो क्या वो दिन आ चुका है? क्या इसीलिए राजकुमार वही रथ लेकर आ उपस्थित हुए हैं? क्या सचमुच विजय श्रवा मुझे नहीं भुला सके, या कहीं मुझे भूलकर अपनी भावी जीवन संगनी का दर्शन करने आए हैं? ओह, इस भेद का पता कैसे चले? यदि मैं उनके दृष्टिपथ पर जा खड़ी हूं और वो अपनी महानता भूलकर अनुराग रंजित होठों से प्रियतमे बोलते हुए मेरी ओर बढ़ चले तो तब तो सिद्धि हो जाएगा, परंतु तब सम्राट के राज सिंहासन का महत्व भी खो जाएगा, दूर देश में अब कीर्ति होगी। आह, तुम यहां क्यों आ गए मेरे प्रियतम? तुम्हारा ये काम देव सा अनुपम लावण्य स्वरूप क्या छिपाने पर भी छिप सकेगा? क्या ये विशाल महान रथ स्वयं न सिद्ध कर देगा कि सम्राट के अतिरिक्त इतना मूल्यवान रथ किसी और के पास नहीं है? स्वयं आदित्य सेन महाराज ने आपका चित्र देखा है, उन्हें कैसे बुलावे में डाला जा सकेगा? आज तो आपके दर्शन की प्यासी राजकुमारी स्वयं अपने चर्म चक्षुओं से विकल होकर आपको देख रही है। क्या वो महारानी कुमुदवल्लभा से आपकी चर्चा नहीं करेंगी? और जैसे ही महाराज को ज्ञात होगा कि आप कोई श्रेष्ठ पुत्र नहीं, सम्राट के उत्तराधिकारी राजकुमार विजय श्रवा हैं, वैसे ही आपकी विराट राजकीय सम्मानों की श्रृंखला आरंभ हो जाएगी, संपूर्ण गोपनीयता प्रकट हो जाएगी। प्रिय, तब आप क्या बताएंगे किसी को कि क्यों आप गोपनीय वेश में छिपे हुए थे? राजकुमार, यदि कहीं सम्राट के पास महाराज ने संदेशा भेजा और उन्होंने मेरे निर्वासन की बात बता दी, तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। आपसे यदि अभी मिलूं तो?
4: कितना सुखद है आज का दिवस। चिर दिनों की उपासना के फलस्वरूप मेरे जीवन का देवता स्वयं मेरी द्वार देहरी पर खड़ा होकर अलभ्य दर्शन का वरदान प्रदान कर चुका है। कितनी पावन है आज की पुण्यमय घड़ियां। बस बस माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आज वो मेरी गायन में दिव्यत्व भर दें, दिव्यत्व जिसे सुनकर मेरे राजकुमार आह्लादित हों

0: राजकुमारी के गायन में कितनी एकाग्रता है, मानो प्राणों की अनहद रागिनी बिखेर रही है। कितना दिव्य है राजकुमारी का स्वर और कितना दिव्य है गायन करते हुए उनका ये स्वरूप, मानो समाधिस्थ हो गए हैं। उनके गायन से मानो ज्योति की लक्ष लक्ष किरणें बिखर गई हों, सहस्त्रों दीप सासा जल उठे हों। सारे उद्यान में, नगर में, राजभवन में एक साथ ही प्रकाश की लौ जागृत हो उठी हो।
1: अद्भुत, दिव्य, मानो एक क्षण में अगणित दीप जल उठे हों। संपूर्ण परिसर झिलमिल प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है।

0: अरे गायन समाप्त होते ही सारे दीप बुझ गए, तो क्या ये इस गायन का जादू था? निश्चित ही ऐसा चमत्कार भुवन मोहिनी ही कर सकती है, उसके अतिरिक्त और कौन ये विस्मय प्रकट कर सकता है? तो क्या रथारूढ़ होकर वही राज्योद्यान में आई है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि भारत सम्राट का एकाकी पुत्र अपना सर्वस्व समर्पण किए हुए उससे मिलने के लिए यहां आया है? प्रतीत होता है कि रथ वापस जाने को है। अवश्य ही भुवन मोहिनी रथ में पुनः सवार हो गई होगी। जो भी परिणाम हो, मैं रथारूढ़ मूर्ति को देखे बिना रथ को आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
1: सारथी, रथ रोको।
2: ओ दिव्य पुरुष, कौन है आप? अरे अरे, आप रथ के ऊपर कैसे चढ़ाए?
1: मैं जानना चाहता हूं कि इस रथ के यात्री कौन है।
2: आप ऐसा नहीं कर सकते, ये राज परिवार के सदस्य हैं।
1: यही तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्दे के पीछे हैं कौन।
0: भुवन मोहिनी,
3: मेरे स्वामी, आप ये क्या कर रही हैं? सोचा नहीं था कि ऐसे आपको देख सकूंगी।
0: भुवन मोहिनी, मेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें देख लिया ना, और विश्वास मानो मिलूंगा भी, परंतु तुम्हारे समीप बैठी ये कौन है? ओह, इस मुखड़े में भी कितना घोर आकर्षण है, जो क्षण भर देखने वाले को भी बिना ठगे नहीं रह सकता।
3: ओ रूप के जादूगर, शीघ्र दृष्टि से ओझल हो जाओ और मुझे भी अपनी तरह उदंड मत बनाओ। कैसे भी क्यों ना हो, अंततः मैं एक नारी हूं, लज्जा के आवरण से ढकी हुई। मुझे निर्लज्ज बनाकर तुम क्या पाओगे प्रिय? मान जाओ स्वामी, कहीं राजकुमारी भेद की बात ना जान जाए।
4: हे प्रभु, अचानक ही तुमने मेरी रिक्त छोड़ी भर दी। ये रूप का सागर पीकर भी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रहे।
0: अब तक सारी सृष्टि का सौंदर्य एक ही चंद्रमुख में प्रतिभासित होता दिखाई देता था, किंतु आज ये कैसी आश्चर्यपूर्ण घड़ी है कि एक ही सृष्टि में दो दो चंद्रमुख अपनी आकर्षणपूर्ण किरणें डाल रहे हैं।
4: हे राजकुमार, मुझे यूं ना देखो।
2: हे दृष्टदेव, किसे खोज रहे हैं आप? यह रथ राजकुमारी चंद्रहासिनी का है। क्या अपरिचित के द्वारा मार्ग में रथ रोकना कभी क्षम्य माना जाएगा?
1: मैं विवश था सारथी, मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हुई। कृपया मेरी ओर से दोनों देवियों से क्षमा याचना कर लेना।
2: कर लूंगा।
1: मैं किसी परिचित मित्र को खोजने के बहाने अनजाने में अपराध कर बैठा, क्या अपरिचित के प्रति दया का व्यवहार नहीं किया जाएगा?
4: सारथी, अपरिचित से कह दो कि यूं तो अवश्य ही उक्त व्यवहार महिलाओं की दृष्टि में पर्याप्त अभद्र है, किंतु भूल भूल ही होती है। हम दोनों भी उसे भूल ही मान रहे हैं, इसलिए क्षमा याचना का कोई प्रश्न ही नहीं। इनसे बोल दो कि इस राजोद्यान में आकर ठहरने वाला कोई भी अपरिचित व्यक्ति हम दोनों के लिए स्वजन की तुल्य ही है, क्योंकि यहाँ अनुमति केवल उन्हें ही दी जाती है जिन्हें पहले ही राजकीय आदेश प्राप्त रहते हैं।
2: चलिए, आपको क्षमा किया जाता है। मैंने ठीक कहा ना राजकुमारी?
4: हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा।
5: आपने सचमुच ठीक कहा राजकुमारी,
4: सचमुच। सारथी, रथ बढ़ाओ।
2: जो आ गया राजकुमारी।

संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना भुवन मोहिनी धारावाहिक का तीसरा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ. केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ. हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर। साथियों, क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। और साथियों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग

योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है पर चर्चा करने का। साथियों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज के आधुनिक

युग में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। उद्योगों, कृषि, परिवहन, शिक्षा और घरेलू कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भरता है। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जाता है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथियों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। बिजली से घरों में प्रकाश होता है, मशीनें चलती हैं और उद्योगों का संचालन होता है। यदि ऊर्जा उपलब्ध न हो तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन करने में भारी लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नए बिजली संयंत्र स्थापित करना, ईंधन जुटाना और वितरण व्यवस्था विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। यदि हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम करें तो उतनी ही ऊर्जा बचाई जा सकती है जितनी नई ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संरक्षण से आर्थिक बचत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे कम बिजली खर्च देते हैं। दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए। वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई काम करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। विद्यालय और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बचत कर

0: सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे हम बीपी की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, और हार्ट अटैक के तो इतने हम लोगों ने घटनाएं सुन ली हैं, देख ली हैं कि मतलब कुछ विश्वास ही नहीं रह गया जिंदगी का, है ना। ओबेसिटी मोटापे की समस्या है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ खास आसन अगर आप बता सकें इन बीमारियों के लिए, जो जीवन शैली से संबंधित।
1: जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें कुछ समय के लिए ब्रजासन में बैठे रहना चाहिए,
0: ब्रजासन जी,
1: है ना। उससे क्या होगा ना, आपका डाइजेशन थोड़ा अच्छा होगा, और अगर आपको निंद्रा नहीं आ रही है, आपको नींद में समस्या आ रही है, तो आप बालासन कर सकती हैं।
0: अच्छा।
1: आप ताड़ासन कर सकती हैं। ताड़ासन में क्या होता है ना, आपका स्ट्रेचिंग जाता है, तो आपकी जो मसल्स जब खींचती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है
0: जी।
1: तो ऐसे छोटे मोटे आसन आप कर सकती हैं, लेकिन कोई भी आसन करने के लिए आपको कम से कम जो आपने भोजन किया हो उसमें 2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अब भोजन करने के बाद सिर्फ वज्रासन में बैठ सकती हैं, उसके अलावा आप कोई आसन नहीं कर सकती।
0: किसी भी आसन के लिए पेट का खाली होना,
1: खाली होना, 2-2.5 घंटे का आपका गैप होना चाहिए।
0: अच्छा, कुछ लोगों को ये भी एक मन में रहता है कि सुबह अगर नहीं कर पाए आसन तो फिर वो सोचती हैं दिन खत्म हो गया, तो क्या शाम को किया जा सकता है?
1: आप कर सकती हैं, आप आसन को संध्याकालीन में भी कर सकती हैं, आप सुबह, वैसे प्रातःकालीन करेंगी तो बहुत, अच्छा,
0: बहुत
1: है।
0: अच्छा है,
1: लेकिन ऐसा नहीं है, आप संध्याकालीन में भी उसको कर सकती हैं।
0: बस ये ख्याल रखें कि पेट खाली हो,
1: पेट खाली हो, और एक आपका रूटीन होना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी चीज आपको रिजल्ट नहीं देती
0: जी। अच्छा, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि हेल्दी एजिंग इस बार की थीम है, तो जो बुजुर्ग हैं उनकी एक समस्या ये हो जाती है कि इस तरह के आसन करने के लिए उनका शरीर उस तरह से उनको मतलब सपोर्ट नहीं
1: सपोर्ट
0: कर पाता है,
1: कर पाता है,
0: उतना लचीलापन नहीं रहता। तो बुजुर्गों को क्या ऐसा भी सुनने में आता है कि क्या वो कुर्सी पर बैठकर भी आसन योग कर सकते हैं?
1: वो अगर बैठने में सक्षम नहीं है तो वो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। हाँ, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी हमारी क्रियाएं हैं, जैसे जल नीति हो गया, साइनस का कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप जल नीति कर सकते हैं। लेकिन ये सब अभ्यास से चीजें आती हैं, और एक प्रशिक्षक के संरक्षण में रह के ही आप ये सब करेंगे तो आपको इसका फायदा ज्यादा होगा।
0: जी जी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि जो फेफड़े की बीमारियां
1: जी
0: हैं,
1: जी,
0: है ना,
1: श्वास संबंधी
0: बीमारियां, उसमें योग किस तरह से काम करेगा और कितनी देर करना चाहिए? अब कुल मिलाकर भी ऐसे भी कोई व्यक्ति अगर जीवन में योग को शामिल करता है तो कितना समय देना चाहिए? ज्यादा करना कभी हानिकारक हो सकता है क्या? ये भी मैं जानना
1: चाह रही थी। ये योग का जो भी आसन है या जो भी आप श्वास से संबंधित आप कुछ भी आसन करते हैं, आप अनुलोम विलोम भी करते हैं, ये हमारी शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है।
0: अच्छा।
1: सबकी शारीरिक क्षमता अलग होती है, बच्चे की अलग होती है, उससे
0: तो थकने की हद तक नहीं करना है ऐसा?
1: हाँ, थकने की हद तक नहीं करना है। जहाँ तक आपको आराम से आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, वहां तक आप उसको कीजिए,
0: धीरे धीरे अभ्यास
1: से। आप उसको बड़े प्रेशर के साथ आप मत कीजिए योग को, बहुत आसन के साथ इजी वे में कीजिए जो आपको फायदा दे। कई बार हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हमें योग करना है, लेकिन कैसे करना है, टेक्निक्स क्या है, कितने टाइम तक करना है, ये जानकारी हमें नहीं होती, और वो हमें थका देता है। जैसे जिसका बीपी हाई होता है उसको शीतलकारी आसन करना चाहिए, तो ये नहीं पता होता
0: जी, जी।
1: बीपी लो वाला शीतलकारी आसन नहीं कर सकता, तो उसका और लो चला जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत
0: शीतलकारी आसन से आपका मतलब क्या है? वो जो एसिडिटी के लिए भी उसको कहते हैं कि कारगर होता है वो?
1: हाँ, उसको कर सकते हैं, लेकिन खास ख्याल रखना पड़ता है कि जिसका ब्लड प्रेशर लो वाला जिसका प्रॉब्लम हो वो शीतलकारी आसन ना करे। बीपी हाई वाले के लिए शीतलकारी आसन हो।
0: तो ये सारी जानकारी है मतलब?
1: हाँ, ये तो आप जब जिसको योग करना है तो थोड़ा बहुत ये जानकारी लेके ही वो अपने शुरू
0: और शुरुआत करें तो विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में।
1: हाँ, क्योंकि कुछ विशेष आसन ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए नहीं होते। किसी का रीढ़ की हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, साइटिका है, तो आप काफी सारे आसन नहीं कर सकते हैं। कई लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो वो हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर कहाँ तक किस चीज के लिए बना है।
0: जी जी जी, जी।
1: क्योंकि हमें तब अवेयरनेस आती है जब बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ,
1: सहज तरीके से योग करें
0: जितना कर सकते हैं।
1: और अगर सूर्य नमस्कार करने की आपकी क्षमता है तो उससे तो अति उत्तम कुछ है ही नहीं।
0: जी जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सूर्य नमस्कार की चर्चा आपने

0: कई बार की, लेकिन मान लीजिए एक 40-45 साल की कोई महिला है जो अब शुरू करना चाहती है सूर्य नमस्कार, तो जाहिर तौर पर उसके जितने भाग हैं वो सब कुछ वो कर ले पहली ही बार में,
1: हाँ।
0: वो संभव नहीं हो सकता,
1: वो संभव नहीं है, लेकिन आप उसको सीख सकती हैं।
0: हाँ,
1: उसका मैं पूछने जा रही थी
0: कि अगर कोशिश में वो रह जाए,
1: हाँ।
0: थोड़ा रह जाए और आपने कर लिया, तो वो धीरे धीरे
1: प्रयास से आपको
0: ठीक होगा या
1: अभ्यास से वो आपको नहीं, उससे कोई हानि नहीं। अच्छा। है आप उतना ही करेंगी जितना आपके शरीर से हो सकता है, जबरदस्ती का स्ट्रेस नहीं लेना है, और आप जब उसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप उसमें निपुण हो जाएंगे।
0: अच्छा, मैं चलते चलते एक चीज कहूँ जो आम आदमी की एक समस्या रहती है योग को लेकर, कि लोग अक्सर अकेले योग करने में बहुत बोरियत महसूस करते हैं, तो क्या उपाय हो?
1: क्योंकि लोग योग को समझना नहीं चाहते।
0: हाँ।
1: जैसे हमने अपना घर बनाया
0: जी,
1: तो हम उसे कभी खराब नहीं होने देते, उसमें नए नए चेंजेस लाते रहते हैं, उसको रीपेंट कराएंगे, टाइल्स लगाएंगे, इंटीरियर कराएंगे, तो हमें समझना होगा हमारा शरीर भी हमारी आत्मा का घर है जिसको हमें रिपेयर करते रहना चाहिए, और योग से बड़ा रिपेयर करने वाला कोई साधन नहीं है आज के समय में। तो हमें हमारे बुजुर्गों से या हमारे इस संस्कृति से इतनी अच्छी चीज हमें मिली है कि विदेशों में भी आप देखिए कितना योग का प्रचार है इस समय।
0: हाँ।
1: तो जो चीज़ इतनी फ़ायदा है आपको दे सकती है, योग हमारा हमारी जर्नी है, हमारी खुद की यात्रा है, उसमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है
0: जी।
1: लेकिन अगर आप कुछ विशेष आसन सीखना चाहते हैं उसके लिए आप प्रशिक्षक के संरक्षण में रह के सीखिए।
0: जी जी। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि योग एक बहुत महत्वपूर्ण जो योगिक जो परंपरा है उसका एक उपहार है, हमने कहा, और इससे जुड़ना चाहिए हर इंसान को, और आज का दिन ये कहता है कि हाँ हम इससे ज़रूर जुड़ें। तो आज आपने योग पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की और बताया कि किस तरह से योग करना चाहिए, और मैं एक चीज़ और बस चलते चलते जानना चाह रही थी कि योग की दृष्टि से एक आदर्श जो दिनचर्या है एक व्यक्ति की वो क्या हो? वैसे कमोबेश लोगों को पता होता है, लेकिन खान पान की दृष्टि से भी, सोने उठने की दृष्टि से भी, एक आदर्श जो दिनचर्या है।
1: हर व्यक्ति का जीवन शैली अलग होती है। एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 की जीवन शैली अलग है। महिला की जीवन शैली सबको संभालने की है, पुरुष की बाहर जाने की है, बच्चों की अपनी शिक्षा लेने की है, लेकिन अगर
0: कामों की अलग चुनौतियां भी,
1: हाँ चुनौतियां भी है, लेकिन अगर आप में ये जागरूकता आ गई या आप ये चीज समझ गए कि जैसे हमारे लिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं, वैसे ही हम योग भी करें प्रतिदिन, चाहे हम 10 मिनट के लिए करें चाहे 15 मिनट के लिए करें, तो जैसे भोजन हमारा पेट भरता है, हमारा शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, ऐसी हमारी आत्मा का भोजन योग है। तो जो हमें मिलना बहुत जरूरी है, अगर ये हम तो जन तक संदेश पहुंचा सकें कि अपने आत्मा के भोजन को भी आप ग्रहण कीजिए, तो जरूर सबको लाभ होगा।
0: आपने बहुत ही अच्छे तरीके से संदेश दे दिया कि जिस तरह से आप इस संसार में कोई भी काम आप कर रहे हो, कितने भी व्यस्त हो, भोजन जरूर करते हैं,
1: भोजन जरूर करते
0: हैं, तो अपनी आत्मा को भी भोजन जरूर दीजिए। तो अगर ये हम सोच लेंगे तो बात
1: तो हम सफल रहे।
0: तो सपना जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने ये बातचीत की सुश्री सपना अग्रवाल से। उम्मीद है कि योग विषय आप तक बहुत ही सहज होकर पहुंचा होगा। चलते चलते हम यही कहेंगे कि योग को अपनाइए, अपनी जीवन शैली बनाइए, दिनचर्या में रखिए उसको, क्योंकि योग एक दिन का विषय नहीं है, साल में जो 365 दिन हैं हर दिन योग का दिन है। तो बहुत बहुत आभार आप आई, और अपने श्रोताओं से यहीं से हम विदा लेते हैं। नमस्कार, आप बने रहिए आकाशवाणी भोपाल के साथ।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभी आपने योग विशेषज्ञ सुश्री सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत सुनी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: पहले दो मैचेस जीतकर टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद, लेकिन आज है बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। इट्स इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर, एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन ऑल द मैचअप्स, की प्लेयर्स, टैक्टिकल शिफ्ट्स विद आवर एक्सपर्ट्स। नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मुनीश जॉली। मुनीश, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल।
5: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता। और हम चाह रहे हैं कि ऐसी वार्मथ जो है वो मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड जहां इतिहास रहा है क्रिकेट का, वहां पर भी बनी रहे। और बड़ी जल्दी से हम अपने एक्सपर्ट्स को आप सभी लोगों से परिचित कराते हैं। हमारे साथ वैशाली माथुर बैठी हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। स्वागत है आपका वैशाली।
6: थैंक यू।
5: उत्तराखंड का नाम आप जानते हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और अपने भाव अपनी तलवार के जरिए यानी अपनी पेन के जरिए वो व्यक्त करती रहती हैं। आपका भी बहुत

0: स्वागत है.
1: धन्यवाद मुनीश, और नमस्कार सारे आकाशवाणी के श्रोताओं को.
0: एंड ऑफ कोर्स बीसीसीआई के क्वालिफाइड कोचेस में से एक नाम रविंद्र सिंह जी का जाता है, जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं और राइट आर्म अराउंड द विकेट. आज बॉल डालने के लिए तैयार हैं कोच साहब?
2: अभी तो आज तो हम बैटिंग करने के लिए तैयार हैं. हरमनप्रीत की देखने की 200वां मैच खेलने जा रही है. आज बॉलिंग भूल जाइए, पहले बैटिंग पर ध्यान लगाइए.
0: मुदिता, अभी बहुत जल्द टॉस होने वाला है और जैसे ही टॉस होगा हम अपने श्रोताओं को लिए चलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड. लेकिन ये तो खैर हल्की बातें थी, एक टफ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ. आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो?
3: जाहिर सी बात है, टीम इंडिया.
0: चक्कर ये है कि आपने भी आज येलो पहना है, मैंने भी येलो पहना है. साउथ अफ्रीका येलो पहन के आएगी. बट वेरी क्विकली वैशाली, इससे पहले कि हम टॉस की तरफ जाएं, बड़ी जल्दी आप इस मुकाबले को कैसे देख रही हैं?
3: मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि इंडिया अगर टॉस जीतता है तो पहले उनको बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग उतनी लाइनअप पे नहीं है अभी.
0: चलिए देखते हैं क्या होता है. सीधे चलते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड जहाँ टॉस हो रहा है.
4: Heads is the call. It is a heads. Harman, congratulations. What are you going to do and why?
5: We're going to bat first. Why? Because I think it's a good pitch and we thought if we bat first and put a decent total, that will help us to win the game.
4: You played a bit here previously domestically. How do you think it's going to play?
5: I think it's a very good pitch. The only thing is you have to give some time on the middle and then you can take the game ahead.
4: No player has played 200 T20 internationals. As a young girl growing up, how special is that for you?
5: 200th game, I think, honestly, it's been an amazing journey. I never thought I'll come that far, but I think God has been kind and I'm really thankful to him. And to my family, friend, BCCI, all my teammates, they've been really supporting.
4: And you should have a sellout crowd here at Old Trafford. Looking forward to the atmosphere?
5: Yes, definitely. I think they have been our biggest support. Hopefully, we'll entertain them.
4: And one enforced change for you. Who comes in and are there any other changes?
5: Yeah, Shrenka is missing because of her injury. Place of her, Prema is going to make her debut. And we have one more change. Kranthi is resting today. Arundhati is playing.
4: I saw you have a chat with Prema a little bit earlier. What did you say to her?
5: Just to enjoy. I think I'm more nervous playing 200th game and she's someone who looked very calm and hopefully she'll enjoy her game.
4: All the best today.
5: Thank you.
4: Laura, you're bowling first. What would you have done?
6: We probably would have batted as well. Pretty big game for us. We would have liked to put some runs on the board, but hopefully we can restrict them.
4: Pretty much a must-win game for you in this group. What have been the conversations ahead of this one?
6: Yeah, trying not to think about the outcome too much. I think we all know sort of what's at stake today. So just trying to take it one ball at a time, stay really present. And I feel like if we play our best cricket, we'll come out on top today.
4: You've had some pretty amazing encounters against India in recent times, obviously wanting to get revenge from that one day World Cup final, but coming in with some good form against them in the T20s, that must give you confidence.
6: Yeah, definitely. I think it's nice to have won against them pretty recently, but they probably have gotten the better of us at World Cups recently. So yeah, hopefully we can get them back today.
4: Any changes for your side?
6: We got two changes. Danae and Taz are back in, and Tunay and Kayla are missing out today.
4: Some reasons for the changes?
6: Yeah, we just thought it was the best combination to go with today. Obviously, usually a bit slower here, so we thought we'd bring in some batters who are really good against the spin. So hopefully that works today.
4: All the best.
6: Thank you.
4: So the news from the middle is that India have won the toss and will bat first.
3: India has won the toss and elected to bat. Munish, बिल्कुल नॉकआउट मुकाबलों वाली फीलिंग आ रही है आज. दोनों ही ग्रुप्स में निर्णायक मुकाबलों का दिन है. वैशाली, इंडिया ने बैट करना पसंद किया है आज के इस मैच में. आज का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका के लिए इट्स अ मस्ट विन मैच. और हम जो अभी मैं बात कर रही हूँ कि नॉकआउट मुकाबलों जैसी एक फीलिंग आ रही है, क्वार्टर फाइनल जैसा एक लग रहा है, वहीं भारत के लिए ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी मजबूत करना भी ज़रूरी है.
7: बिल्कुल. एंड आज का अगर इंडिया टीम मैच जीतती है तो वो फाइनल में, सेमीफाइनल में अपनी जगह भी बना लेती है, और उसके साथ ये क्लैरिटी मिल जाएगी इस ग्रुप में कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दोनों ही सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव बहुत ज़रूरी है कि ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है. और अभी हमारे कैप्टन ने दो चेंजेस की भी बात करी है, तो वहाँ पर प्रेमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रेमा 2025 के वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, उसमें वो स्टैंड बाई लिस्ट में भी थी. एंड आज वो डेब्यू भी कर रही है, और सबसे अच्छी बात है वो इंडिया ए टीम के लिए ऑलरेडी इंग्लैंड में थी, एंड वहाँ पे उनको इंडिया कॉल आया. आज वो डेब्यू भी कर रही हैं, और सबसे बड़ी खास बात ये भी है उनकी, वो यहाँ पे लेग स्पिन डालती हैं. और सबसे खास बात यह है कि वो रिस्ट बॉलर है. रिस्ट बॉलर को जज करना उतना इजी नहीं होता है, और आज उनको

0: अपना ये चांस ग्रैब भी करना चाहिए। एंड बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हमारे बैटर्स को कम से कम उतनी उनको फोकस करना चाहिए कि वो सिक्स पावर प्ले के अंदर, सिक्स ओवर के पावर प्ले के अंदर जितने रन्स बटोर सकते उतने बटोरे, और जितनी कम विकेट हम फॉल करेंगे उतना बेटर हमारे लिए होगा।
1: राइट देन, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम मुनीश जौली। अगला सवाल मैं रविंदर सिंह आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे श्रेयंका पाटिल के बारे में बहुत अनफॉर्चुनेट इंजरी थी, आपको लगता है एक बहुत बड़ा ब्लो है भारतीय टीम के लिए?
2: डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर थी प्लस वो पावर प्ले में जो उनका जो एडवांटेज था बॉल डालने का, वो अब जरूर इंडिया मिस कर रही होगी। और मुझे श्रेयंका पाटिल के जो इस समय जो बैलेंस है टीम का, वो अब प्रेमा रावत से कितना बैलेंस हो पाता है ये तो आज वक्त बताएगा, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा ब्लो है इनसे।
3: उत्तरा अभी बात की वैशाली ने पावर प्ले की, पावर प्ले में सुफारा ओपनर्स आर डूइंग वेल, लेकिन अब पावर प्ले में सामना करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के लीथल बॉलिंग अटैक का। एक एन से मार्जन कार्प, दूसरे एन से शबनम स्माइल, और फिर इनके अलावा आयाबुंगा खाका। आज इंडिया पावर प्ले में कैसा परफॉर्म करता है, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आज के मैच का, और इज इट गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ पावर प्ले, इंडिया Indian top order versus South African pacers?
4: I think it's going to be a battle of who is more hungry and desperate to win. India ke paas advantage ye hai ki do match already jeet chuke hain wo apne, और साउथ अफ्रीका एक ही जीती है एक हारी है अभी, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये मैच जीतना अपने चांसेस बनाए रखने के लिए। इंडिया के पास जो बाकी के दो मैच हैं उसमें भी एक टीम बांग्लादेश है वेर वी एक्सपेक्ट इंडिया टू डू रियली वेल, तो प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होगा। बट अगेन जैसा कि पावर प्ले की बात है, तो T20 में पावर प्ले में मैचेस हैव बीन वन एंड हैव बीन लॉस्ट। शबनम इस्माइल के वापस आने से ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। हमारी बैटिंग में ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो टॉप के तीन चार हमारे बैटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगेन अगर वहाँ से सामने की तरफ से जिस तरह से बॉलिंग आएगी, अगर पावर प्ले में हम नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मामला टाइट हो सकता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऋचा घोष हमारी मिडिल ऑर्डर उस तरह से नहीं फायर की है, ना उस तरह से टेस्ट हुई है इससे पहले के दोनों मैचेस में जो नेदरलैंड्स था और पाकिस्तान दोनों के ही साथ, तो प्रेशर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। जो हमारे टॉप के चार बैटर्स हैं हरमन, शेफाली, स्मृति और जमीमा, एक्सपीरियंस है, फॉर्म है, रन्स हैं उनके पास, तो उन चारों का परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से आपका टेम्पलेट सेट करेगा कि टीम किस तरफ जाएगी। आपने पावर प्ले की बात की, मुझे लगता है कि इन चारों को पावर प्ले से बहुत आगे और खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पावर प्ले में ये करते भी हैं और उसके बाद नहीं उस स्टार्ट को भुना पाते हैं तो भी जो बाकी के बैटर्स आएंगे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
1: राइट देन, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं वैशाली इस बात?
0: बिल्कुल, जैसे मैम ने बोला अभी कि मिडल ऑर्डर के बारे में उन्होंने बात करी, तो वहाँ पर ये चेंज जरूर होना चाहिए कि यास्टिका भाटिया की जगह पे अगर दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष अगर मिडल ऑर्डर पे आते तो बैटिंग लाइनअप थोड़ा बेटर इम्प्रूव दिखाई देगा। तो ये एक कप्तान को सोचना जरूरी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मैच है इंडियन टीम के लिए, और यहाँ से अगर जीतते हैं तो आप हम सब जानते हैं कि आगे पहुंच सकते हैं।
1: और एक बहुत बड़ा दिन कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी, 200वां T20 इंटरनेशनल जो है वो खेल रही हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहाँ पे। हम अपने श्रोताओं को यहाँ पे इनवाइट करें, मुदिता क्या कहती हैं, फोन नंबर्स अनाउंस कर देते हैं? तो दोस्तों हमारे जो स्पोर्ट्स स्पेशल फोन नंबर्स हैं जिसके वजह से आप हमारे इन एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो नंबर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2342-1083, 2342-1085। इससे पहले आपको दिल्ली का कोड लगाना पड़ेगा 011, और उसके बाद 2342-1083 और 2342-1085। हमारे साथ फोन कॉलर्स अगर अभी जुड़ रहे हैं तो देखते हैं, मुझे तो कौन है फोन लाइन पर।
3: जी अपना परिचय दें, कहां से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
1: सर वो अभी टीम में आए हैं क्योंकि श्रेयंका पाटिल इंजर्ड हो गई हैं, तो उनको स्क्वाड के अंदर अभी डाला गया है, तो वो कोई चांस नहीं था कि वो पहले खेल पाती।

0: जी रविंदर जी, रेणुका सिंह
1: देखिए, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। जो श्रृंखला पहले जो आज अरुण जेटली को लिया है, इन्होंने पहले मैच में नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो कल 2 ओवर 20 रन के आसपास थे, लेकिन उनको ये उनको पता है कि ये जो यहाँ पे सीम होगा, बॉल सीम होता है, और इसलिए शायद उन्होंने अरुण जेटली को लिया है। रेणुका सिंह का भी नंबर जब उनको लगेगा मैनेजमेंट को, तो भी उनका आएगा। लेकिन आपने सही बोला कि प्रेमा को इसलिए एक लेग स्पिनर था, एक लेग स्पिनर एक आपको पता है कि जब खेलता है तो मैच को बराबर या तो मैच को बिल्कुल साइड कर देता है। और 4 ओवर में साउथ अफ्रीका के लिए एक लेग स्पिनर जो कि शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा इस प्रेमा रावत को पहले, तो एक अच्छा रीजन हो सकता है।
2: विशाल, एक खिलाड़ी होने के नाते आपसे एक सवाल है कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर राधा यादव हैं स्क्वाड में हमारे पास, लेकिन मैनेजमेंट ने एक बड़ा दांव खेला है एक अनकैप्ड प्लेयर को टीम में शामिल करके, जो अभी हमारे श्रोता सवाल कर रहे थे, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर और इतने इंपॉर्टेंट मैच में। स्किल है उनके पास, नंबर्स भी हैं, इंडिया ए के लिए 8 मैचेस में 15 विकेट लिए हैं उन्होंने। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट T20 सीरीज में शी वॉज द जॉइंट हाइएस्ट विकेट टेकर, लेकिन सीधे इतने बड़े मंच पर आने से विल शी बी एबल टू हैंडल अ हाई प्रेशर गेम?
3: ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड है कि आज क्या वो अपना पूरा 100% किस तरीके से देती हैं। एंड सेकेंडली, अगर हम प्रेमा की बात करें तो वहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है इंडिया ए में, जो आपने उनके विकेट्स के बारे में बताया है, तो उस हिसाब से वो इस मैच के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है। एंड वहाँ पर जिस तरीके से अभी सर ने बोला कि वो एज अ लेग स्पिनर भी खेल रही हैं, तो उनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है और उनको खेलना भी इजी नहीं होगा। पहले उनको देखा जाएगा, उनकी बॉलिंग को जज किया जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली खेला जाएगा। तो वहाँ पर जज करने में और कुछ ओवर्स वहाँ पर हमें बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि न्यू बॉलर को जज करना इतना ईजी नहीं होता है इतने बड़े लेवल पर।
0: वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप प्रेमा रावत की बात करें, वो पावर प्ले में बॉल डालती हैं लेग स्पिन अगर मौका दिया जाए तो?
3: मुझे लगता है कि पावर प्ले का अगर फ़ायदा उठाना है तो हमें एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ उठाना चाहिए, जो है दीप्ति शर्मा। एंड उसके साथ वो एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि वो कहाँ पर किस बैटर को कहाँ पर बॉल डाल सकती हैं और कहाँ उनका स्पॉट है बॉलिंग का। इस बैटर की डेब्यू प्लेयर से ना करा के हम उनको वहाँ यूज़ करें जहाँ विकेट्स की ज़रूरत है।
0: वेरी क्विकली उतरा, आई वॉन्ट टू आस्क, सिंस इंडिया इज़ बैटिंग फर्स्ट एंड you know it's a big day today, yoga day, we'll talk about that a bit later, but then Shefali Verma, you think the way I think that she's a bit inconsistent whether she's going to score today or no, you have a same thought about her?
4: I think Shefali has, a lot of people have been very unfair to Shefali, क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया था तो जिस तरह से शुरू किया था उन्होंने वहाँ पर, तो people expected her to go bang bang every game, every innings, and then go and score those big runs. But we have to remember, people evolve, players evolve, she's becoming mature, and she has also learnt how to handle herself. It took her some time, but yes, I think the inconsistency was more about handling the pressure of what people expect from her every time she goes out, and what the team situation is and what she actually needed to do as a player out there. But I think she's grown, she's become more evolved and mature, she now understands the game better. So wo consistency ab dheere dheere aayegi uske game mein, aur wo aapko uske game mein nazar bhi aata hai. She's not going to go jaisa aajkal hum Vaibhav Suryavanshi ke liye bol rahe hain, she's not going to go bang bang from the first ball. Wow. She's become a mature player, and that's why the consistency has improved in the last few years.
3: And humne yahi Shefali Verma ka Shefali Verma ka last match mein dekha tha ki unhone air shot nahi khele the, groundy shots khele the. Ye improvement hai.
0: Wow. मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होता है ना, मैं मेडिटेटिव मोड में चले जाता हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप को शांत रखता हूँ आँख बंद करके। और आज एक बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो रविंदर पाजी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में योग ने आके कुछ चेंज किया? आप योग फॉलो करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता जो राजधानी है वेस्ट बंगाल की, वहाँ रेड रोड एक बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पे जाके उन्होंने आज बहुत लोगों के साथ योग दिवस मनाया। आप योग को कैसे लेते हैं अपनी ज़िंदगी में?
1: देखिए, अभी आपने बोला कि जब भी मैं किसी तरह उसमें रहता हूँ तो मैं वापस योगा मूड में आ जाता हूँ। यही सबसे बड़ी बात है। ये प्रेशर गेम है, ये प्रेशर, इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर, इतना होता है इनके लिए। तो योगा मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में योगा टीचर्स भी, बड़ी बात नहीं कि योगा टीचर्स भी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि इनको जो अपना फोकस रखना है अपना। कई बार तो मैंने देखा कई प्लेयर्स को मेडिटेशन करते हुए देखा, अपना फोकस, अपना दिमाग को बिल्कुल स्टेबलाइज करने के लिए, कोई कंसंट्रेशन करने के लिए। ये योगा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हुआ है और क्रिकेट का, और इवन कई सारे स्पोर्ट्स का, और हर लोग, मुझे लगता है कि हर प्लेयर उसको जरूर ना कुछ कहीं ना कहीं कितने रूप में फॉलो करता है।
0: वैशाली, आपको कैसे इवॉल्व किया योग ने, एंड हाउ डू यू थिंक दैट इट्स बेनिफिटिंग द मॉडर्न स्पोर्ट्स एरा नाउ?
3: योगा का, मुझे लगता है कि योगा का ना बहुत पॉजिटिव रोल है, सिर्फ एथलीट्स पे ही नहीं, बाकी लोगों पे भी। एंड अगर एथलीट्स की बात करें, क्रिकेटर की बात करें, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो टाइट मसल्स होती है ना, वो हमारे हिप्स, शोल्डर, हैमस्ट्रिंग को खोल देती हैं। एंड ये हमारे ना बैटिंग के बैकलिफ्ट, बॉलिंग का फॉलो थ्रू एंड फील्डिंग के ड्राइव पे बहुत स्मूथ असर देता है और बहुत स्मूथ फोकस चलता है। और अगर मैं बैलेंस की बात करूँ तो योगा हमारे बैटिंग के लिए बैलेंस हमें देता है एंड आपको मूवमेंट डायरेक्शन करने में हेल्प करता है। और उसके साथ इसको मेंटल फोकस, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत लॉन्ग टर्म का, बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला गेम है, तो उसमें मेंटल फोकस और प्रेशर हैंडलिंग गेम बहुत ज़रूरी है, तो वो योग से ही हमें मिलता है।
2: जी बिल्कुल। उत्तरा, आपका कोई अनुभव योग को लेकर?
4: मुझे लगता है योग इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो जिस तरह से होता है, शायद योग से ज़्यादा एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल कुछ नहीं है, बिकॉज उसके इतने वेरिएंट्स हैं। एंड ऑनेस्टली हर किसी के बस का नहीं है वो बैठ के एक घंटा पूरे तरह से ध्यान लगाए। और लोगों के लिए फोकस करना या मेडिटेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं जो गाना सुनते हैं और अपने आप के साथ रहना पसंद करते हैं 5 मिनट के लिए, तो म्यूज़िक इनकॉर्पोरेट करना। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे डांस योगा और स्टीम योगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो योग से ज़्यादा मुझे लगता है हर किसी को सूट करने के हिसाब से कोई और ऐसी एक्सरसाइज मॉड्यूल अगर हम देखें तो कुछ और है नहीं, जिसमें आप अपने हिसाब से योग को ढाल सकते हैं और योग के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अडेप्टेबल, मैलिएबल या फ्लेक्सिबल कोई भी एक्सरसाइज का तरीका है। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है योग के बाद।
0: आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे मुदिता, बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव था, एंड ऑफकोर्स यूएन में जाके अंतर्राष्ट्रीय योग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, और आज माननीय राष्ट्रपति जी भी जबलपुर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पहुँची थी। बट वील कम बैक टू द गेम वेयर ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस रिमेन्स यू नो एट द पीक फॉर द टॉप प्लेयर्स।
2: बिल्कुल रविंदर, फील्डिंग की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी शार्प फील्डिंग साइड एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट वंस इनटू टूज अगेंस्ट देम। वन ऑफ द बेस्ट बाउंड्री सेविंग टीम्स भी है वो, तो क्या ये मुकाबला आज रन बनाने से ज़्यादा रन बचाने का साबित हो सकता है?
1: देखिए, फील्डिंग हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, बैटिंग बॉलिंग तो होता ही है, फील्डिंग में आप जितने रन बना सकते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और वही कई बार 20 ओवर के मैच में मार्जिन बहुत ही कम लेवल, बीच में जो उनका डिफरेंस होता है, मार्जिन तो बहुत कम होता है, वही 2-4 रन लास्ट में वो मैटर करते हैं। लेकिन अब वो इंडियन टीम ने भी काफ़ी इंप्रूव किया है बीच में, काफ़ी पहले तो इंडियन टीम की बैटिंग फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी इंप्रूव किया है। लेकिन साउथ अफ्रीकन शुरू से ही मेंस लीजिए या वुमेन दोनों लीजिए, कमाल के रहे हैं। और अभी तक आपको अगर कोई किसी से भी, अगर जो ना भी स्पोर्ट्स जानता हो, उससे पूछेंगे कि किसी फील्डर का नाम बताओ साउथ अफ्रीका का, तो सबसे पहले उठ के बोल देगा जॉन्टी रूट्स।
0: एब्सोल्युटली। और जॉन्टी बनने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है मेन क्रिकेट में, बट ऑफकोर्स फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ हम बैटिंग के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्मृति मानधना के बारे में बात करना चाहूंगा, 142 रन बना के शी इज द टॉप रन गेटर एट द मोमेंट। वैशाली, 2 consecutive 50s, you think that builds up a pressure? किसी प्लेयर पे एक प्रेशर होता है कि मैंने 250 बना दिए, वॉर एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई?
3: प्रेशर तो हर गेम में होता है, हर प्लेयर का होता है, और उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि साउथ अफ्रीका टीम जो खेल रही है उनके अगेंस्ट, उन पे ज़्यादा प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू स्मृति, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में है और उनको आउट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप, शेफाली की और स्मृति की पार्टनरशिप के बारे में हमेशा बात होती है और वो वहाँ पे स्टे भी करते हैं. उनको ये पार्टनरशिप बहुत 3000 कुछ समथिंग रन्स की भी है एंड वो पार्टनरशिप तोड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. और शेफाली वर्मा को जिस वे में स्मृति मंदना लास्ट मैच में खिला रही थी, उनको बोल बोल के कि आपको किस वे में रुकना है और कहाँ पर आपको स्टे करना है और कौन से बॉल को आपको किस वे में करना है, तो वो एक है ना एक्सपीरियंस प्लेयर कहलाता है और दिखता भी है अंदर से.
2: जी वैशाली, टॉप ऑर्डर की आपने बात करी लेकिन इंडिया हैव शफल्ड देयर बैटिंग ऑर्डर इन द मिडल ऑर्डर इन बोथ द मैचेस.

0: क्या इससे प्लेयर्स का रिदम बिगड़ता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर शुड हैव क्लियर रोल्स, स्टेबलाइजर हो, एक्सेलरेटर हो एंड देन फिनिशर. आर दोज रोल्स ओवरलैपिंग और क्या इससे प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग कोलैप्स कर सकती है?
1: प्रेशर तब आता है जब अगर पार्टनरशिप नहीं, आप नहीं तोड़ पाते तो वो सामने वाली बैटिंग, सामने वाली टीम पे प्रेशर आता है. लेकिन जहाँ पर हमारी पार्टनरशिप टूट गई तो दूसरा जो बैटर अंदर जाएगा उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है. और मिडल ऑर्डर की बात करूँ तो वहाँ पे यास्तिका भाटिया की जगह पे मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर हम दीप्ति शर्मा को ऊपर लेके आते तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लास्ट मैचेस में उन्होंने काफ़ी बेटर स्कोर किया है यास्तिका भाटिया को अगर हम कंपेरिजन करें तो.
2: राइट देन, दो चेंजेस जो हुए हैं, तस्मीन ब्रिट्स और दानी वैन निकर्क अंदर हैं और सुने लूज और काला रहने के मिस आउट कर रही हैं साउथ अफ्रीका के लिए. और ताज़ा खबर ये है कि दोनों ही देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मैदान के बीचों बीच आया है, और आईसीसी का ध्वज और उसकी दाईं तरफ भारत और बाईं तरफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और प्लेयर्स वहाँ पे तैयार हो रहे हैं नेशनल एंथम के लिए. बहुत जल्दी से हम यहाँ पे रविंदर जी आपसे मैं बड़ी जल्दी जानना चाहूँगा कि इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा है 3.98, साउथ अफ्रीका इज़ -1.10. ये कांटे की टक्कर स्पेशली जब हम 50 ओवर के फॉर्मेट में वो जो फाइनल हमने देखा था, साउथ अफ्रीका जानते हैं कि हमारे को एनआरआर भी मेंटेन करके रखना है.
3: देखिए एनआरआर का तो डिफरेंस रहेगा ही, और इंडिया अभी जो जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है. लेकिन ये देखिए कि इस ये जो आज इंडिया को उस रनरेट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर मैंने देखा है जो चेस करने वाले ज़्यादातर जीते हैं, काफ़ी जीते. और जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, लॉरा देख लिए, डर्कसन देख ली, इवन क्लर्क जो कि काफ़ी फॉर्म में चल रही है दोनों दोनों के दोनों मैचेस में, तो इंडिया को एक अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका गेंद कम. और उसी को क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये 20 ओवर्स के मैच में दो प्लेयर्स ही खड़े हो जाते हैं तो मैच को बराबर कर देते हैं.
0: जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. नमस्कार, जी प्रकाश जी अपना सवाल पूछें.
2: हेलो जी, अब मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
4: अरे आपकी आवाज सुन सुन के बड़ा हो रहा हूँ यार.
2: ये कॉम्प्लीमेंट था का? जी बताएं. जी जी बात कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस से थोड़ा सा उतना खुश नहीं है, एंड ऑफ को थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, होता है ना, टेंटेटिव होता है.
3: हरमनप्रीत यार, देखिए हरमनप्रीत एक अब इससे बड़ा क्या होगा, 200 का मैच खेल रही हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, और उनको अब उनको पता है कि किस मैच में क्या, किस मैच में अपने प्लेयर अपने गेम को किस लेवल पे लेके जाना है. तो उन और ये जो अचीवमेंट है वो अभी तक कोई मेंस भी नहीं पूरा कर पाया जो उन्होंने आज पूरा करके दिखाया. आप चिंता मत कीजिए, जो जरूरत पड़ेगी तो हरमनप्रीत आपको उसमें मैच को जिताते हुए मिलेंगे.
2: उथरा वेरी क्विकली बिकॉज वी विल हेड टुवर्ड्स ओल्ड ट्रैफर्ड, द रिकॉर्ड से दैट पीपल द टीम्स हु हैव चेज्ड हैव मच मोर percentage in winning the games. You think that's a fearing factor for India? They chose to bat after winning the toss. Anything to concern?
5: I think the kind of players we have, if they do the way, if they play their normal game, records don't really matter much for India, and we have the capacity and the capability to win whether we chase or we set the total. And if they set a high enough total, we have the bowling to restrict the opponent at any level that we want.
0: चलते चलते एक सवाल रविंदर, हरमन को हम लंबे टाइम से कप्तानी करते देख रहे हैं, बट डू यू थिंक शी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एज अ कैप्टन देन एवर बिफोर? जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट कर रही हैं, खासकर शफाली वर्मा को जिस तरह से पावर प्ले में यूज किया उन्होंने पिछले मैच में, इसके अलावा DRS को लेकर ODI वर्ल्ड कप में कई बार सवाल उठे थे उन पर, लेकिन अब उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस, वो अश्योरेंस दिख रहा है ऑन द फील्ड.
3: बिल्कुल देखिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको पास जो कॉन्फिडेंस आया है उनके पास वो वाकई देखने लायक बिल्कुल है। और अब वो मैच्योर क्रिकेटर हैं, पुराने मैं कहता काफ़ी इतने सालों से खेल रही हैं, अब इस समय वो मेरी इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं हो सकता। और इस समय इंडिया के पास जो हरमनप्रीत है वो एक एसेट है, इस समय वो कितना आगे इस समय चला पाएंगी और वो देखने वाली बात है। लेकिन हरमनप्रीत का जो वाकई आप सही कह रहे हो जो जो उनका डिसीजन ले जो ले टेकिंग जो एलिबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है। डीआरएस को पहले नहीं ले पाते थी लेकिन अब वो जो डीआरएस जो लेती हैं उसकी वाकई बहुत ही बड़ा रीज़न है
0: जी। और चलते चलते प्रेडिक्शंस उत्तरा आपसे शुरू करते हैं, कितना स्कोर है?
5: जीत का या स्कोर का?
0: बिल्कुल दोनों बताइए।
5: ये चाहते हैं कि इंडिया जीते, नॉट सरप्राइजिंग, बट आसान नहीं होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका इजी बिल्कुल नहीं आपको जीतने देगी। और टोटल आई थिंक क्लोज टू 200 जाना चाहिए
0: जी। वैशाली
1: 180 अराउंड।
0: रविंदर
3: 180 के आसपास सही रहे
0: जी बिल्कुल। तो अब देखते हैं हमारी कमेंट्री टीम आपके साथ जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: फर्स्ट बॉल 20।
7: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
8: नमस्कार, मैं संजय सरीन अपने साथी कमेंटेटर। किशन कुमार के साथ आज भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप का यह बहुत एक अहम मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर। कुछ देर पहले टॉस हुई और टॉस भारत ने जीती और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम आज इस प्रकार रहेगी, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जमेमा रेड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, स्मृति मेदाना, यशिका भाटिया, अरुणादिति रेड्डी। आज एक नया नाम जो इस टीम के साथ जुड़ा है वो है प्रेमा रावत, श्रीचरणी और नंदनी शर्मा। ये होंगे भारत के आज प्लेइंग 11। प्रेमा रावत को स्थान मिला है श्रियंका पाटिल की जगह जो चोटग्रस्त होकर बाहर गई हैं और आज प्रेमा रावत अपना मैच खेलेंगी, पहला मैच आईसीसी वर्ल्ड कप का ये इस 2026 का। और साउथ अफ्रीका की टीम अपने कप्तान लॉरा वॉल्वर्डाट के साथ टीम में उतरेंगी, मजीना कैप, तुमी शेखुखुने, सिनालो राफ्ता, क्लोटैशन नानकुले मलाबा, नंदनी डक्लाक, एनरी डक्सन, डैनवेन निकक और आयोबोंगा खाका जो उनकी बॉलर है तेज गेंदबाज, ये टीम में शामिल रहेंगी। और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में दोनों टीमें अब बिल्कुल सेट हैं। भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। टॉस भारत ने जीता जैसे मैंने आपको बताया। स्मृति मंदाना और क्रीज पर मौजूद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का ये अहम मैच खेला जाएगा। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना इस समय क्रीज पर हैं। शेफाली वर्मा का रैंक 7 है इस समय और स्मृति मंदाना का रैंक 7 है और शेफाली वर्मा 20 के अपने आईसीसी रैंकिंग में हैं। मार्जना कैप गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी, 123 मैच उन्होंने खेले हैं, 97 विकेट्स उनके नाम पर हैं और सामना करती हुई भारतीय बल्लेबाज एक अहम मैच में। किशन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अहम मैच में, भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच जो खेला जा रहा है। अपने सुनने वालों को मैं बता दूं, मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे स्टैटिस्टिशियन होंगे इस मैच में और भागवत सिंह रावत जो हमें बताते रहेंगे क्या क्या स्कोर इस मैच में बन रहा है। ओवर टू यू कृष्ण कुमार जी।
9: या थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स अक्रॉस द कंट्री। वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम दिस इन द आईसीसी T20 Women's World Cup, as important as you may probably want it to be, because remember that India and South Africa also played a bilateral recently, and also the ODI World Cup final, which India won. Here's the first ball. And Smithia starts off beautifully off the pads. It's been whipped away. Should get a couple for that. And India are on their way of the very first delivery. 2 for the loss. Now, in the context of this World Cup, also, this is a very, very important game, because India won both their games. Should India win over here, they get into the driver's seat. And a lovely, confident-looking stroke on the onside off her pads by Smriti Mandhana. It's a kind of a bread-and-butter shot for her. And that went down to mid-wicket for a couple. Once again, on the middle and leg, played defensively forward by Smriti. On the onside, no runs result. Now, it'll be interesting to see how India really approach this innings, because the power play is going to be very important, and they would certainly want to have a good start with a very good power play and then build it on from there on, because South Africa is a very good batting side, and they can really give it a good chase, a good total. Marizand Cup outside the off stump, a flowing off drive, good stop there at mid off inside the 30 yard, and no runs result. So after a couple of the very first delivery, two dots here from Marizand Cup. And as I was saying, you know, South Africa will want to win over here. Remember, they lost to Australia, and they lost by big margins. So if they lose again over here, they'll have a major problem in this tournament from here on. They've got Netherlands to play. They can beat them by a big margin, but Bangladesh are no pushovers, so it'll be very difficult for South Africa from there on. Once again, played on the onside for a single to the ball in the leg and middle stumps from Marizand Cup. And so it's so important, this game, that both the teams want to win and push forward for a place in the semi-final.
8: बात आपकी बिल्कुल ठीक है केके, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है जिसे हम आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अपना स्थान सेमीफाइनल में पूरा करने के लिए बहुत करीबी करीबी पहुंच जाएगी। और स्मृति और शिफाली की इस जोड़ी से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें हैं। शिफाली वर्मा पहली बार सामना करती हुई मैरिजन कैप का, चार गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं और इन चार गेंदों में भारत ने 3 रन बनाए हैं। मैरिजन कैप अपनी फील्ड को कुछ एडजस्ट करती हुई, बट क्योंकि एक बात बहुत ज़रूरी जो है कि ये जो ओपनिंग स्टैंड है हमारा भारतीय टीम का, इस पूरी भारतीय टीम का जो बेस है इस ओपनिंग स्टैंड से बनने वाला है।
9: Yeah, I mean, it'll be very important to see how Shefali goes about this. She likes to hit it over the top. Here's Marizand Cap into Shefali Verma. That's a good ball on the off and middle. And driven into the covers, a half push, half drive. And a good stop there by Laura Wulfar. But they get a couple for that. So Shefali Verma also, in the very first delivery, on her way to an India 5-0 loss. The first over, just the one delivery still to come from Marizand Cup. So controlled over here by Marizand Cup. Also interesting to see that 5 deliveries, Marizand Cup hasn't given the ball too much pace, because she knows that pace on the bat, and Shefali Verma will go after her if it's a length ball. Here is Marizand Cup into Shefali Verma on the pads. Once again, turn around the corner. That might well carry down to the boundary. The first 4 of the match coming up down to the square leg boundary for 4.
10: ये लगा आभा का चौका।
8: और शेफाली वर्मा के बल्ले से ये 4 रन जो निकलकर बाहर गया, और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला, और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं। और अच्छी शुरुआत, हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी, और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने, और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 3 मैच खेल चुका है, और तीन मैचों से छह अंक अर्जित कर चुका है भारत ने, दो मैच खेले। आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच, तीसरा मैच वो खेल रहे हैं। बांग्लादेश ने तीन मैच खेले हैं, चार अंक उन्होंने अर्जित किए। साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच, और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी तीन तीन मैच खेल चुके हैं। इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना, अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे। 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन। स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, और शेफाली वर्मन 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई, और बहुत ज़रूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद, और उसे पुश किया मिड ऑफ पर, जब तक फेन को फील्ड किया जाता, तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने, और इन इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची 4 के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
9: Yes, it'll be, now this is an interesting contest that we'll have to see. Shabnim Ismail to Shefali Verma, because compared to Marizan Kapp, Shabnim Ismail is giving more pace on the ball, and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnim Ismail also. She's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump, and that's been driven, square driven, that's gone down to the square cover boundary for 4.
10: ये लगा आभा का चौका,
8: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, और उसे पुश भर किया, टाइमिंग इसमें अच्छी थी, हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई, और ये 4 रन उनके बल्ले से निकलते हुए, और इन 4 रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर। 3 गेंदें अभी उन्होंने खेली हैं, और भारत 1.3 ओवर्स के बाद 14 के अपने स्कोर पर। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया, और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का, और स्कोर पहुंचा इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ, निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी, उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी, और भारत ने अपने इस खेमे में 3 स्पिनर्स को चुना हुआ है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप के बाहर, और से पुश भर किया, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
10: ये लगा आभा का चौका।
8: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से, अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट, और उनके बल्ले से निकला हुआ यह पहला चौका। स्मृति मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं, और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर, एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को।
11: इस क्रिकेट मैच का आगे का कोतिका हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 7:21 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
12: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
13: PLI है ना?
14: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
15: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
16: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
15: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
16: तो फिर सही नंबर,
15: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
16: आपने तो बचा लिया दीदी।
15: काम से नहीं।
17: RBI कहता है,
18: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
13: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा,
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से एक से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को PhD सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि
2: रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है।
0: कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने भ्रामरी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार भ्रामरी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में सम्पन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज FIH महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। ये प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल झाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भगोरिया नृत्य एवं घुमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कानवर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: भारत ने अपने 50 रन पूरे किए हैं 26 गेंदों का सामना करते हुए। भारत का स्कोर पहुंचा है 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 4.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। यशिका भाटिया खेल रही है 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर और शेफाली वर्मा 11 गेंदों पर 29। अगली गेंद यशिका भाटिया को हल्के से उसे पुश भर किया, उन्होंने कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया। अच्छी गेंदबाजी कर रही है कैप, क्योंकि कैप को ये मालूम है कि ये जो तीसरा ओवर उनके कप्तान ने उनको लगातार दिया है पावर प्ले में ही, इसलिए दिया गया है कि वो कुछ विकेट्स चटकाएं और बल्लेबाजी को

0: नियंत्रण में रखें, इसलिए आप देखें कि वो गेंद सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर बाहर कर रही है और थोड़ा सा अपनी लाइन को पीछा भी खींच रही है।
1: From my of case, here's Marizan Cap this time to Yasika Bhatia. Now, what is Marizan Cap trying to do over here? Bowled a similar kind of delivery, which got rid of Smriti Mandhana, wide of the crease into the left-hander. And Marizan Cap, of course, got the success of Smriti Mandhana, but she's trying something similar with Yasika Bhatia. And the one that was a little bit over-pitched went down the ground for a four earlier on in this over. Marizan Cap. From by the crease to Yasika Bhatia outside the off stump and completely misses contact. Once again, one of the things that Marizan Cap is trying definitely repeatedly is not give any pace on the ball. And this power play is going to be very, very important. 52 already. India will probably aim to get somewhere around 65, which means there'll be an excellent power play, even though they've got rid of Smriti Mandhana. But still, it'll be a very good power play if India can get to somewhere around 65 or so. Wide of the crease, last ball of Cap's over, and she tries to scoop it over to Yasika Bhatia, almost like Smriti Mandhana, but this time doesn't make contact and through to the wicketkeepers. Five overs bowled, India with a run rate of 10.4, 52 for one.
0: 10.4 के औसत के साथ ये स्कोर बन रहा है 52 अभी तक भारत का स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं आखिरी गेंद को अगर आप देखें तो मैरिजन कॉप ने सीधी वही गेंद डाली थी जिस गेंद पर उन्हें यस विकेट मिला था स्मृति मांदना का और इस बार यशिका भाटिया भी पूरी तरह से चकमा खा गई सेम वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई और भाग्य का बहुत साथ रहा उनके साथ कि गेंद इस समय इस बार विकेट को छोड़ रही थी विकेट पर नहीं थी हालांकि अगर विकेट पर होती तो वो भी क्लीन बोल्ड हो जाती पूरी तरह से बीट हो गई थी स्ट्रोक लगाने से पहले उन्होंने जैसे मन बना लिया था कि मैं स्कूप जरूर करूंगी लेकिन इस स्कूप्स का फायदा नहीं हो सका इस्माइल अपना अगला ओवर लेकर आती हुई शबनम इस्माइल इस पावर प्ले का छठा और बहुत अहम हो शिफाली वर्मा उनके सामने राइट आर्म ओवर द स्टंप ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी हल्का सा उसे पुश किया और उसे खुद ही गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया बिना किसी नुकसान के बिना किसी स्कोर पर भारत का स्कोर इस समय 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 10.06 की औसत से रन बन रहे हैं और अभी तक भारत ने जो विकेट गवाया है वो विकेट स्मृति मांदना का है जो स्कूप लगाने के चक्कर में मैरिजन कैप की शिकार हुई थी उनके दूसरे ओवर में और अगली गेंद उसे पुश भर किया मिड ऑन पर फील्ड किया गया गेंद को बल्लेबाजों ने अपने अपने कदम अपनी क्रीज पर जमाए रखे ताकि कोई नुकसान ना हो सके 5.2 ओवर्स का गेम जो अभी तक हुआ है उसमें 52 रन बने हैं भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से 9.75 की औसत पे और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है
1: या आई मीन शब्दी बिस्मिल ऑल ओवर एक्सपीरियंस नोस दैट शिफाली विल गो आफ्टर Short and led outside the off-spin. That's been driven beautifully into the covers. There's a sweeper cover there. It will be cut off. I like this thinking. They go through for two. That's good running. One was converted to two. And that's a very important aspect of game when you run between the wickets so very beautifully. Now, if you look at the analysis, in her first over, she gave much more pace on the ball than Shabnim Ismail. This time, the previous delivery was just 71 clicks. This is just 73 clicks. She certainly cut pace on the ball. 71 and 73 miles per hour, ensuring that she doesn't give pace on the ball in the last power play over. Here's Shabnim Ismail into Shefali Varma. Short pitch bouncer by way of variation. This is what experience is all about. And that's why I was saying earlier on in this over, I was a little bit surprised that after the first over, yes, she went for runs. She was taken away and Chloe Tryon came in. And Chloe Tryon was hammered all around the park. That's a lovely bouncer. When you can bowl a bouncer like that beautifully between the shoulder and the head of the batter, you have the batter in all sorts of trouble. And that's what happened to Shefali Varma over there.
0: आप ये देखिए इस बॉल को जो शबनम इस्माइल ने जो गेंद करी थी वो गेंद बिल्कुल शॉर्ट पिच भी नहीं थी शॉर्ट गेंद थी लेकिन उसका डायरेक्शन जो था वो लेग स्टंप कर बैट्समैन को फॉलो करता हुआ जा रहा था इसी बीच कुछ अपील भी करी गई है प्लेयर्स की तरफ से, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरफ से, और अंपायर ने इसका रिव्यू मांगा है। ये शायद कॉट बिहाइंड का उन्होंने कॉट बिहाइंड का रिव्यू मांगा है। शिफाली वर्मा अभी तक 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। थर्ड अंपायर से निर्णय मांगने के लिए अंपायर ने अभी तक जो थर्ड अंपायर अपने स्क्रीन्स को देखकर डिसीजन देती हुई, हालांकि ओरिजिनल जो सॉफ्ट डिसीजन अंपायर की तरफ से था वो नॉट आउट था, लेकिन गेंद दूर से देखने से ऐसे लग रहा था कि जैसे ग्लव्स को आसपास उसको छू कर जा रही है, और शेफाली वर्मा को मालूम था और ये आउट, आउट का निर्णय दिया गया है थर्ड अंपायर के द्वारा, और शेफाली वर्मा 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट होकर वापस क्रीज पर जाती हुई। भारत 54 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, और ये आप देखिए कि के शबनम इस्माइल ने अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है, व्हाट ही हैज शी हैज लर्नड अ पास फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने बॉल को इतना शॉर्ट किया कि मजबूर कर दिया शेफाली वर्मा को कि वो उस बॉल को छोड़े या खेले, लेकिन नतीजा ये हुआ जाते जाते बॉल ग्लव्स को छोगी और सीधा विकेट कीपर के हाथ में।
1: Absolutely. I mean, she had Shefali in two minds over there. And also, the ball probably didn't rise up as much as Shefali thought. But that was excellent thinking. We have not seen the short pitch bouncer so far in this game. So, and that's why Shabnam Ismail deserves full marks for that particular delivery. And that was also a snorter that was well-directed bouncer. And as she tried to heave away, and half minds whether should I pull it or heave away, just that touch of the gloves and the faintest of tickles onto the gloves, and that was enough for Shefali Verma to be dismissed. Again, the South Africans have clawed their way back into this game. When Shefali Verma was going after them, they've got two wickets, and this is a very, very important wicket. 31 of 15 at more than a strike rate of 200. She was going very well. Now India have lost two wickets and South Africa have clawed their way back into this game, certainly with two important wickets. The openers dismissed. Remember, they had a 100 plus partnership in the game against Netherlands last time round. Smriti is back, Shefali is back, and South Africa will feel very good about that.
0: KK, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 5.0 अभी तक चार ओवर्स का जो गेम हुआ है, यानी कि पार प्ले की अभी दो गेंदें बची हैं, और साउथ अफ्रीका ने भारत की जो ओपनिंग जोड़ी है उसे वापस पवेलियन भेज दिया है। स्मृति मानधना आउट होकर वापस जा चुकी हैं, और अभी अभी शेफाली वर्मा आउट होकर वापस गई हैं, जो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट इन दोनों बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरीज बनाई थी, अर्धशतक दोनों बल्लेबाजों ने बनाए थे, इस बार मौका नहीं मिला। हालांकि शेफाली वर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, टाइमिंग अच्छा कर रही थी, स्ट्रोक भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन ये दोहरा मन जिसे बोलते हैं ना, हमेशा नुकसान पहुंचाता है, यही इस बार शेफाली वर्मा के साथ हुआ। पहले वो ये खेल चाह रही थी कि इस बॉल को खेला जाए, लेकिन
2: द क्रिकेट कमेंट्री विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट फीफा अपडेट।
3: वर्ल्ड फुटबॉल अपडेट फ्रॉम द बीबीसी।
4: हेलो, आई एम सोफिया हार्टली एट द बीबीसी स्पोर्ट्स सेंटर विद द लेटेस्ट वर्ल्ड कप न्यूज। Germany have sealed their spot in the knockout stages of the World Cup after coming from behind to beat Ivory Coast 2-1. Substitute Dennis Undaf emerged as Germany's hero with a dramatic stoppage time winner.
5: It's always good to win the first game and then the second game. I think we showed great character today. And yeah, if I say we want to be out in the next round, I think it's not the way a football player has to be. We want to achieve the most, and the most is the title, and we will do everything for it.
4: The Netherlands cruised past Sweden 5-1 to all but guarantee a place in the last 32. All six goals were scored by players in the Premier League. Here's the Sweden head coach, Graham Potter.
6: It was a big game, a big occasion, and I think with a young, sort of developing team, maybe that was a challenge for us. But nevertheless, I thought the Netherlands played really well. I thought they attacked well, they were clean with everything they did, so they made it difficult for us.
4: Meanwhile, Japan are joint top with the Netherlands in their group after a 4-0 win over Tunisia. Finally, Curaçao claimed their first ever World Cup point in a goalless draw with Ecuador. Curaçao goalkeeper Eloy Room produced a record-equalling performance, making 15 saves to keep his country level. It was a performance that inspired Room's country to their biggest ever result.
7: I heard it was also another record from really long ago, so yeah, I'm proud of that. For me as a goalkeeper, this is almost the perfect game, you know. So I'm really proud on the team also, because again, we did it with the team. I make the saves, but we fought as a team, also the players who came in. But yeah, I think I need a statue in Curaçao, I think now.
4: And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
3: World Football Update from the BBC.
0: अभी आई है, एक गेंद का उन्होंने सामना किया और एक ही रन उनके बल्ले से अभी तक निकला है.
1: Mohammad Ashraruddin has shared some interesting figures with us. India in power play versus Pakistan, 38 for 2. Versus Netherlands, 59 for no loss. Versus South Africa, also 59 in terms of runs, good. But they've lost the two openers. That's Smriti Mandhana and Shefali Varma. And that's huge. So South Africa have really gotten back into this game. Had India gotten to 60-65 with the loss of one wicket or no loss, that would have been good. But two important wickets that South Africa have gained have made it relatively even, Stevens. And it's got to be a partnership now that has to be weaved between Jemima Rodrigues and Yastika Bhatia here. And first ball of a new over started by Malaba outside the off stump. And we all know Malaba doesn't give any pace on the ball at all. And if you've got to score off her, you've got to create the pace, you've got to create the power, and that's the only way you're going to get runs. The first ball, a controlled drive down to sweeper cover, and that gets one more to Jemima Rodrigues, who's now 2, and India are 60 for 2. Yastika Bhatia 10 of 8. Malaba to Yastika Bhatia from round the wicket. That's in the off and middle stump. Not much turn on that one. And that's played gently forward into short mid wicket by Yastika Bhatia. And that score remains for India 60 for 2. This is going to be a good contest. Malaba round the wicket. Short in length outside the off stump. That's been beautifully steered. A square drive down to square third bin boundary for 4.
8: Ye laga abha ka choka.
0: और इसे खूबसूरती के साथ गेंद को सिर्फ दिशा भर दी उन्होंने स्क्वायर बाउंड्री के बाहर और डीप पॉइंट की तरफ इसे मोड़ा और ये 4 रन उनके बल्ले से निकलते हुए खूबसूरत स्ट्रोक यसिका भाटिया के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर पहुंचती हुई यसिका. अगली गेंद लेग स्टंप पर थी और उसे भी मोड़ा गया है और स्क्वायर बाउंड्री पर बहुत अच्छी फील्डिंग. और जब तक फील्ड करके थ्रो किया गया दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले बहुत अच्छी फील्डिंग करेगी क्योंकि ये स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर आर दो रन लेना चाहती थी लेकिन दो रन भी नहीं लेने दिए.
1: Yeah, I mean, but that she's pitching it too short. Yeah. That's what's happening for Malaba. Now, if you're going to pitch it too short, you're giving the batter enough time to pick their spot. Here's Malaba. This time, holds the ball in the air for a little longer than the previous delivery. I won't say that was a length delivery. Just holds it back. And concedes just a single as the ball is played on the onside. This is what she'll have to do. Toss the ball up a little more. Give the ball more air time. Try to see if it grips the surface. If there's anything in the surface for her to get turned. Too early days in this game. Next delivery, one well tossed up. And that's driven straight down to extra cover where Laura Wolfart completes the fielding. 7 overs bowled. And India 66 for 2 winning the toss. Batting first. Now this is going to be a very interesting contest because Malaba doesn't give any pace on the ball. If she's going to toss it up like she did in the last delivery of that over, when she got clobbered for 2 boundaries, she pitched it short. When you pitch it short, you give the batter enough time and also they can pick their spots. That's what happened with the Indian batters. But the last ball was good. If she gives it more air time and also gets that length correctly, this will be a good contest as well.
0: आप KK एक बात को देखें कि उन्होंने आखिरी गेंद जो थी उसे हवा दी और गेंद को थोड़ा सा आगे टिप्पा दिया. बल्लेबाज को मौका ही नहीं दिया कि वो अपना बैट खोल सके. डिफेंसिव प्ले करने के लिए मजबूर किया गया. मलाबा जो है एक विश्व विख्यात स्पिनर है और साउथ अफ्रीका की टीम की जो रीढ़ की हड्डी है स्पिन की, उसकी एक एक एक ऐसा अंक है, वो एक ऐसा मनका है जिस पर पूरी साउथ अफ्रीका टीम की स्पिन मौजूद है. और अगर आप आंकड़ों पर जाना चाहें तो भारत ने जो अपने पावर प्ले में 59 रन बनाए थे 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, 13 डॉट बॉल्स उनमें खेली गई थी. यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने छोर बदलने की जो कला है वो अब पूरी तरह सीख ली है और अपने अपने छोर जल्दी से बदलते रहते हैं. खाका को इनवाइट किया गया है गेंदबाजी के लिए चौथे बॉलर के रूप में, पांचवें बॉलर के रूप में उन्हें राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया जमीमा रेडरिक्स ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉट मिड ऑन पर तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए और इस एक रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 67 रन। दो खिलाड़ी के नुकसान पर 9.35 की औसत से भारतीय बल्लेबाज अभी अपने स्कोर बना रहे हैं। दो विकेट जो अभी तक आउट हुई हैं, स्मृति मानना 17 पे व्यक्तिगत योग पर और शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ 31 रन बनाए थे अपने बल्ले से आउट होने से पहले। और इस समय यशिका भाटिया एक अच्छी पारी खेलती हुई, इस पारी में जोर कम है और टाइमिंग बहुत

0: अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है 15 के अपने विक्रय करियर पर। खाका अपनी गेंदबाजी के साथ इस समय तैयार, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंद कर रही है अपने ओवर की दूसरी गेंद के साथ साथ 7.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 67 रन 2 विकेट, राइट आर्म ओवर का स्टंप्स। एक जोरदार अपील और ये आउट ऑफ और लेग पर, ये ऑफ और मिडल पर ये गेंद थी और इसे स्क्वायर खेलना चाहती थी लेकिन नाकामयाब रही और विकेट्स के सामने थी। जोरदार अपील करी गई और आउट करार दिया गया लेकिन यशिका भाटिया ने अपना थर्ड अंपायर से अपने निर्णय को पुनः विचार के लिए अंपायर को बोला और ये निर्णय अब थर्ड अंपायर के पास पहुंचा है कि क्या इस गेंद ने बल्ले को छुआ था पैड्स तक पहुंचने से पहले या नहीं, क्या वो क्रीज पर थी या गेंद बाहर थी, ये सब कुछ थर्ड अंपायर अब निर्णय लेंगी। लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल जिसे बोलते हैं, अंपायर ऑन ग्राउंड जो अंपायर थे उन्होंने आउट करार दिया यशिका भाटिया को और यशिका भाटिया इस समय खेल रही हैं 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर और भारत का स्कोर है 67 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। क्या ये आउट है या नहीं इसका निर्णय अब थर्ड अंपायर लेगी। भारत 67 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 9.35 का औसत है भारतीय बल्लेबाजों का अभी तक।
1: What be interesting is the way the ball pitch. Oh, it's pitched in line. That was what I wanted to see. And the wickets hitting, and that will be one more certainly down for India because the only point of interest once the ball did not make contact with the bat was the bowler bowling over the wicket. Did that ball pitch outside the leg somehow in line? The moment it pitched in line, it was curtains for Yastika Bhatia. She had a good innings over here, 15. She got a start, hasn't managed to convert it. Out LBW to Ayabonga Khaka. Once again, that change has worked. And South Africa get their third wicket. And India now, with 3 wickets down, in terms of run rate, looks good, 9.14. But remember, they've lost 3 top of their batters.
0: That's
1: Smriti Mandhana and Shefali Verma, Yastika Bhatia back in the dugout. And that is good for South Africa.
0: टीवी अंपायर थी जिन्होंने इन्हें आउट करार दिया, कांडासा धल्ला बोडे। ये वेस्टइंडीज की 39 वर्षीय अंपायर हैं और अपना 8वां मैच है एज टीवी अंपायर जिन्होंने अभी अभी यशिका भाटिया को आउट करार दिया। भारत 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 67 रन अभी तक बना चुका है बोर्ड पर, 9.14 की औसत से ये रन बन रहे हैं। यशिका भाटिया अभी अभी LBW आउट होकर वापस जाती हुई, मलाबा की गेंद पर 15 रन उन्होंने बनाए थे और जिमीवा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 4 पर। शुरुआत भारत की बहुत अच्छी थी, अच्छी बल्लेबाजी हुई, अच्छा स्कोर बना लेकिन बहुत रेगुलर इंटरवल्स पर भारत की विकेट्स गिरती हुई और भारत की टॉप 3 बल्लेबाजे अब आउट होकर वापस जाती हुई। और हरमनप्रीत कौर जो आज अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है, विश्व की पहली खिलाड़ी जिन्होंने 200 मैच खेलने का ये कीर्तिमान अपने नाम पर अर्जित किया है।
1: खाका जो हरमनप्रीत कौर प्लेस विद एन एंगल बैट डाउन टू पॉइंट, दे गो क्रॉस फॉर 1। जेमी मरोड्रिक्स आस्क हरमनप्रीत इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर सेकंड व्हिच वाज नॉट देयर रियली, एंड सो हरमनप्रीत ओपन्स हर account with the very first delivery that she's faced. Always good to be off the mark. 200th T20 international for the Indian captain. What a moment, historic moment, as she walked in to Old Trafford, Manchester. Here is Ayabonga Khaka over the wicket this time, and that's been played gently on the leg and middle stumps, played down to mid on inside the 30 yard to Shabnim Ismail, and the score for India remains 68 for 3. So the current run rate down to 8.87. Now that will happen when you've taken wickets, you've gone to peg back the opposition. India have lost wickets, they can ill afford to lose one more over here. They'll want to weave a partnership. As here is Ayabonga Khaka. Oh, that's a good ball on the off stump. Now when you go to bowl that length and that line, there you are, Shabnim Ismail saying well bowled. And so is also a lot of other South African players, de Klerk and others, applauding Ayabonga Khaka, because when you try to bowl on that off stump, the corridor of uncertainty, no width whatsoever, also no pace on the ball, that is good bowling. Just the 2 runs. Will Ayabonga Khaka end this over well? The run rate, which was over 10.5, is now 8.7. Khaka this time to Jemima Rodrigues, rolls a wrist on that one to bowl on the off and middle, turns it round जो वेकिन शॉर्ट विद विकेट गोज अक्रॉस फॉर अ सिंगल 8 ओवर्स बॉल्ड इंडिया 69 फॉर 3 एट अ रन रेट ऑफ 8.6
0: भारत 69 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.63 की औसत से ये रन बन रहे हैं और मोहम्मद ईशा उदाइन जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने बहुत एक अच्छी जो जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए दी है कि हरमनप्रीत कौर जैसे कि हमने पहले बताया अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है और वो पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 200 से ज़्यादा या 200वां मैच खेल रही हैं और इसके अलावा 200 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने टेस्ट ODI और T20 में एज कैप्टन कप्तान के रूप में भी उन्होंने ये उनका 200वां मैच है और वो दुनिया की सिर्फ ये दूसरी वुमेन प्लेयर हैं आफ्टर चार्ली एडवर्ड्स जिन्होंने 220 मैच खेले हैं। चार्ली एडवर्ड्स ने इंग्लैंड की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 220 मैचों में कैप्टनशिप की है और अभी तक हरमनप्रीत कौर का ये 200वां इंटरनेशनल मैच है टेस्ट ODIs और T20 इंटरनेशनल मैचेस को मिलाकर।
1: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर शब्दी मिसबाइल दिस टाइम टू जमीमा रॉड्रिक्स एंड दैट्स प्लेड ऑन द ऑफ साइड एंड अ डॉट बॉल इनिशियली जमीमा रॉड्रिक्स वांटिंग अ सिंगल बट राइटली सेंट बैक बाय अ कैप्टन दे नो दैट द लास्ट थिंग दैट इंडिया वांट हियर इज अ रन आउट 69 फॉर 3 and they need to weave a partnership together. Remember, the first partnership between Smriti and Shefali was 30. The second between Yastika and Shefali was 24. And Yastika and Jemima just 13. So what South Africans have done over here is taken wickets at regular intervals just when India threatened a big partnership. Ismail this time, that's a much better delivery from outside the off, some nipping back into the right-hander. And that's been played on the onside by Jimmy Marotics. One more dot ball. Now slowly these dot balls would add to the pressure. But what India must definitely do over here is weave a partnership because one definitely knows that if Harmanpreet Kaur takes it deep beyond over number 16 or 17 or even for that matter beyond the 15th over, she's got the ability to end with a flourish. Here's the next one that's played uppishly over the heads of the infield at cover from outside the off stump by Jemima down to sweep a cover for just a single. That single will take India into the 70 for 3.
0: Bharat ka score 70 run 3 khiladi ke nuksan par 8.24 ki ausat se ye run bante hue aur Bharat ne pichli 12 gendon par कोई बाउंड्री नहीं स्कोर करी है इसलिए ये जो स्कोर है स्कोर रेट है वो नीचे आता हुआ 10 से 9 से अब 8.24 पर और आखिरी विकेट जो गिरी थी 67 के योग पर वो थी यशिका भाटिया की और शबनम इस्माइल अपना पूरा का पूरा जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो झोंकती हुई अपनी गेंदबाजी पर अपने तीसरे ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप पर गेंद उसे हल्का सा पुश किया और जब तक खुद वापस दौड़कर पहुंचती हुई शबनम इस्माइल बल्लेबाजों के पास मुस्तैदी से आंखों ही आंखों में इशारा किया हरमनप्रीत ने और जमीमा रॉड्रिक्स ने अपने अपने छोर बदले और भारत का स्कोर 8.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद पहुंचता हुआ 71 रन तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर बहुत ही एक मुस्तैदी से चुराया हुआ ये रन आंखों से इशारा किया और फिर अपने अपने छोर बदले। हालांकि ये कॉल जमीमा रॉड्रिक्स की थी क्योंकि सामने से वो देख रही थी बल्लेबाज को और उस कॉल को हरमनप्रीत ने हाँ बोली और दोनों ने अपने अपने छोर बदले। भारत 71 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद और शबनम इस्माइल अपने ओवर की पांचवी गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया। स्केयर लेग पर खड़े फील्डर ने भागकर इस गेंद को पकड़ा और पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर इस एक रन के साथ 72 पर पहुंचा। 8.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 72 तीन रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं 2 के अपने व्यक्तिगत योग कर जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। और अगर आप बॉलिंग को देखें तो तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक ही स्पीड के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए। अगली गेंद ऑफ स्टंप लेग स्टंप पर थी और उसे हल्की सी दिशा दी स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के बाद, और इस एक रन से स्कोर पहुंचा 73 पर, तीन खिलाड़ी के नुकसान पर। 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 8.11 की औसत से अभी जो स्कोर बन रहा है

0: जिसमें हरमनप्रीत के 3 रन हैं, जिमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं, जो 3 विकेट्स गिनी हैं अभी तक वो स्मृति मांदना 17 के अपने व्यक्तिगत योग पर, शिफाली वर्मा 31 की अपनी तेज तरार पारी को समाप्त किया था उन्होंने, और यशिका भाटिया जो अपनी टाइमिंग से आज अच्छी बल्लेबाजी दिखा रही थी 15 के योग पर LBW करार दी गई।
1: One of the reasons why India elected to bat first, we believe, after winning the toss, is because the wicket will turn in the second for the second team batting, and India have got the spin attack, but they need to put a good amount of total batting first on the board for the spinners to have some purchase and come to the party. They also having Prema Rawat, the leg spinner, 24-year-old, who is making a debut, and she's the 94th player to play T20s for India. Malaba, meanwhile, starts a fresh over. Round the wicket, once again, no pace on that one at all. Just a hint of turn, but not much on the leg and middle stump. Patted back along the wicket by Harmanpreet Kaur. 3 or 4 she is. She won't be in a hurry. She knows that if she spends enough time there, she can end with a flourish, as I said earlier. Jimima is 7 of 11. Malaba, short in length outside the off stump and waits for it. And then square cuts it away down to backward point for a couple, and that couple will take Harmanpreet to 5 now, and India are 75 for 3. So, you know, one of the things that managed to ensure that Shabnim Ismail got wickets first over, she gave pace on the ball around 120 as we watch Malaba once again. Well tossed up this time on the leg and middle stumps, waits for it, does Jemima and turn it around the corner. Look at that. You know, one thing interesting, no pace on the ball at all. The batter has to wait for it and keep on waiting, and then the ball comes to the batter and try to turn, use the wrist and turn it around the corner. So that's what's Malaba's secret.
0: देखिए मलाबा की अभी जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत धीमे करे अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है उन्होंने 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: लवली स्ट्रोक देयर फ्रॉम जिमीमा रॉड्रिक्स, दैट वाज इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गॉट राइट अंडर इट एंड देयर वाज, शी हैड सीन द फील्ड ओवर देयर, नोबडी रियली इन दैट वाइड लॉन्ग ऑफ पोजीशन, पिक्ड अ स्पॉट एंड ब्यूटीफुली प्लेड इट, अ लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव down to the wide log of boundary for 4. That will be a boundary after 18 balls. That tells you what's been happening in the last 3 overs or so. After getting 3 wickets, the South Africans have clawed their way back, putting the Indian batters under a tight leash. But the Indian batters out there, experienced, know very well what is needed is spend a few overs out there and then take the attack back to the South African bowlers. Malaba this time on the leg and middle stumps, ball straightens up after pitching, waits for it as Jemima nicely turns it round the corner with a wrist down to backward square leg for a single. And now India 81 for 3. 67 is when the last wicket fell, so these two have added 14 already, and India's current run rate is 8.24. Last ball, Malaba's over, well tossed up, and Harmanpreet is content with a controlled drive down to long on. So, 9 runs coming off the Malaba over. Halfway mark at the end of 10 overs, India 82 for 3.
0: 8.2 की औसत से ये जो बल्लेबाजी हो रही है, 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 82 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर, हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं 7 के अपने विकेट योग पर, और जमीमा रॉड्रिक्स ने अभी अभी जो 18 गेंदों के बाद 19वीं गेंद पर चौका लगाया, उस चौके की बदौलत 12 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं, और 15 रन की जो भागीदारी है इन दोनों के बीच में अभी तक हो चुकी है। 3 खिलाड़ी जो भारतीय टीम ने खोए हैं अभी तक, पहली विकेट स्मृति मांदना 17 रन पर 30 रन की भागीदारी हुई थी पहली विकेट के लिए, दूसरी विकेट शिफाली वर्मा 31 रन पर आउट हुई, 24 रन की भागीदारी हुई थी दूसरी विकेट के लिए, और तीसरी विकेट यशिका भाटिया के रूप में आउट हुई, यशिका भाटिया 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, और 13 रन की भागीदारी हुई थी तीसरी विकेट के लिए, 15 रन की भागीदारी अभी तक इन जिमीमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर के बीच में हो चुकी है, और भारत अभी 82 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर स्कोर है अभी भारत का। ये जो टूर्नामेंट ICC वर्ल्ड्स वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खेला जा रहा है, भारत आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेलता हुआ, अगले ओवर के साथ डी क्लार्क को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए।

0: लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। डी क्लार्क तेज गेंदबाजी भी करती हैं और बल्ले से भी तेज रन बनाने की यो हमेशा कोशिश में रहती हैं। 83 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत ने पहली गेंद पर एक रन चुनाया। अब जेमिमा रॉड्रिक्स से सामना करने वाली है डी क्लार्क की अगली गेंद का। भारत 83 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 10.1 ओवर की समाप्ति के बाद 8.16 की औसत से ये रन बनते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स और ये उठाया है और ये आउट। बहुत ही आसान सा कैच, बॉलर ने खुद बताया अपनी गेंद पर और डी क्लार्क ने एक वो विकेट चटकाई है कि जिससे एक जो सबसे जरूरी भागीदारी बनने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो दोनों बल्लेबाज हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिक्स जिन्हें ये बोला जाता है कि ये बहुत लंबी पारी खेलने की क्षमता अपने पास रखते हैं, उसे सिर्फ मोड़ने की कोशिश करी गई थी लेग स्टंप की तरफ, बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा ही कैच अपनी ही गेंद पर डी क्लार्क ने पकड़ा और भारत ने जेमिमा रॉड्रिक्स के रूप में अपना चौथा विकेट गवाया। भारत 83 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 10.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: नॉटी डी क्लार्क स्टार्टिंग दैट ओवर विद द फर्स्ट डिलीवरी दैट वाज बोल्ड जस्ट ओवर 101 clicks and very clearly the South Africans have understood don't keep pace on the ball, that's the way to get wickets. We saw Shabnam Ismail doing that in the second and third over, Nadine de Klerk starting exactly in the same manner and that ball to Jemima Rodrigues coming through very slowly off the wicket as well, deliberately bowled that way and the bat went through and that's why the ball ballooned up in the air for an easy return catch for de Klerk on a follow through. Now India in a spot of bother for sure. 83 for 4. Smriti Mandhana, Shefali Verma, Yastika Bhatia, Jemima Rodrigues all be back in the hut. I presume Deepti Sharma will be replacing Jemima Rodrigues out there in the middle. She's got all the experience. But after that will be Richa Ghosh. But Richa Ghosh can do a lot of tonking. But she's good when she comes in a little later on the leg in middle. The first delivery from Nadine de Klerk to Deepti Sharma. And she manages to roll a wrist on that one, playing down to mid-wicket for a single. She's off the mark in the very first delivery. As we watch that delivery, that Nadine de Klerk ball to Jemima Rodrigues again in the monitor, and we see that it bowled so slowly, and Jemima Rodrigues went through with the stroke. The ball came in later, took the top half of the bat, ballooned in the air, and was a good return catch. Yes. Nadine de Klerk this time to Harmanpreet Kaur, and that's once again a good delivery on the leg and middle stumps, and Kaur plays it back along the wicket, no runs result, and they are pumped up, the South Africans, after getting these four wickets. They know they are back in the game big time over here. If they get one more wicket over here, it's only Richa Ghosh, because after that India have got Prema Rawat, Sri Charani and Nandini Arundhati ready, so not much of batting to come. So this pair has a huge responsibility and there's a lot of cricket to be played in this Indian batting inning. Just 10.4 overs. Oh, just the two runs and a wicket. De Klerk tries to go for the block hole, slower through the air once again, and played on the onside by Harmanpreet Kaur for a single. The captain certainly realizes for sure that everything will revolve round over here, and I'm sure from here on Harmanpreet Kaur will want to take it very deep to the very end and play till the very end.
0: De Klerk, Nandini Klerk जो गेंदबाजी कर रही हैं, 26 वर्षीय नंदिनी क्लार्क एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका की टीम के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी उन्हें गेंदबाजी के लिए टीम की तरफ से निमंत्रण दिया जाता है हमेशा विकेट चटकाने के लिए वो तैयार रहती हैं। गेंदबाज जो गोल्डन आर्म के साथ है, अगली गेंद उसे हल्का सा मोड़ा दीप्ति शर्मा ने, जब तक गेंद को डीप मिड विकेट तक फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने दो रन चुराए और इन दो रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 87 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 11 ओवर्स की समाप्ति के बाद 7.91 के रन रेट से अभी भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है। नन्नी डी क्लार्क ने पहले ओवर में 5 रन दिए, लेकिन इन 5 रनों के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती विकेट जेमिमा रॉड्रिक्स के रूप में लिया, जिन्हें उन्हें खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर कैच किया। और क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि भारतीय टीम अब स्टेट ऑफ बॉदर में हल्का सा महसूस कर रही है, क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग प्लेयर है जो अभी गेंदबाजी कर रहा है दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर के रूप में। इसके बाद ऋचा घोष अच्छी

0: बल्लेबाजी करती हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन इन दोनों को अब कुछ लंबा खेलना होगा ताकि एक अच्छी साझेदारी करी जाए.
1: Without doubt, they have to take it deep. Short and led the first ball of Chloe Trans over. That's been squared away. A good stop and it yields a diving fielder there down to the boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: And going over the boundary ropes for four.
0: हरमनप्रीत कौर से के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचता हुआ 91. कट किया था इस गेंद को, हालांकि डीप पॉइंट पर से फील्ड करने की भरपूर कोशिश करी गई, हाथ भी लगा, लेकिन गेंद छटक कर सीमा रेखा से बाहर पहुंची हुई. हरमनप्रीत का स्कोर पहुंचा 13 पर, भारत 91 रन पर. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद नीची थोड़ी सी रहती हुई और बहुत ही सूझबूझ के साथ उस गेंद को वहीं दबा दिया हरमनप्रीत कौर ने. उनके दिमाग में इस समय चल रहा होगा कि मुझे कुछ लंबा खेलना होगा. टीम की कप्तान भी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करती हैं. ट्रायन अपने ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप पर, और ये एक स्पेशल फील्ड शॉट मिड विकेट के रूप में लगाया गया है ताकि जो सिंगल्स हैं जो चुराने की कोशिश करती हैं हरमनप्रीत कौर हमेशा, उसे भी रोक लिया जाए इस फील्डर के रूप में 91 खिलाड़ी के नुकसान पर. ट्रायन की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा उसे पुश किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए, और 92 पर 4 11.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद.
1: गिवन द फैक्ट इन वे इन व्हिच मलाबा एज वेल एज मरिजन काप एंड शब्दी मिज़मेल बोल्ड सो वेरी वेल, दिस इज गुड थिंकिंग हियर बाय लॉरा वुल्फ फॉर गेटिंग इन क्लोई ट्रायन, बिकॉज प्रोबब्ली शी इज द बॉलर दैट द इंडियंस विल गो आफ्टर to step up the run rate, which was once over 11.5, now dropped to 7.9. You know, you can't always have 11.5, but when you've lost four wickets, here is first the next delivery from Chloe Trant over the wicket, this time to Deepti Sharma on the off and middle, not much turn, played away back along the track and no runs result. So after that first boundary, in the very first delivery, she's come back well here, Chloe Trant. The point is, will she end it well? And so what I was talking about is...
3: श्रोताओ, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल जारी रहेगा 8:35 से. ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष व्यापार में सुगमता.
4: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
5: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashwani.
6: Thank you.
5: So Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में. सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है. सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप 2 हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
6: जी बिल्कुल सोनू जी, आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस, विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
5: एब्सोल्युटली। सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance heavy system to a facilitation driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
7: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed as suspicion.
5: Yes.
7: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
5: Mm-hmm.
7: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
5: Yes.
7: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it. Mm-hmm. This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you must see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
5: Yes.
7: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
5: Yes.
7: And as you talk about new businesses, MSMEs, to grow, they've allowed that by a simple change in the definition of the MSME thing. So now MSME has got lost the fear of growing going forward.
5: Okay, so that flexibility is there, and that intent to make amendments whenever it is required, that we have been observing over the last 12 years.
7: Absolutely, and if you see, this is still work in progress. You see, we've revised three legal laws in the criminal space, you know, the Evidence Act, the Indian Penal Code, and the Code of Criminal Procedure have all been, and we have the BNSS and BSA, and over 12,000 laws have been scrapped, 14,000,
5: yes.
7: Right? They've been scrapped, right? These are all things which are not there. You have looked at decriminalization, which I talked about earlier. So the fear of that going out. And the most important, and you know, you started this conversation by saying, what are the two most important things that you've said? The first two most important things actually happened in 2014 and 2016, right? 2016 and 2017, right? The first one was the IBC, the insolvency code, because earlier companies could not, and the BIFR and the alternatives, they were graveyards of industry, not renewing kind of things. The second one, which is very important from a national perspective, which got implemented from the 1st of July 2017, was the GST, which removed multiple taxation and got it into one tax, made it very simple, and that reform is continuing. So it's been a progress. This year, for example, earlier this year, they introduced reduced GST rates on many sectors.
5: Yes.
7: And you're seeing, despite Trump tariffs, despite the war.
5: And it became a two-slab structure, much simpler.
7: No, nearing two slabs, not yet two slabs. S.P. Sharma will differ from that. But if you look at this, there have been growth rates. You know, people thought because of the Trump tariff and because of the war, Indian growth economy will be declining. But you saw the GDP numbers come out for last year and the projections for this year. And you will see the current PMI index, it is showing growth going forward.
5: Yes.
7: So this is all a result of the reforms and the income tax assessment. All these are all positive steps there. Yes, something, always people will say something more has to be done, but that's a work in progress.
5: So Dr. Sharma, you know, we talked about how business entry has become much easier, how the permits, getting permits has become much easier. If you can throw a little bit more light on that, the National Single Window System, which has been launched, and the land records, how they have been digitized. You feel that all these digitization of the various aspects of business, they have brought in much more transparency and led to environment which is more harmonious, and there is less chances of disputes happening or corruption happening.
6: Yes, Sonuji, digital processes are very, very important for the ease of doing business, as now we are the largest digital economy. Actually, we are at the top in the world economic system, and our digital transactions are now more than 20 billion in a month. So the total number in a year becomes in more than 200 billion. So DigiLocker, I think, is a great breakthrough for these of doing business processes. As I earlier mentioned, that procedures are coming down, compliances are coming down. As Mr. Shunai mentioned, that compliances, government has removed many compliances from the system and have simplified more than 42,000 compliances during the last 4-5 years. So all these developments, like the removal of compliances and simplification of the compliances, is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
5: Yes.
6: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
5: Mm.
6: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
5: Yes.
6: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So, this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
5: Yes.
6: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India.
5: Hmm.
6: Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
5: Yes.
6: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business. So this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
5: Yes.
6: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
5: Absolutely.
6: With a great confidence.
5: Yes.
6: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
5: Absolutely.
6: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
5: Absolutely.
6: System.
5: Absolutely. So, Mr. Chanoy, jaisa ki abhi Dr. Sharma ne kaha ki hum, aur aapne bhi kaha ki itne hum aapadaon se guzre, itni mushkil situations jo international level par hui, chahe wo pandemic ho, chahe ye geopolitical conflicts ho, but phir bhi hamare aarthik मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
7: सूरज जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज़ बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है.
5: जी.
7: अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
5: जी जी,
7: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी

जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी, तो ये एक बहुत

0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है। पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट पे इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है। और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई जो सरकार सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और

0: मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया, तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है। अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन दी नॉट ओनली इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट दी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम।
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चिनॉय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
2: थैंक यू।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: अभी आपने सुना समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष व्यापारिक सुगमता। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
5: मार्जोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए, शबनम इस्माइल ने 4 ओवर में 28 रन, ट्रायन ने 2 ओवर में 23 रन, मिलावा ने 4 ओवर में 33 रन, आयमोंगा खाका ने 4 ओवर में 31 रन और नदीन डिकलाक ने 2 ओवर में 16 रन। अगली गेंद और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन बल्लेबाजों ने चुराया और इस एक रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 153 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ग्रुप ए का ये जो अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अभी तक 153 रन अर्जित किए हैं 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऋचा घोष अब सामना करती हुई मैरिजन कैप के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, और उसे उठाकर मारने की कोशिश करी लेकिन एक फिर से आसान सा कैच शॉट, फील्डर ने जो लॉन्ग लेग पर शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर था उसके हाथों में बल्ले ने गेंद का बाहरी किनारा लिया गेंद ने और सीधा चढ़कर फील्डर के हाथों में बिना किसी गलती से इस कैच को लपका और भारत को अगला झटका मिला ऋचा घोष के रूप में। हालांकि भारत को बहुत उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में ऋचा घोष के बल्ले से कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। कॉट खाका बोल्ड कैप, ऋचा घोष 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर वापस जाती हुई 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और भारत एक इस विकेट के साथ 153 पर 7 खिलाड़ी आउट हुए। भारत के ऋचा घोष अभी आउट होकर वापस जाती हुई 15 के व्यक्तिगत योग पर 19.2 ओवर के बाद भारत का स्कोर पहुंचा हुआ 153 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर।
6: Once again the slow ball doing the trick over there for me and that's what I've been saying right throughout this innings. They've not given any pace on the ball at all and Barizan cap with all the experience and what Richa Ghosh did there was went through with this stroke. The ball came in later, took the top edge and ballooned up to the fielder at short fine leg and that was easily taken by Kaka. As here is cap. This time that's been lofted. Has she got the distance? It'll go a few bounces. Will be cut off at wide long on. Just the one. So this is a good final over by Marizan Kapp. A couple taken over there actually. By there'll be the first runs for the debutant. As Prema is the one who gets those 2 runs. And she'll be happy. Always good. You play your first international game, your first T20, and you've got runs on the board. What better can she do over here? 3 runs, 3 deliveries left. And follows the bowler there, does Marizan Kapp. Drilled away down to mid off inside the 30-yard for a single. Does the right thing over there. Does the debutant and will bring in the more experienced batter to strike. And they go for a referral. They go for a referral over there. And we'll have to wait as an umpire referral. So 3 runs in this over so far and a wicket to Marizan Kapp. a throw coming, a shy coming in at the non-striker's end. And what the umpire will wait to see is, was the bat grounded inside? We'll have to wait for the final verdict of the third umpire for the referral. The important fact always is, drag your bat in. And the line belongs to the umpire, is an old thing that he keeps saying, not out. Yes, I thought as much, because the ball was dragged in well. That'll bring in Arundhati Reddy to strike to the last two deliveries. Four runs. Here's Marzan Kapp converted into a full toss. No pace on that one. And that'll go across to wide. Long on, they go through for two. Still a good over by Kapp. This means that she's given only six in what is the 20th over. And that is good bowling. Can she end it well from South Africa's perspective? 158 for seven. Can India get at least a couple and take it to that 160? That on this wicket could actually be a good total, because there's not much pace on this wicket. Here is Marizan Kapp for the last time in the innings, and very well bowled. And that goes down to Seralo Jafta, and that ends up the Indian innings certainly at 158 for 7. Marizan Kapp ends with a dot ball, and South Africa will chase 159. Do stay tuned in for a very special program that is titled Free Hit 20. Stay with us.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्री हिट 20 में। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ मुदिता हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पे मौजूद हैं। वैशाली माथुर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र सिंह, बीसीसीआई से क्वालिफाइड कोच, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्थरा गणेशन। और आप जानते ही हैं कि 159 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैटल ऑफ वॉरियर्स है, वो वॉरियर जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे, लेकिन ये मुकाबला कुछ वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वैशाली आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे खुश हैं स्कोर के साथ?
1: थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गई है, एंड कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसके बैट से कंटिन्यू स्कोर आया हो।
0: ओके,
1: एंड उसके साथ अगर देखा जाए इस मैच की बैटिंग लाइनअप के बारे में तो मोस्टली आउट एक ही वे में हुए हैं, एंड उस पे हमें फोकस करना चाहिए।
0: वो भी समझा दीजिए किस वे में, हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा मदद मिल जाएगी।
1: हमें अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था, जो हम उसको कट करके खेल रहे थे वो नहीं करना था हमें। हम हमेशा लेग की साइड पे क्यों रन देखने की कोशिश करते हैं, जब हम कवर्स के ऊपर से भी हम इतना जिगरा रखते हैं कि मार सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते थे। उसको माइंड, जो भी बैटर आ रहा था, जैमिमा भी आई, तो उनको ये देखना चाहिए था कि बैटर कैसे आउट होके गया, कि वो गलती हम भी ना करें।
0: एक और शख्स हमारे साथ यहाँ है रविंदर जी, लेकिन एक मोहतरमा है जिनकी आवाज़ बड़ी मीठी है, कोयल सी उनकी बोली है। आपके चेहरे में स्माइल कम होगी, पर 159 अच्छा स्कोर होता मुदिता
2: जी, लेकिन शायद उम्मीद से कुछ कम रह गया जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उम्मीद जताई थी। रविंदर, जो हम पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, कि अगर उन पर प्रेशर आया तो क्या वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आज के प्रदर्शन को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, स्टार्ट तो अच्छा ही था, तीन पहले जो स्मृति आउट हुई, 3 में 30 थे, 6 में 54 रन थे, स्टार्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जब विकेट जो गई हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि विकेट थोड़ा स्लो था, इतना विकेट पे जो स्लो था, उनके शॉट्स पे जो रिवर्स जो उल्टे खेल रहे थे, रिवर्स वगैरह कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा पेस चाहिए आपको बॉल के अंदर। पेस होगा तभी आप उसको शॉट फाइनल लेग के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अगर आप में पेस ही नहीं, फ्लाइटेड बॉलें उनको आप मारोगे तो फाइनल लेग पे कैच ही जाएगा। सबसे बड़ी गलती करी स्मृति ने, जो इतना बढ़िया बैटिंग करते करते 3 ओवर में ये 30 रन का स्टार्ट था, उसके बाद ये गलत शॉट खेला। 160 रन इस विकेट में मुझे कम लग रहे हैं, 180 का हमारा जो था कि 180 तो बनने चाहिए, लेकिन अब डिपेंड, विकेट स्लो है, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो ये मैच हो सकता है कि अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारी, तभी मैच में कुछ फाइट।
0: सो कमिंग टू यू उत्तरा, नो क्रेज टेकन अवे फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स मार्जिन कैप 2 for 27 इन 4, शबनम इस्माइल 2 for 22 इन 4, बट अपार्ट फ्रॉम दैट समथिंग व्हिच आई फील डिड द डैमेज फॉर द इंडियन इनिंग्स वर द 40 डॉट बॉल्स, ऑलमोस्ट 40 डॉट बॉल्स दैट द इंडियंस प्लेड।
4: आई थिंक द डॉट बॉल्स हैड अ ड्यूअल इफेक्ट, one of course they kept the scoring low, and two, those dot balls were the ones that forced Indian players to go for shots which otherwise perhaps they would not have done. Like Vaishali said, ke, there were no partnerships, and that was also because every couple of dot balls or every 3 or 4 dot balls meant they tried to go for a big shot without realizing that just swinging your bat does not bring you runs, especially when you're up.
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब निरंतर करेंगे 9:30 से। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
7: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
6: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
7: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
7: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
7: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
8: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
6: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित।

किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इम्तिहानात के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमे डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदैन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थीं। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: सीबीएसई ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतज मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतज भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूम के लिए सिर्फ सीबीएसई के सरकारी जराए और डिजी लॉकर से ही रबता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासर खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई। वजीर अजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शौरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर अजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
0: इस साल के योग के बैन अवी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में 3 अहम तरजीहात, तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वज़रा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी

0: پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطہ جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس سال کے دسمبر تک ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اگلے برس فروری اور مارچ کے درمیان نافذ ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروباریوں کو یورپی بازار تک تقریباً صفر درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی۔ مغربی ایشیا تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور عبوری معاہدے کو مضبوط بنانے کی خاطر آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں۔ اس مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے باعث دوبارہ آبنۂ ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم امریکی فوج کے مطابق یہ اہم آبی گزرگاہ اب بھی تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ، قطر اور پاکستان کے ساتھ مجوزہ چار فریقی مشترکہ مذاکرات سے قبل بات چیت کرنے والی ٹیم نے برگن اسٹاک میں قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی۔ چار فریقی مذاکرات سے پہلے امریکی وفد نے بھی پاکستان کی ثالثی ٹیم سے ملاقات کی۔ گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے 14 نکاتی سمجھوتے کی پہلی شک تمام محاذوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں حالیہ دنوں میں شدت آ گئی ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے آج جے پور دربھنگا امرت بھارت ایکسپریس کو جے پور سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور کھاٹی پورا میں اہم کوچنگ ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اشونی ویشنو نے کہا کہ نیا ٹرمینل ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنائے گا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقوں اور سکم میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ اروناچل پردیش، بہار، کرناٹک، کیرالا، اڑیسہ، تامل ناڈو اور تلنگانہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بھی اگلے 5 دنوں تک موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے دلی اور دیگر ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی طوفان کی بھی پیشگوئی کی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش، شمالی اتر پردیش، تلنگانہ اور ودربھ کے الگ الگ علاقوں میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے ایف آئی ایچ خواتین کے نیشنز کپ میں نیوزی لینڈ کو 2-0 سے ہرا کر خطاب جیت لیا اور خواتین کی پرو لیگ میں اپنی جگہ یقینی بنا لی۔ نونیت کور اور سنیلیتا ٹوپو نے بھارت کی طرف سے گول کیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں بھارت ناقابل شکست رہا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت نوجوان کھلاڑیوں کو ہاکی کو اپنانے کی ترغیب دے گی۔ کرکٹ میں سری لنکا کے دامبولا میں 3 ملکوں کی سیریز میں آج بھارت اے نے میزبان سری لنکا کو 66 رن سے شکست دی۔ بھارتی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 377 رن بنائے۔ بھارتی نے پہلی وکٹ کی شراکت داری میں شاندار 130 رن بنائے۔ بیبھو سوریہ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 11 گیندوں میں ہاف سینچری بنائی اور صرف 29 گیندوں میں 94 رن بنائے۔ سری لنکا اے کے لیے کوگا تھاس، میتھولن، رویندر فرنانڈو اور ونوجا سہان نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 47 اوورز ایک گیند میں 311 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے منتخب بھارتی مکے بازوں نے چیک جمہوریہ کے استی ناد لابہم شہر میں منعقدہ 56ویں گراں پری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کے 8 تمغے شامل ہیں۔ 5 رکنی خواتین ٹیم نے سونے کے 4 اور چاندی کا ایک تمغہ جیتا ہے۔ اس میں لولینا بورگوہین، پریتی پوار، ساکشی چودھری اور پریا گھنگاس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ پروین ہڈا نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक़िद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद उबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालय खत्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
2: आप समझ अपने छोर बदलने का ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका का 45 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर और बाकी जो 11 ओवर यानी कि 66 गेंदें बची हैं उन पर 114 रन उनको चाहिए 10.38 की औसत से 10.36 the required run rate. The last wicket fell when the score was 25, so these two have added 45 for the third wicket, so this is the biggest partnership so far. They've got to lick in these two, Cap and Tasman Brits, but they can't wait for too long before upping the ante. It's only 10.4 now, so every over where you score less than 10 runs an over is going to increase that and take it to 11, 12 and 13. First ball of a fresh over from Prema Rawat, that's played over the infield on the offside down to the extra cover boundary for 4.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: मैरिजन कप के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ प्रेमा का ये गेंद था, थोड़ा सा फ्लाइटेड जरूर था लेकिन इनसाइड आउट हुई और उसे कवर बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इसीलिए इनका शुमार वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनमें किया जाता है, गेंदबाजी के रूप में भी और बल्लेबाजी के भी, ये दोनों में सक्षम है और इसका आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम को कि मैरिजन कैप किस अंदाज में और कितनी देर तक बल्लेबाजी करती हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे उठाकर मारा है 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: अंपायर की तरफ से इशारा,
4: as you can see at the boundary at backward square leg and it was airborne for a fair length of time and magnificent attempt there but just eluding, oh that just took the fingertips and went over the boundary for a 6, but one must give full credit for the attempt that was made on the square leg boundary over there. So but from South Africa's perspective, 10 runs in the first 2 overs, and this is what we were discussing, they'll probably go after the debutant in this particular over, Prema Rawat. Here is that's once again down the leg side and she says was it that a wide, it is a wide.
2: और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 56/2 9.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत ने अपने पहले 50 रन बनाए थे 26 गेंदों का सामना करते हुए और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले रन बनाए 56 गेंदों का सामना करते हुए भारत साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन बनाए और अगली गेंद को डीप कवर्स की तरफ पुश किया गया बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुराने का और इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई हैं और इसमें एक वाइड है। 57 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 63 बॉलों में 102 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस रन चेज को पूरा करने के लिए। अगली गेंद आगे निकलकर मारने की कोशिश, लेकिन प्रेमा ने खुद फॉलो किया बैट्समैन को और मजबूर किया कि उसे रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और खुद गेंद को फील्ड किया।
4: 32 of 25 deliveries this partnership, so they're getting into a groove. A few overs like this, and you know, these two have the ability. Here's the last delivery of Prema Rawat, just a trifle short, that's been pulled away down to mid wicket, halfway down to the boundary, and before the return can come, they're through for a single. And the three boundary riders are deep square leg, deep mid wicket, and long on, or on the onside. And should there be anything short, the batters will try to pierce it through that gap, those two gaps that are there. As here is Prema Rawat, the last time in this over, wide of the off stump, waits for it, does by his hand cap, steers it down to the fielder inside the 30 yard. That is Deepthi Sharma, direct hit. Richa Ghosh goes up. Will the umpire refer it? And she says, no, I'm quite happy. And this over has cost India 16 runs, and at the end of 10 overs, halfway mark, South Africa chasing 159 for 2, 100 needed in the remaining 10.
2: 10 ओवर में 100 रन चाहिए, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से अब साउथ अफ्रीका को ये स्कोर चेस करने के लिए रन बनाने पड़ेंगे। आखिरी ओवर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पाले में गया, 17 रन आए उस ओवर में और दोनों बल्लेबाज मैरिजोना का 17 पर खेल रही हैं और ब्रिट्स अब अपने पैर जमाती हुई, अपनी आंखें जमाती हुई पहुंच गई हैं 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर। 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, उसमें एक चौका शामिल है और मैरिजन कैप ने अभी तक 15 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। 113.33 की औसत से वो अभी तक बल्लेबाजी कर रही हैं। 59 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए हैं, नंदनी शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन, अरुंधति रेड्डी ने 2 ओवर में 14 रन, श्री चंदी ने 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 2 विकेट। नंदनी अपने ओवर के साथ राइट आर्म ओवर स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, कवर्स में उसे धीरे से पुश किया, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों को छोर बदलने के लिए और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 10.1 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज अब तक कर चुके हैं। मैरिजन कैप खेल रही है 18 पर। ब्रिट्स अब सामना करेंगी नंदनी के ओवर का दूसरी गेंद का, जो 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है नंदनी शर्मा। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे उठाया है लॉन्ग ऑन का फील्डर। एक बार तो दिलचस्पी जरूर ले रहा था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी और उनको फील्ड किया गया, वापस थ्रो किया गया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के लिए। 61 पर स्कोर पहुंचा।
4: Yes, I got the feeling that she wanted it played over long off, did Brits, and the ball came slower off the wicket, and that's why it went over the bowlers at in the air. But well short of Radha Yadav there. Two singles in this over so far. 98 needed of 58. Nandini Sharma. Right in the block hole. Well bowled. Slower through the air. And Marizan Kapp can do no more than push it back along the wicket. And Richa Ghosh from behind the stumps applauds that delivery. This is getting to be a good over. Remember, the last one was a touch expensive. This was a slow ball. Right to the block hole there. Very well bowled by Nandini Sharma. And she's happy with it. The wicketkeeper is happy with it. Just the 2 runs in the first 3 deliveries. Nandini Sharma to Marizan Kapp. And this time, she wants to go through with this stroke. And once again, very, very well bowled. So, this is getting to be a very good over. And Marizan Kapp has to concede another dot ball as the ball goes through.
2: स्कोर 61 पर। 61 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और इस ओवर में एक बहुत ही अहम जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है एरिजन मैरिजन कप और नंदिनी के बीच में। लेग स्टंप के बाहर उसे स्कूप किया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
4: This time the experience Marizan Cup getting better of Nandini Sharma. Picks it up from outside off and deposits it over the fielder there inside the 30-yard circle at fine leg. Well over her, soaring over her down to the fine leg boundary for four. So six runs in this over so far. Remember they need around 10.25. Can Nandini Sharma end this well? Cup will lead the boundary. Last ball coming up and Cup sweeps it around the corner. Will she get it down to the backward square leg boundary? Will be cut off beautifully and they go through for two. So eight runs in this over from Nandini Sharma and 11 overs ball. South Africa chasing 159.67 for two.
2: 67 run do khiladi ke nuksan par. Marizan Cup khel rahi hai 24 ke apne vyaktigat yog par aur तास्मिन ब्रिट्स खेल रही हैं 22 के अपने व्यक्तिगत योग पर। आउट होने वाले दो खिलाड़ी लॉरा वॉलफार्ट 20 रन बनाकर आउट हुए थे और एनरी डक्सन ने स्कोरर्स को तकलीफ नहीं दी थी, शून्य पर आउट होकर गई थी। दोनों विकेट्स 25 के स्कोर पर गिनी थी और उसके बाद अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी करी है। करीब करीब अभी ये पार्टनरशिप 42 रन तक पहुंच गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बहुत अहम ये पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव को लेकर, क्योंकि अगर इस मैच में बने रहना है। दीप्ति शर्मा ने ओवर की शुरुआत करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उसे स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाहती थी। ब्रिट्स नाकामयाब हुई, गेंद उनके शरीर पर लगी। कोई नुकसान नहीं, कोई स्कोर नहीं। स्कोर 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 11.1 ओवर्स के बाद 53 गेंदों में 92 रन चाहिए।
4: डाउन द विकेट कम्स ब्रिट्स टू द नेक्स्ट डेलिवरी फ्रॉम दीप्ति शर्मा हॉइस्ट इट हार्ड एंड हाई फॉर अ सिक्स ओवर द बॉलर्स हेड।
3: ये लगा आभा का छक्का।
2: बेहतरीन शॉट था ये ब्रिट्स का। आगे आई और बल्ले को पूरी तरह गेंद के नीचे लाकर जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक और 76 मीटर लंबा यह छक्का था ब्रिट्स के बल्ले से निकला हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 73 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली गेंद मारना चाहती थी और यह अपील आउट, अंपायर की तरफ से इशारा आउट का, लेकिन ब्रिट्स ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी है कि क्या यह गेंद उनके बल्ले को लगकर पैड पर गई है।
4: शी सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट द मोमेंट द अंपायर गिव इट आउट शी वेंट अप इमीडिएटली। इफ शी इज नॉट गॉट बैट ऑन टू दैट दैट वाज डेड स्ट्रेट। सो द ओनली थिंग इज शी फील शी गॉट ग्लव और बैट ऑन टू दैट एज द थर्ड अंपायर इज हैविंग अ गुड लुक एट दैट वाज देयर एन इनसाइड एज ऑन टू दैट इज व्हाट द third umpire will have a look at and that will tell us whether there was bat onto that and it does appear that probably there was bat onto that and the umpire will have to reverse the decision. So very clearly Tasman Brits knew that there was bat onto that and she got it spot on. 86 needed of 51, 6 runs in 3 deliveries from Deepti Sharma so far. And this is going to be a very interesting contest because now the South Africans will want to up it. It's around 10 runs and over. As we keep saying, they don't want to take it too high. Next delivery from Deepti Sharma down the wicket comes Brits and drives it in a controlled manner down to mid-wicket right on the boundary. And they get a couple for that. Now what the South Africans are doing to counter the Indian spinners is using their feet, trying to come to the pitch of the delivery. And good stop there right on the mid-wicket boundary by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. 50 partnership of 37 deliveries. Marizan Cup getting 24 of that and 25 to Tasman Brits. Right in the block hole, drilled away down to long on and they go through for one. with that single, 76 for 283, needed of 49.
2: 11 दशमलव पांच ओवर्स की जो गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने करे उसमें 76 रन बने हैं, 49 बॉलों में 83 रन और चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए, और भारत को चाहिए 8 विकेट्स इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि इस ओवर में एक अपील थी जिसे वापस किया गया, अगली गेंद हल्का सा पुश भर किया गया लॉन्ग ऑन पर जमीमा के पास, जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। 12 ओवर की गेम की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। मैरिजन कप खेल रही है 25 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 21 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। इस 25 रनों में दो चौके और एक छक्का शामिल है, और तस्मिन ब्रिट्स जो अब बहुत ही मुस्तैदी से अपनी आंखें जमा चुकी हैं और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी खेल रही हैं, 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर हैं, 28 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, एक चौका और एक छक्का जो उन्होंने पिछले दीप्ति शर्मा के ओवर में लगाया था उसके साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन। साउथ अफ्रीका का स्कोर है 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 6.42 के रन रेट पर अभी बल्लेबाजी हो रही है और 10.25 की औसत चाहिए। अगली गेंद श्री चरनी की, अच्छी गेंद वापस खेला उसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, एक बार फिर से अपने जो मेन बॉलर है श्री चरनी को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है, सिर्फ उनकी मंशा ये है कि विकेट हासिल करी जाए। अगली गेंद और उसको उठाकर मारा है और ये एक कैच की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे, गेंद सीमा रेखा पर फील्ड करी गई, एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। राधा ने गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छटकी, दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, एक अच्छा प्रयास जरूर था लेकिन क्रिकेट को जब आप इस लेवल पर खेलते हैं तो ऐसे कैचेस पकड़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करना हो। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद, सामने उनके मार्जन का और इस गेंद को उन्होंने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन।
4: वेल टॉस अप बाय श्री चरनी दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप,
2: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। मैरिजन कप जैसे खिलाड़ी को आप अगर जीवन दान देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का जौहर आपको जल्दी दिखाएंगी, और अगले ही गेंद पर चौका जड़ा, जिसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने की बात, और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। मैरिजन कप जो है वो अब पहुंच गई है 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर, और साउथ अफ्रीका 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद और उसे हल्का सा पुश भर किया डीप मिड विकेट पर, बॉल को फील्ड किया गया लेकिन बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि जमीमा रॉड्रिक्स का जो थ्रो था वो बिल्कुल विकेट के ऊपर था लेकिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने अपने अपने छोरों को अच्छी से संभाल के रखा, और ये दो रन के साथ स्कोर पढ़कर पहुंचा 85 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर।
4: दिस इज व्हाट यू कैन अचीव इफ यू ड्रैग द बैट वेरी वेल ड्रैग्ड इन बाय टैस्मन ब्रिट्स ओवर देयर, एंड नाउ 85 for 2, 74 of 44, लास्ट बॉल पेनल्टी बट बॉल ऑफ द ओवर कमिंग अप डाउन द लेग साइड, दैट्स बीन लॉफ्टेड ओवर फाइन लेग साइड डाउन टू द फाइन लेग बाउंड्री फॉर 4।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: मैरिजन कप अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाती हुई, जो अभी अभी उन्हें एक जीवन दान मिला था उसके बाद उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जलवा और दिखाना शुरू किया, और इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर पहुंच गया 37 रन, और श्रीलंका साउथ अफ्रीका बढ़ती हुई आगे तेजी से 89 for 2, 12.4 ओवर्स के बाद 43 गेंदों में 70 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। श्री चरनी अपने ओवर की आखिरी गेंद और उस गेंद को हल्का सा डीप मिड विकेट की तरफ मोड़ा और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, 90 पर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का स्कोर। इस सिंगल के साथ और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर बाकी बचे 7 ओवर यानी कि 42 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को जीतने के लिए। और भारत को अब बहुत जल्द चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका की कुछ विकेट्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर लगा था लेकिन कैच को लपका नहीं गया और जीवनदान मिला मैरिसन कप को और मैरिसन कप ने उस

0: जीवन दान के बाद अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया। दो चौके उन्होंने उसके बाद जरूर लगाए और स्कोर भर बढ़कर पहुंचता हुआ साउथ अफ्रीका का 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: दिस पार्टनरशिप हैज बीन गुड फॉर साउथ अफ्रीका। 65 कैप इज 38, डैस्पन ब्रिट्स इज 31, द रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.9 ऑलमोस्ट। नाउ 7 ओवर्स रिमेन। इफ दीस टू स्टे देयर फॉर अनदर 2 or 3 overs, then South Africa can probably think that even 10 or 11 per over is possible with wickets in hand. From India's perspective now, India would like to get a wicket or two if possible over here, because these two are well entrenched, are Marizan Cup and Tasman Bridge. Both of them are really looking good. Remember, the last over from Shree Chandni was expensive. She bowled so well in her first two overs, and in the last over we saw her getting pummeled for boundaries as well. 69 needed of 42, and one of the reasons has been that Karp and Brits have started using the feet, not allowing the ball to grip and turn, getting to the pitch of the ball and playing ground strokes as well as lofted strokes, and also hit a couple of sixes. Shefali Verma coming in this time to Marizan Cup, short to the length, and that's been hit away into the covers, and that's well fielded by Deepti Sharma. No runs, so dot ball. Every dot ball will matter, every boundary will matter, and every good fielding effort will matter. Indians have said four to six runs already. Shefali Verma short in length, and that's played past Midon inside the 30-yard circle for a single. Singles are okay from India's perspective. South Africa will certainly need boundaries from here on. Karp is 31. Brits is 31. Karp is 39. Partnership is 66. 10.2 the required run rate from here on. And this one is played into the covers. They want to run and they get it in the end also. Good calling, good response. But from India's perspective, Shefali has started quite well over here. Just 2 runs of 3 deliveries. She's cutting pace on the ball. 67 needed of 39 deliveries. Both the dugouts are quite tense, because next 2 or 3 overs will define which way this is going. Shefali gives that ball more air. Drilled too long off. One of the things we've seen in this over is they're not giving the ball too much air, not allowing the batters to use their feet, come to the pitch of that one. She's holding it back, and after quite 3 or 4 overs, we've seen the ball being pitched short, faster through the air.
0: बिल्कुल जी, अगली गेंद और उसे धीरे से पुश भर कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए। लॉन्ग हैंडल्स का इस्तेमाल हल्का सा मैरिजन कप की तरफ से किया गया, जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, दो चौके लगाए, वो लॉन्ग हैंडल्स के साथ उन्होंने दो चौके लगाए थे, और उसके साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू किया और फ्लाइट को भी कम किया, जिससे बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हुई। मैरिजन कप खेल रही है 40 के अपने व्यक्तिगत योग पर। शेफाली वर्मा के ओवर की आखिरी गेंद और एक तेज स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर्स के पास, एक रन के लिए पर्याप्त समय था। 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का 95 रन दो विकेट्स के नुकसान पर। अगली 36 गेंदों में 64 रन दरकार हैं साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए। भारत ने 158 रन बनाए थे अपने पहले 20 ओवर्स में, और अब बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने अभी तक 14 ओवर्स में। बाकी 6 ओवर्स में 64 रन उन्हें बनाने हैं 10.67 की औसत से। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड किया। अभी तक 70 रन बनाए हैं इन्होंने तीसरे विकेट के लिए। मैरिजन कैप्स खेल रही हैं 41 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 33 के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शेफाली वर्मा ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए हैं। नंदनी शर्मा ने 2 ओवर किए हैं। अरुंधति रेड्डी 2 ओवर, श्री चरनी ने 3 ओवर किए हैं। प्रेमा रावत ने 2 ओवर किए हैं, जो उनका पहला मैच है, और दीप्ति शर्मा ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं। तर्मिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने दोनों के बीच में ये चौथीवां अर्धशतकीय साझेदारी है। इससे पहले उन्होंने 69 रन की साझेदारी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 58 रन की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 में, 96 रन की भारत के अगेंस्ट 2024 में, और आज 70 रन से ऊपर वो जोड़ चुकी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस ग्राउंड में। एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक अहम मैच, जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर खेला जा रहा है।
1: सिक्स ओवर्स लेफ्ट नाउ in this innings. And, you know, Shrichandi has got one over left. She'll definitely bowl that. Shefali Verma has got one. She'll bowl that. Now, after that, four overs. Deepti Sharma has got two overs left. Definitely she'll bowl that. So, what is interesting to see, the remaining two overs out of the six, after Shefali bowls a one over, Shrichandi bowls one, Deepti bowls two. Two more will remain. And Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat, the three bowlers that we've seen apart from Shefali, Shrichandi and Deepti, who will get the remaining two overs, may not be the debutant, Prema Rawat. She's been expensive. Can't blame her. It's her first game. It could probably be two overs shared between Nandini Sharma and Arundhati Reddy. That could be the way in which the remaining six overs could be bowled.
0: भारत ने अब जब पहले बल्लेबाजी करी थी अपने 20 ओवर में 158 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 39 डॉट बॉल्स थी, 18 चौके उसमें शामिल थे और एक छक्का भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए थे अपने 158 रन पूरा करने के लिए.
1: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर एंड एज वील हैव टू वेट एंड वॉच हु एक्चुअली स्टार्ट्स ऑफ द बॉलिंग ऑपरेशंस first for the first ball of a fresh over. But from India's perspective, we've seen some wonderful fielding as well as just the odd catch that was dropped. One would say that was a good attempt, actually, to be very fair to Radha Yadav, rather than say that was a drop catch. It was a wonderful effort. She's one of the better fielders India's got. So six overs remaining now, and 10.67 the required run rate, and this partnership has yielded 70. Yes, Arundhati Reddy, we said she'll probably bowl one over. She's got the ball in her hand, and South Africa now 95/2 required run rate, 10.67 from here on. From close to the sums, full toss that's been clubbed away, but there is a fielder there, Jemima Rodrigues, patrolling that boundary at mid wicket, just the one. 63 of 35 from here on for South Africa to go through. If one were to look at it, this is even more a crucial game for South Africa than it is for India, while it's important for both, because India, if they win, they'll be in the driver's seat. Arundhati Reddy, and that's been lofted over the bowler's head. That'll go down a couple of bounces to the side screen for four.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर साउथ अफ्रीका का पहुंचा हुआ 3 अंकों पर 100 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 100 पर पहुंचा. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे उठाकर मारा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी और भागकर 1 रन चुराया और स्कोर इस 1 रन के साथ 101 पर पहुंचा, दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.3 ओवर्स के बाद. साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 50 रन पूरे किए थे 56 गेंदों पर, और दूसरे 50 रन हमारे स्कोरर रावत जी बता रहे हैं उन्होंने 30 गेंदों में पूरे किए. इसका मतलब बल्लेबाजी अब काफ़ी तेज हो रही है. अरुंधति रॉय अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद थी और उसे स्कूप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Bad ball from Arundhati Reddy down the leg side, and all that the batter had to do is help it on its way, which he did so beautifully. Marizan Kapp just lofting it nonchalantly down to the final leg boundary for 4. Turning out to be expensive this over from Arundhati Reddy. 54 of 32 now, 14.4 overs, 5 to go after this. Partnership is now worth 80. And the required run rate just a touch over 10.13. Remember, the last wicket fell when it was 25. Looks like a long, long time back. Arundhati Reddy, this time to Marizan Kapp, who picks it up from outside the off stump and deposits it down to the mid wicket boundary for 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: और इस चौके के साथ मैरिजन कप का अर्धशतक पूरा, 34 गेंदों में इन्होंने अपने ये अर्धशतक पूरा किया. इन 50 रनों में 6 चौके शामिल हैं और एक खूबसूरत छक्का इस ओवर में अनुदिति रेड्डी के ओवर में। इस ओवर में अभी तक वो तीन चौके जमा चुकी हैं, तीन चौके आ चुके हैं और मैरिजन कप दिखाती हुई अपने बल्लेबाजी का जौहर और क्यों उन्हें विश्व का सर्वोत्तम ऑलराउंडर माना जाता है, उस लिस्ट में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। आज साउथ अफ्रीका के लिए एक अहम पारी खेलती हुई, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे हल्का सा पुश भर किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बड़ी मुस्तैदी से दो रन चुराए बल्लेबाजों ने और इस दो रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 और 111 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर में। मैरिजन कप की ये छवीं अर्धशतकीय पारी थी, उनके बल्ले से आए हुए ये छवीं अर्धशतकीय पारी थी उनके करियर की और आज इस महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक 52 रन अर्जित किए हैं और अपनी टीम को मुश्किल वाली जो छोर था उसमें से बाहर निकालने की अपने पूरी कोशिश करते हुए जो रन रेट एक समय बढ़कर 10.9 तक चला गया था वो अब घटकर 9.6 रह गया है, यानी कि बचे 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए।
1: Yes, indeed. This partnership is now taking the match down to the wire. They are making a fight of it. 111 for 2. Kapp is 52. Tasman Brits is 37. This partnership 86. And that's come at a very good run rate as well, particularly in the last 2-3 overs. The last over from Arundhati Reddy was 16 runs. Very, very expensive. The most expensive of this innings so far. Deepti Sharma has the ball in hand. 48 of 30 needed. From outside the off stump, she wants a pummel, it does Brits. And the ball ricocheting on the onside for just a one. Should be leg byes. And the impact was certainly outside off. The Indians having a thought there, but very clearly inside, very impact very clearly outside off. Now Harmanpreet Kaur has a word with Deepti Sharma. Some thoughts being exchanged because these next couple of overs are going to be so important in the context of this game. If South Africa manage to get a couple of more good overs, they can take it through. But if India can squeeze South Africa in the next couple of overs, beginning from this one, from Deepti Sharma, she's got all the experience behind her. Some readjustments being made in the field. One thing is, get the field in place. The other is break the momentum. Remember, South Africa have got two good overs. So one way is to take your time and break the momentum. The momentum that's been developed now by Marizan Kapp and Tasman Brits. That's a good idea as well.
0: 112 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद और अब दीप्ति शर्मा बिल्कुल तैयार। राउंड स्टंप से ये गेंदबाजी कर रही है और उसे हल्का सा ग्लाइड किया स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, एक रन चुराया बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 113 दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 7 से 15 ओवर्स में भारत ने 57 रन बनाए थे 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 16 डॉट्स खेली गई थी और इसी दौरान 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 86 रन बनाए हैं और 13 डॉट्स इनमें खेली गई हैं आंकड़ों के हिसाब से। अगली गेंद और बहुत तेज शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री को रोककर 2 रनों में तब्दील किया जमीमा रॉड्रिक्स ने, लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 हाफ सेंचुरीज जो मैरिजन कप ने अभी तक बनाई है, 75 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, 60 रन श्रीलंका के खिलाफ, 57 रन भारत के खिलाफ, 56 रन पाकिस्तान के खिलाफ, आज भारत के खिलाफ अभी वो 53 रन पर खेल रही हैं और इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। स्कोर 115 रन दो खिलाड़ी को नुकसान पर 15.3 ओवर्स में। 27 गेंदों में 44 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए और भारत को जल्द जल्द कुछ विकेट्स ताकि मैच में वापसी करी जा सके।
1: 44 of 27 comes down the wicket once again. The Tasman Brits drives it in a controlled manner to long on. 116 for 2. Fielded there by Jemima Rodrigues. And so this over so far, no boundaries in the Deepti Sharma over. Will she end it well? 116 for 2. 43 of 26 needed from here on. Deepti Sharma so far conceding only singles in this 16th over. Round the wicket. And once again, ball very close to the tab lines. Have been driven, will be cut off by Shefali Verma. Wide of long off inside the boundary. They go through for a couple. So this is a good over. Just the singles and the couple in the last ball. 41 of 25 needed now. Remember, the required run rate is now just under 10. So can she end it well, Deepti Sharma? Not concede a boundary. A single or two will do, because that will then up that required run rate even further. 9.84 it is right now. From round the wicket to Madison Karp, who's drilled it. Pass extra cover to the boundary for four.
0: मैरिजन कप के बल्ले से यह निकला बेहतरीन शॉट कवर बाउंड्री के बाहर. चार रन फुल टॉस गेंद थी. न्योता दिया गया था मैरिजन कप को शॉट खेलने के लिए और उस न्योते को उन्होंने स्वीकारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया. 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप की एक बेहतरीन पारी जो अभी तक उन्होंने खेली है 59 रनों की और साथ में उनका साथ दे रही है ब्रिक्स जिन्होंने अभी तक बनाए हैं 40 रन अपनी बल्लेबाजी में और ये 40 रन के लिए उन्होंने 35 गेंदों का इस्तेमाल किया है. मैरिजन कप जो अभी तक खेल रही है 59 के अपने व्यक्तिगत योग पर जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है 155.26 की औसत से ये बल्लेबाजी करेंगे. 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर पूरी तरह गिरफ्त बनाई हुई है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने. इस मैच पर जो एक समय पे जो रन रेट था वो 10 से पार था, अब वो घटकर 9.25 रह गया है. अगले 24 जो गेंद है, जो 24 गेंदों में 37 रन की जरूरत है साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को अपने नाम करने के लिए. और वहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि इस पारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए ताकि प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका पर डाला जाए.
1: She certainly has got one over. She's bowled 3 for 15 with 2 wickets. So certainly she will bowl one over. 4 overs in the South African innings so far. Shefali has bowled 3 for 14. So she'll bowl one over. Those will be 2 overs for sure. Another 2 overs. Deepti Sharma has been a touch expensive today. 28 she's conceded of 3. But she's got all the experience. And she bowls in at the death for India. So she'll probably get one. And then there's one over to be bowled amongst Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat. So it's Shefali Verma, as I expected, with the ball now to bowl what will be the 17th over, as 37 is needed of 24. Karp and Brits together, 97 this partnership. Close to 100. What a partnership this has been for South Africa after they lost Wolfart and Dirksen relatively early. 122 for 2 now. Indians have also bowled in a disciplined manner so far. Just the 3 extras, and of which 2 have been leg by. So just the 1 wide. We saw South Africa bowling very disciplined manner in 20 overs. They conceded just the 1 wide. India also so far in 16 overs. Just the 1 wide ball. First ball of Shefali on Mazovic. Lofted hard and high. Taken! Taken there right on the mid-wicket boundary. That's the wicket India wanted. Desmond Brith goes. A crucial wicket at a very important juncture.
0: 97 run ki ye bhagedari Shefali Verma ne apne haathon se todi aur ek acha catch kar leg boundary ke upar aur Brits out hokar wapas jati hui. 40 run ka unka yogdan raha is 97 run ki jo bhagedari thi. हालांकि स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से वो एक लंबा शॉट खेलना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब रही और एक अच्छा कैच पकड़ा गया बाउंड्री के ऊपर श्रीचरणी द्वारा और तस्मीन ब्रिट्स 40 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाती हुई. 39 रनों के लिए उन्होंने 36 गेंदें खेली और वापस श्रीचरणी के हाथों कैच हुई. शिफाली वर्मा ने ये एक अहम विकेट दिलवाया जिससे भारतीय टीम अब वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी. 122 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 16.1 ओवर की समाप्ति के बाद शिफाली वर्मा अपने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक अहम भागीदारी को तोड़ने में कामयाब हुई और श्रीचरणी ने बगैर किसी गलती से उस कैच को लपका।

0: और अब नए बल्लेबाज नादीन डी क्लार्क क्रीज पर, जिनके नाम पर 61 मैचेस हैं शेफाली वर्मा की अगली गेंद को खेलते हुए। अच्छी गेंद, एकदम यॉर्कर, और एक अहम समय पर उनका बल्ला नीचे आया और गेंद बल्ले से लगकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास गई बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान के।
1: Right to the block was Shefali Verma. She started very well into Nadine de Klerk. Once again, a good ball. She can only turn it round the corner. Nadine de Klerk in such situations can be extremely dangerous, but she's not been given the opportunity of going after the bowling. She just failed two deliveries, but both those have been bowled beautifully by Shefali Verma. The first one right in the block hold. The other one also almost close out there, not allowing Nadine de Klerk to get right under it. 16.3 overs, 123 for 3, 36 now needed of 21. The required run rate is 10.3 now, gone above 10 and over. Shefali Verma, short in length, that's stalked over the bowler's head. That'll go one bounce to the side screen for 4. The umpire having a look at that, she probably wants to see whether she's got the distance on that. Is it 6 or 4? So we'll wait for the final decision of 6 runs.
2: ये लगा आभा का छक्का,
0: और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 129 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। मार्जन कप एक बेहतरीन पारी खेलती हुई अगली बॉल और उसे उठाकर मारने की कोशिश, और ये कैच छूट गया उनके हाथ से। हालांकि कोशिश जरूर करी गई थी, लेकिन एक आसान सा कैच निकलता हुआ हाथ से। आज फील्डिंग में वो जान, वो मुस्तैदी नहीं दिखाई देगी। ये एक सीधा कैच था, रेगुलेशन कैच, नाकामयाब रहे फील्डर। और अगली गेंद उसे हल्का सा पुश भर किया कवर्स की तरफ, कोई स्कोर नहीं। मार्जन कैप 66 पर, दूसरा जीवनदान उन्हें मिलता हुआ, और ये कितना कीमती साबित होगा, कितना कीमती साबित होगा इस मैच के कंटेस्ट को देखते हुए। क्या साउथ अफ्रीका इस छूटे हुए कैच की बदौलत इस मैच को जीतेगी, और क्या भारत वापसी करने की कोशिश करेगा। ये कैच आराम से उनके हाथ में आया था, लेकिन छटक कर बाहर जाता हुआ।
1: Marzan Kapp dropped on 25 and 65 on both occasions by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. So a bit of an irony there. But the first one, I would say, was a very good effort by Radha Yadav. The second one certainly should have been taken. Shi Channi now, this time to Kapp, and Kapp has drilled it down to long after Shefali Verma for a run. This is going to be a very crucial over, because Shi Channi has bowled so well prior to this, just 15 runs, you know, 3 overs and 2 wickets. So this will be a crucial over. 28 needed of 17. If they get good number of runs in this over, then they could push it through South Africa. Round the wicket now, Shi Channi. That's fetched from outside off and slower through the air. The bat went through first, the ball followed after that, and should be leg byes there as it ricochets down to the offside to point. Yes, leg by signal by the umpire. And Marzan Kapp is 67 of 41, 133 for 3 now. 2 deliveries in the over gone. Channi from round the wicket. A touch short to land, and they'll go out for the peel. Richard Gales goes out for a stumping. We'll have to wait and watch what's the final decision. No, I think very clearly the umpire says, no, I've got the verdict. And it's 26 of 15 needed then.
0: 133 team khiladi ke nuksan par Marzan Kapp 67 par khel rahi hai. Aur Nadine de Klerk jo abhi abhi aayi hai, unhone 5 gendon ka samna kiya hai. Abhi tak 1 run banaya, puri tarah se chakhaya tha is ball par Shi Channi ne. Aur apne is over ki agli gend, और इसे इनसाइड आउट मारा है कवर्स बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: ब्यूटिफुली प्लेड, अ बाउंड्री कमिंग एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज inside out, over the infield, pummeled away, down to the cover boundary for four. And they get four runs at a crucial stage to the South Africans. 22 of 14 needed. Sri Chand need to declerk now. This time she's bowled it. Clean bowled. She was trying to play the scoop. Fetch it from outside off. Over fine leg. And the ball coming much slower off the wicket. And going and disturbing the furniture. Once again, Sri Chandni gets India a crucial wicket. And that's the dangerous Nadine de Klerk. South Africa now 137 for 4.
0: 137 चार रन चार खिलाड़ी के आउट होने के बाद और अभी अभी आउट होकर गई हैं नादीन डी क्लर्क जो उसे स्कूप मारना चाहती थी गेंद विकेट टू विकेट कर दी थी श्री चन्नी और उसका फायदा उन्हें मिला बोल्ड किया गया सात गेंदें खेली थी हालांकि पिछली बॉल पे उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव मारा था इनसाइड आउट निकलकर चार रन के लिए लेकिन श्री चन्नी ने अपनी लाइन को सीधा रखा विकेट टू विकेट जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं उसको फॉलो किया और नतीजा एक अच्छी विकेट उनके नाम पर आती हुई अब ट्रेन क्लोई ट्रेन विकेट पर आती हुई अगले बल्लेबाज के रूप में और मैरिसन कप एक छोर संभाले हुए सट सट के अपने स्कोर पर 41 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं 13 बॉलों में 22 रन चाहिए और श्री चन्नी अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ बॉलिंग मार्ग पर और सामने ट्रायन तैयार अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और एक अच्छा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ कवर बाउंड्री के बाहर चार रन
2: ये लगा आभा का चौका
1: Went outside the off stump for a change by Sri Chandni and Chloe Trine rocking onto that back foot, punching it through that arc of the offside, through to the cover boundary for four. Once again, they managed to get a boundary of the last ball, a very crucial boundary in the context of the game. Now, two overs remaining and required run rate is under 10 back. It's 9 runs per over. What is needed is 18 of 12 deliveries. Now they will fancy themselves as well, the South Africans. Cap is on strike. She's 67 of 41. This will be a very important over. Shefali is done. Sri Chandni is done. Deepti has got one over left. Deepti Sharma, in all probability, 18 of 12. Now Deepti Sharma has got loads and loads of experience in these kind of situations. In the death overs, she generally bowls. But I tell you what, at the other end is Marizan Kapp, who's also got loads and loads of experience, and she knows how to hold her nerve in these kind of situations. She's firmly entrenched there, 67 of 41. And here is Deepti Sharma for mind of the stump. Now, this time it's pummeled away down to backward square leg, straight to Prema Rawat for a single, 17 of 11. India won't mind the singles. What they don't want is boundaries. From South Africa's perspective, couple of boundaries here and they'll be in the driver's seat. What India will want Deepti Sharma to do is, can she get two or three good balls here? Give just the one, maybe two, not the boundaries, not the over boundary. Deepti Sharma. This time, Chloe Trine, that's a good ball, kept low after pitching, and she's pulled it away once again to Jemima Rodrigues. So just the two singles and two deliveries.
0: Deepti Sharma, अपना पूरा का पूरा जो experience है उनके पास, जो तजुर्बा है, वो उसको झोंकती हुई और कोशिश ये कर रही है कि इस ओवर में कोई लूज बॉल ना करी जाए कोई ऐसी बॉल ना दी जाए जिससे आराम से कोई स्ट्रोक लगे और चार रन मिले और उनका सबसे बड़ा फोकस रहेगा मैरिसन कप ये गेंद और उसे उठा के मारा मैरिसन कप ने सीमा रेखा के बाहर छह रन
2: ये लगा आभा का छक्का
1: गिवन द बॉल अ लॉट ऑफ एयर इन द स्लॉट इन द आर्क इट वेंट आउट ऑफ द पार्क दैट्स व्हाट मैरिसन कप से 67 मीटर बाउंड्री एंड आई टेल यू व्हाट वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल राउंडर्स विमेंस क्रिकेट हैज एवर सीन इज taking us South Africa within a couple of strokes of victory 10 needed of 9 couple of boundaries from here 1-6 will take South Africa home what an innings this has been by Marizan Kapp 74 and that ball from Deepti Sharma lot of air she fetched it in the slot as well as

0: में बनाए हैं साउथ अफ्रीका में, और इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो मैरिजन कप का है, जो इस समय 75 रन पर खेल रही है 44 गेंदों का सामना करते हुए। दीप्ति शर्मा अपने ओवर की अगली गेंद, पांचवी गेंद ऑफ स्टंप पे बाहर, उसको निकलकर लेग स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की, कामयाब हुई, एक रन चुनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अब सामना करेंगी मैरिजन कप इस ओवर की आखिरी गेंद का। 151 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को ग्रुप ए के इस तीसरे मैच को अपने नाम करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गए और उसे उठा के मारा है, 6 रन, मैरिजन कप के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर।
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: Marizan Cup, what an innings have you played over here? 81 not out of 45 deliveries and 7 fours, 4 sixes. What an innings in such a crucial game. Holds a nerve. That went soaring over mid-wicket for 6. And now South Africa just 2 needed of the last over. And this must be South Africa's game without any doubt. 81 of 45. Marizan Cap has played like a champion that she's been. And the South African dressing room now wears a very happy look. This was a crucial game for them. And boy, oh boy, have they now taken it to victory. On the doorstep of victory over here, literally. 2 of 6. This is South Africa's game for sure. Chloe Tryon will take strike to the first ball of the last over. And the first ball of the last over, that's been steered away to the vacant slip region. Might well carry down to the third mid boundary for 4. South Africa win. Laura Mustafa is a happy captain. This is a magnificent win for South Africa. And South Africa have won this crucial game, beating India by 6 wickets at Old Trafford, Manchester. A magnificent victory in a crucial game in the ICC Women's T20 Cricket World Cup. So South Africa win by 6 wickets, and please stay back for our sponsor special program, Player of the Match.
0: 158 रन सात खिलाड़ी के नुकसान पर भारत ने बनाए थे पहले अपने 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए, और पीछा करते हुए 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप ने बनाए 81 रन, और बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ये 2 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए।

0: और इसके साथ एक बेहद रोमांचक मुकाबले का हुआ है अंत। भारत को साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से मात दी है और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी राह खुली रखी है। मैं हूं मुदिता, मेरे साथ है मेरे को होस्ट मुनीष जॉली और एक्सपर्ट्स पैनल में हैं रविंदर सिंह, वैशाली माथुर और उत्तरा गणेशन। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मुनीष,
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और क्रिकेट इसी को कहते हैं, उलट पलट इधर उधर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, वैशाली आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आई नो यू आर अपसेट कि इंडिया हार गई, बट क्रिकेट यही है, दिलचस्प था मैच।
2: बिल्कुल, लेकिन फील्डिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुई है, बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई है। जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो कैचेस अगर हम ले लेते तो ये मैच हमारे नाम जरूर हो सकता था। लेकिन वही कहते हैं ना, डिफरेंस सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो फील्डिंग करता है। साउथ अफ्रीका की अगर हम फील्डिंग की बात करें तो वो लाख गुना बेटर थी एज कम्पेयर टू आवर फील्डिंग।
1: आपको लगता है कि उत्तराखंड, यू नो, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री वंस अगेन। वी थॉट दैट इट्स गोना बी एन इजी मील फॉर द इंडियन प्लेयर्स वंस दे गॉट द फर्स्ट 2 विकेट्स, बट देन द वे साउथ अफ्रीका केम बैक, इट्स दैट रिदम दैट दे आर इन, यू नो।
3: Exactly, and like we spoke, उनका इस टूर्नामेंट में अभी तक पहले दो मैच में their middle order was not doing really well, but like I said, India should take someone like a Cap or a Nadine de Klerk at their own risk to take them lightly, and Marizanne Cap today

0: They proved why she is considered not just dangerous but also one of the most respected players over the years. The way she handled the innings, the way she managed to keep the runs coming despite the fact that dusre end pe wickets gir rahe the, and it didn't look like Cap was bothered with what was happening. Chahe unke baki players out ho rahe the, chahe Indian team ko success mil rahi thi, catches drop ho rahe the ya catches liye ja rahe the, Marizanne Cap was playing her own game and she was in a zone. Jaisa sports mein aksar kaha jata hai ki aap zone mein hote ho apne, aur us waqt fir aapko wahan se hilana kisi ke liye bhi possible nahi hota, and it looked like Marizanne Cap was in her own zone. She was playing her own game and she was completely unbothered by whatever was happening around her, and we saw the difference that it made to the final scoreline.
1: Yes, we have seen the difference. Ravinder, Marizanne Cap ka anubhav to aaj kaam aaya hi, lekin Tasman Bridge ki South African team mein vaapsi wo bhi ek bada nirnayak decision sabit hua hai aaj ke match ka.
2: Bilkul, dekhi ye to kitne question syllabus se bahar ka ho gaya. Pehle sab Laura डैक्सन और क्लर्क के बारे बारे कर रहे थे जिन्होंने पहले रन किए, लेकिन ये दोनों तो इन दोनों पर किसी का ध्यान ही नहीं था और इन दोनों ने पूरे मैच को पलट के दिखा दिया. लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम खुद जिम्मेदार है. पहले तो 160 रन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरह दो विकेट्स लिए इन्होंने पावर प्ले में, मैच में वापस आ गए. 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे इनको, लेकिन सही कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि वो लोग कोई प्रेशर में आ रहे हैं या मैच हमारे हाथ में आ रहा है. हमारे हाथ से बल्कि मैच हर ओवर में निकलता ही जा रहा था, और 6-7 ओवर तक तो वो लोग 10-10 रन के आराम से उन्होंने मेंटेन कर रखी थी. और जिस प्रोफेशनल तरीके से कैप ने जो बैटिंग करी है, और खासकर जो कैचेस, जो दो तीन कैचेस छोड़े हैं, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है जब राधा यादव जब इंजर्ड थी, उनके हाथ में फ्रैक्चर था जो बता रहे हैं, वो उसके बाद उसको फील्डिंग करने भेजा जा रहा है, जो कैच नहीं पकड़ पा रही जब इतनी मोटी उन्होंने बैंडेज लगा रखी है. तो और चार फील्डर्स थे वो क्या कर रहे थे, कोचेस में तीन फील्डर्स क्या कर रहे थे, कोचेस उनको भेजना चाहिए था. जो अनफिट प्लेयर है, जो फील्ड नहीं कर सकता, कैसे कैच पकड़ेगा उसको. बहुत ही निराशाजनक ये हार लग रही
3: है. सबके मन में सवाल है कि कौन है प्लेयर ऑफ द मैच, आइए जानते हैं.
4: इंडियन इंटरनेशनल वेद कृष्णमूर्ति 2 for 27 in 4 overs and an outstanding 81 not out of 45 deliveries, 7 fours and 4 mighty sixes. Congratulations, Marizanne. What are your immediate emotions?
5: Oh, first of all, thank you, Jesus Christ. That wasn't me. It was a tough game. Always, playing India is always extremely tough, and yeah, I'm very proud of the team for coming back this game the way we did.
4: I have no doubt Laura's going to talk about the team. I know you don't like the limelight, but I'm going to have to put the spotlight on you. You came in with the team in early trouble, a very challenging power play. What was your approach as you came in?
5: I was just praying, to be honest. No, I seem to do a little bit better when I'm in earlier. I struggled those first 10, 15 balls, and eventually got my timing, and then just put my head down, and I felt like that partnership with Taz set it up beautifully for us.
4: Yeah, I was going to talk about that partnership, because you had to do some hard work, didn't you? Hit the ball hard, run those ones, turn ones into twos. At one stage, did you think, what am I doing and how am I getting across the line? Because it was tough out there.
5: Yeah, look, we said it's a tough place to bat, actually, because you can't let it get away from you too far, but you can also not lose more wickets. So we just said, if we don't let it go past 10 runs and over, we'll definitely, we've got the big hitters back, and that can clear the boundary. And yeah, we just put our heads down, and as soon as we look to be a bit more positive, it works for us.
4: Let's go to the bowling effort. India came out guns blazing. How tough was it to absorb the pressure in those opening overs?
5: Yeah, we know they always do, especially this wicket. It was a little bit flat with the ball. You're always nervous when you come up against an Indian team. I mean, they've got some wonderful players, but I feel like the way we brought it back, that probably saved us today.
4: Must-win game today, and it's a hard pressure environment. It almost felt like a home game for India. How did you keep your calm out there?
5: Again, just by praying. But I seem to like the Indian fans. It feels like they're shouting my name, so don't mind the crowd too much.
4: Congratulations. Our player of the match today, Marizanne Cap.
5: Thank you.
3: मारिज़ान काप वहां पे बनी या प्लेयर ऑफ द मैच, और क्यों नहीं 81 बनाए 45 बॉलों में और 7 चौके और साथ ही साथ 4 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो 52 रन की जो उन्होंने 51 रन की पारी में से 52 रन जो थे वो बड़े शॉट्स के साथ थे. शी केप्ट ऑन सेइंग वैशाली थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट. स्पिरिचुअल लग रही हैं थोड़ा सा, ज़्यादातर क्रिकेटर्स होते हैं स्पिरिचुअल.
6: वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गेम खेलते हैं एंड आपकी फैमिली कैसा बैकग्राउंड है. एंड उसके साथ मैं ये और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका का आप बैटिंग लाइनअप तो देखा ही हमने, उसके साथ उनकी जितनी बॉल्स उन्होंने खेली है उससे ज़्यादा उनकी स्कोर्स है, आप ये देखिए. और हम वहीं अगर हम इंडिया टीम की बात करें, एक शेफाली वर्मा को छोड़ के जितनी बॉल्स उन्होंने खेली उससे उसी के अराउंड में उनके रन्स हैं. तो ये एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता वो यही डिफरेंस है.
1: जी बिल्कुल, यही डिफरेंस है. उत्तरा लॉरा और डर्क सिंह के आउट होने के बाद ताजमन ब्रेड्स और कैप ने जिस तरह संभाला पारी को, भारतीय मिडिल ऑर्डर वो नहीं कर पाया. क्या वही सबसे बड़ा फ़र्क था आज दोनों टीम्स के बीच में?
0: मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वॉज स्मार्टर, दे प्लेड अ मच स्मार्टर गेम आउट देयर. दोनों इनिंग्स में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तब भी उनको बहुत क्लियरली पता था कि किस एरियाज को टारगेट करना है, किस प्लेयर्स को टारगेट करना है और क्या गेम खेलनी है. हमने टॉस के टाइम पे भी सुना, बहुत क्लियर थे कि ताजमन ब्रिड्स क्यों टीम में वापस आई हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया की स्ट्रेंथ इनकी स्पिन बॉलिंग है एंड उनको ऐसा एक सीनियर प्लेयर चाहिए था जो स्पिन अच्छा खेल सके. तो उनको बहुत क्लियरली वो पूरा होमवर्क करके आए थे किन प्लेयर्स को टारगेट करना है. उन्हें ये पता था कि अगर इंडियन टीम में अगर हम स्मृति को छोड़ दें तो ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा क्रैम्प करेंगे रन्स के लिए तो वो फ्रस्ट्रेट होके बड़ा शॉट खेलने जाएंगे. वो नहीं, पेशेंस लेवल नहीं है उतना कि आप बैठें, बॉलिंग को देखें, फील्डिंग को देखें, टाइम लें. T20 हालांकि बहुत छोटा फॉर्मेट है लेकिन टाइम इसमें भी होता है अपने आप को सेटल करने का. लेकिन उन्हें यह पता था कि अगर आप उनको नहीं देंगे, डॉट बॉल्स देंगे तो वो जाएंगे बड़े शॉट के लिए, जो हुआ. और हमने देखा कि वो नहीं खेल पाए उस तरह से. जब वो बैटिंग करने आए तो उनको बहुत क्लियर था, एक तो ताजमन ब्रिड्स को उन्होंने इंक्लूड किया, वो हमने डिफरेंस देखा उन्होंने उनकी और कैप की जो पार्टनरशिप थी. उसके बाद हर एक ओवर में जैसा कि कैप ने बोला कि बहुत क्लियर थे कि हमको 10 से ऊपर नहीं जाने देना है रिक्वायर्ड रन रेट किसी भी हाल में. अगर आपके एक ओवर में रन नहीं आते हैं तो आप अगले में दो चौके मार के उसको बराबर कर दो, बट 10 से ऊपर हम नहीं जाने देंगे टारगेट. तो चाहे वो पहला ओवर हो या दूसरा हो या 10वां ओवर हो, उनकी स्ट्रैटेजी पूरे 40 ओवर के लिए बहुत क्लियर थी, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन टीम लैक कर गई बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से हो, चाहे वो किस तरह की बॉल किस प्लेयर को करानी है उस पर हो. तो मुझे लगता है वही डिफरेंस था कि आपकी प्लानिंग, होमवर्क और स्मार्ट प्ले कितना ज़्यादा है, और वो साउथ अफ्रीका का हमसे बहुत बेटर था.
3: राइट देन, आप सुन रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच. मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ मुदिता हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, रविंद्र सिंह हैं, वैशाली माथुर हैं, उत्तरा गणेशन हैं. रविंद्र सिंह जी, मुझे ना कुछ साल पीछे जाने का मन कर रहा है, पन्ने पलट रहा हूँ कुछ. 1983 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल इसी ग्राउंड पर हुआ था 22 जून को, आज 21 जून है. चेस करके भारत ने वो मैच जीता था. बहुत सारी बातें आज भी हम कर सकते हैं, टॉस जीत के आपने चेस क्यों नहीं किया जब एक ट्रेडिशन है ओल्ड ट्रैफर्ड में. बहुत सारी बातें और हम जानना भी चाहेंगे, श्रियंका पाटिल नहीं है क्या वो एक वजह थी, राधा आई उनका इंजर्ड था हाथ. अब जब हम बात करते हैं प्रेमा रावत की, वो ज़्यादा ओवर क्यों नहीं डाल पाई. लेकिन आपको क्या लगा जब 159 टारगेट दिया गया और हमने पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ा दी, तब आप क्या सोच रहे थे और अब क्या हुआ?
2: देखिए, हारने के बाद बहुत कारण बन जाते हैं. अब अगर वो यही टीम इंडिया जीत रही होती तो सब कुछ अच्छा हो चुका होता. श्री चन्नी ने अच्छे 2 विकेट निकाल दिए, वो 3 प्लेयर थे वो कंसिस्टेंट चल नहीं रहे थे, उन तीनों को आपने आउट भी कर लिया, लेकिन ये 2 प्लेयर निकल के आ गए. देखिए, स्टार्टिंग से आप शुरू करेंगे तो पहली तो टॉस के बाद सबको लगा ही था कि शायद चेस करना चाहिए था, क्योंकि इस ग्राउंड में चेस हमेशा अच्छा होता है. चलिए, आपने बैटिंग करी, 160 रन बनाए, लेकिन फिर आप वापस आ गए गेम में. 5 ओवर के बाद आप गेम में वापस आ गए. मुझे जो लगता है टर्निंग पॉइंट इसका सिर्फ राधा यादव के जो कैचेस थे, जो वो अंदर फील्डिंग करने गई और उसको भेजने का मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट है जिसने राधा को भेजा अंदर, जबकि उनके हाथ में बैंडेज था, कैच वो कैसे पकड़ पाएंगे मुझे लगता नहीं, ग्रिप कर पाएंगी। उसके बदले अगर कोई और फील्डर

0: इंडिया टीम के फील्डर्स ने नहीं किया है। ये सबसे एक निराशाजनक चीज़ हमने जो देखी है, ये गलत है तरीके से ये देखा गया है कि यहाँ पर फील्डिंग ज़्यादा मैटर करती है हमने। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, जो हमारी दीप्ति शर्मा का इतना 15 इयर्स का वो एक्सपीरियंस ले एज अ प्लेयर उनके पास है, तो उन्होंने उस तरह की वो बॉल डाली नहीं आज, जैसे उन्होंने फर्स्ट मैच में डाला था जो 5 विकेट अपने नाम की थी, उस तरह का बॉलिंग आज दिखा नहीं दीप्ति शर्मा की तरफ से।
1: आई थिंक उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आपने बैकअप की बात की ना, मेरे पास 2 बैकअप हैं
0: जी।
1: एक तो ये कि जो 50 ओवर का फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से भारत ग्रुप गेम्स में हारा था, फिर फाइनल जीता था, पहला बैकअप। दूसरा हमारे कॉलर्स हैं, दूसरे बैकअप, उनके पास चलते हैं। हेलो, कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, जी वो लोग सुन रहे हैं आपको, पूछिए। ये हमारे बैकअप थे, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज गॉट एन आइडिया। रविंदर जी, आप आंसर करना चाहेंगे? सबसे पहले कह रहे हैं स्मृति अगर आउट हो जाए पहले तो पूरी टीम आउट हो जाएगी क्या?
2: देखिए, बैकअप आपके पास कुछ भी नहीं है, 15 की टीम आपकी पास गई है। उसके बाद जो बाहर बैठे हुए आप देखिए कौन कौन है, क्रांति गौड़ बाहर बैठी हुई है, राधा यारा बाहर बैठी हुई है, और रेनको सिंह भी बाहर बैठे, तीनों फास्ट मीडियम पेसर हैं। आपके पास बैट्समैन की कोई भी एक तरह का, अगर एक भी बैट्समैन नहीं है फ्लॉप होता है तो आपको बाहर से लाना पड़ता है, यही हाल उसका हुआ। तीनों आपका कोई बैकअप नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। वर्ल्ड कप में भी बताया उन्होंने, जब भी हमारे पास 15 में से बाहर के प्लेयर को लेके हमें लेके आना पड़ता है। आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि अगर एक भी बैट्समैन फेल होता है उसके बाद दूसरा बैट्समैन कौन आएगा। आप लेके चलते हैं कि ये हमारे ये हैं, फर्स्ट लेकर लास्ट तक यही खेलेंगे चाहे वो कुछ भी परफॉर्म करे। तो ये तो राम भरोसा चल रहा है आपका। और अगर आपको यही इसी चक्कर में राधा यादव जो इंजर्ड है फिर भी आप उसको फील्डिंग कराने के लिए भेज दीजिए, बड़ा हैरानी की बात लगी
1: मुझे। मुझे तो लग रहा है कि राधा यादव का नंबर लेके ना मुझे पाजी को देना चाहिए। और ये पाजी आपके नहीं, मेरे ख्याल से सभी के मन में ये सवाल है। एंड दी कॉलर ऑफ कोर्स उतरा जस्ट आस्क्ड, यू नो द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, दे सेड दैट यू नो यू कंपेयरिंग विद साउथ अफ्रीका, बट वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रो साइड्स इन द वर्ल्ड नाउ, वेदर इट्स वुमेन और मेन क्रिकेट बोथ। यू थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मेजर फ्लॉज, समबडी हु इज इंजर्ड हर फिंगर एंड यू गेट हर इन and you place her at the most crucial places.
3: I think the key word is we consider ourselves to be pro. There's a thin line between considering yourself something and actually being something. And consider karna bahut aasan hota hai, hona aapko ground pe hi dikhana padta hai, wo bahar se baat karke nahi hota hai. On paper स्मृति हर मैच में सेंचुरी मार सकती है, ऑन पेपर हरमनप्रीत हर मैच जीत सकती है, बट आपको वो चीज़ वहाँ पे करनी पड़ती है। और जैसा सर ने कहा, आई कम्प्लीटली एग्री, एक 15 या 16 का जब स्क्वाड अनाउंस होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर आपके जो प्लेइंग पहले 11 हैं उनमें से आपको चेंज करना पड़े किसी भी वजह से, चाहे वो कंडीशंस की वजह से हो या इंजरी की वजह से हो या ओपोजिशन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन देखना हो, तो जो बाकी के 4 या 5 हैं रिजर्व में आपके, उनमें से आप खिला सके। अगर आपको हर इंजरी पे एक बाहर बैठा हुआ प्लेयर या किसी को फ्लाई इन कराना पड़े या हेलीकॉप्टर इन कराना पड़े, तो जो आपकी साथ में रिजर्व जा रही है वो किस लिए जा रही है? आई एम श्योर वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए आप 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहे हैं टीम में।
1: बट यू नो व्हाट आई एम सॉरी, बट यहाँ मुदिता ने एक सवाल पूछना है। मुदिता, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि यू नो ये तो सब हल्की बातें हो रही है, मतलब टफ बात, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि राधा यादव के लिए उसके करियर के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा कि आप एक फ्रैक्चर्ड फिंगर लेके खेल रहे हो और कोई ऐसा शॉट आ जाए आप उसको और इंजर कर दो।

0: अपनी फिंगर को, स्पेशली जब आपने श्रियंका पाटिल को खो दिया, तो वो और घातक हो जाएगा भारतीय टीम की।
1: बिल्कुल, और राधा यादव जैसी फील्डर, शी इज एन एक्सलेंट फील्डर, हमने कई मैचेस में उनका प्रदर्शन देखा है, कई बार वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आई हैं फील्ड पर और बहुत शानदार फील्डिंग उन्होंने करके दिखाई है। पर हाँ, फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ हम किसी खिलाड़ी को अगर ग्राउंड पर खड़ा कर रहे हैं और उससे उम्मीद रख रहे हैं कि वो कैचेस ले लेगा या बॉल्स रोक लेगा, तो ये शायद उस खिलाड़ी के साथ भी अन्याय है। अगले खिलाड़ी पे हम आना चाहेंगे वैशाली, शेफाली वर्मा। आज पहला ओवर उनसे कराया गया है और अब काफ़ी तौर पर यह साफ हो गया है कि शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है। जो एक छठे बॉल की कमी खलती थी, उन्होंने वो गैप भी भर दिया है, एंड सिंस इट हैज़ गिवन इंडिया एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन एंड हेंस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम सिलेक्शन ऑल्सो।
2: या ऑफकोर्स, लेकिन शेफाली वर्मा की अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपको मैं बताऊं, चार ओवर में, फोर ओवर्स के अंदर उन्होंने 11 डॉट बॉल दिए हैं जिसमें प्लेड हुई हैं वो सिर्फ, एंड उसके साथ जो मेन हमारा बॉलर है दीप्ति शर्मा, उनकी पांच ही बॉलें डॉट हुई हैं। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है। आप एज अ पार्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं और मेन आप ओपनर बैठे हैं और आप मेन एज अ ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं टीम में, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बॉलिंग एक्शन एंड बॉलिंग डॉट्स में भी। तो वो चीज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेन बॉलर इतना कम डॉट बॉल करा के और वो आप मैच जिताने की तरफ लेके जा सकते हैं।
0: इसी बात पे मैं थोड़ा सा और ऐड करवाना चाहूँगा बहुत जल्दी से, और उसके बाद दीप्ति शर्मा की जो फील्ड आप देखते हैं ऑन साइड में, आपने तीन प्लेयर्स लिए, आप ब्लॉक कर रहे हो ऑन साइड बाउंड्री रविंद्र पाजी, उसके बाद बॉल आप लेग पर ही डाल रहे हो और सेट बैट्समैन को, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है।
3: देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि जैसे नंदिनी बॉल कर रही थी, दो एक डीप मिड विकेट और डीप स्केल लेग के बॉल कर रहे हो, तो आपके पास दोनों प्रोटेक्शन ऑन साइड में है, तो आपको मजबूरन मिड विकेट मिडल और लेग में बॉल करना पड़ेगा, जो कि वही हुआ, बिलोरा ने उनको छक्का भी मारा। एक स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए इनको कि प्रॉपर तरीके से आप लेग साइड के दो लेके आप डिफेंस, आप पहले ओवर से डिफेंसिव हो चुके हो, आपको पहला काम है विकेट्स लेना, विकेट्स लेके आप अटैक कर सकते हो। वही हुआ, शेरचंदी ने आके दो विकेट लिए तभी आप मैच में वापस आए, लेकिन जिस तरह से आप डिफेंसिव बॉलिंग शुरू करोगे तो उसमें तो आप पहले ओवर से मैच उनको देखे, उनको लूज खेल रहे थे, उनको कोई प्रेशर ही नहीं था। अगर वो चरनी के दो विकेट्स नहीं होते तो आप तो मैच 17 ओवर में हार चुके होते, जिस अगर ये बैटिंग कर रहे होते।
1: उतरा पावर प्ले बॉलिंग में इश्यूज हैं, ये साफ दिख रहा है हमको। अगले दो मैचेस जो हैं, पहला बांग्लादेश से 25 तारीख को और उसके बाद 28 जून को, जो कहना चाहिए कि हमारे लिए नॉकआउट मैच साबित हो सकता है, वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्या इतने इश्यूज लेकर के हम उन मैचेस से जीतने की उम्मीद कर पाएंगे?
4: कि इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है बल्कि बांग्लादेश के साथ है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बांग्लादेश हल्की टीम है या हम उनके साथ जीत सकते हैं या इजी रहेगा, बट साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले शायद थोड़ा सा प्रेशर इंडिया पे कम रहेगा, इसलिए भी क्योंकि उनको पता है कि वो जो एक बहुत ही थिन मार्जिन होता है जो नेट रन रेट का आता है जिसपे फाइनली चीज़ें अटक सकती हैं, वो अभी भी उनके फेवर में ही चल रहा है इंडिया के डिस्पाइट द लॉस। और अगर बांग्लादेश के साथ हम अच्छा खेल जाते हैं और वो जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से पहले एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडियन टीम को, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश से बेटर और कोई ओपोनेंट हो नहीं सकता था। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए एक दो दिन है अभी इंडिया के पास रिकवर करने के लिए, रीग्रुप करने के लिए, अपनी गलतियां देखने के लिए। जैसा हरमनप्रीत ने बताया कि आप बैठ के देखेंगे कि कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है, पर प्रेशर बिल्कुल रहेगा, ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो आपको उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑलमोस्ट क्लियर कट टॉप टू में बनने हुए थे। इस मैच के बाद अब आपको बहुत सारे परम्यूटेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना गेम नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि साउथ अफ्रीका बाकी दो मैच कैसे खेलती है, और साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं, एक तो बांग्लादेशी है, दूसरा उनका मैच जहां हमारा ऑस्ट्रेलिया है जो वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है, उनके लिए वो मैच नेदरलैंड्स का है जिसमें वो अपना रन रेट इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस हैं, हमें अब सिर्फ अपनी दो जीत नहीं देखनी है बल्कि दूसरे की हार की भी उम्मीद करनी पड़ेगी, और ये किसी भी टीम के लिए सबसे खराब सिचुएशन होती है क्योंकि चीज़ें अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। इस मैच तक पूरी तरह से इनका अपना फ्यूचर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में।

0: था, अब आप थोड़ा उस पे से हाथ छोड़ चुके हो।
1: और वहीं पे बता दें कि 25 तारीख को साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स के साथ खेलेगी और उसके बाद आखिरी मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका का भी। लेकिन चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ख़ास तौर से उन श्रोताओं का भी जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। तो रविंद्र सिंह जी आपका, वैशाली जी आपका और उत्तरा गणेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके एनालिसिस का। एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ वंडरफुल गेम मुदिता, इजंट इट?
2: जी बिल्कुल।
1: आप कुछ अगले गेम की प्रेडिक्शन करना चाहेंगे?
2: हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश ने कल जिस तरह से पाकिस्तान को हराया उससे उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कहीं वो हमारे लिए नेट रन रेट में बाधा ना बन जाए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान शायद भारतीय टीम को रखना चाहिए।
1: जी हाँ, और हम सब यहाँ से अब विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि 25 तारीख को भी भारत का जो मुकाबला होगा उसमें हमारे तमाम श्रोता हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। हम सब की तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: प्लेयर ऑफ द मैच,
4: अभी आप आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच of the T20 cricket match played between India and South Africa of the ICC Women's T20
6: World। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत

ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।